0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: रेडियो रिमझिम 90.4 अब स्वीकार करी आपन दोस्त दीपाली के नमस्कार सुप्रभात। दोस्त लोग अभी वक्त हो गई बा स्वास्थ्य खजाना से भरल प्रोग्राम आपन दे आपन देखभाल के। हमरा अभी पता बा कि रोज सब अपना कान के रेडियो सेट के पास लगौले बानी आज के घरेलू नुस्खा जाने खातिर। तो चलिए अब बिना कुछ कहले शुरू करी हम आज के प्रोग्राम के। दोस्त लोग आज हम बताएं सबसे पहले नाजुक हाथ के सरल देखभाल खातिर 3 टिप्स। दो बड़ा चम्मच पपीता के गुद्दा में 2 छोटा चम्मच शहद मिला ली आ एमे जरा सा शक्कर भी डाल दी। ये पेस्ट से हाथ की मालिश कुछ देर तक करी। एकरा बाद गुनगुना पानी से हाथ की धोली, इसे हाथ की त्वचा कोमल बनल रही। नहाए से पूर्व गुनगुना दूध से हाथ की मालिश करे से हाथ की त्वचा में निखार आवेला। केला मसल के उसमें एगो नींबू के रस मिलाई आ हाथ के त्वचा पर लगाई। एके चेहरा पर भी लगा सकतनी। 10 मिनट के बाद पानी से धोली, इसे त्वचा के चमक बढ़ेला। तो दोस्त लोग अब चलिए जानल जाओ मुहासा घटावे खातिर कुछ घरेलू उपाय। गुठली के पानी में पीस के चेहरा पर लगावे से मुहासा दूर होला। दही में कुछ बूंद शहद के मिला के उसके चेहरा पर लेप करे के चाहिए, इसे कुछ ही दिन में मुहासा दूर हो जाला। तुलसी व पुदीना के पत्ती के बराबर मात्रा में लेके पीस ली और थोड़ा सा नींबू के रस मिला के चेहरा पर लगावे से भी मुहासा से निजात मिलेला। नीम के पेड़ के छाल के घीस के मुहासा पर लगावे से भी मुहासा घटेला। जायफल में गाय के दूध मिला के मुहासा पर लेप करे के चाहिए। बेसन के उपटन बना के चेहरा पर लगावे से भी मुहासा दूर होला। नीम के पत्ती के चूर्ण में मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल मिला के पेस्ट बना ली आ एके चेहरा पर लगाई। नीम के जड़ के पीस के मुहासा पर लगावे से भी वो ठीक हो जाला। घीस के मुहासा पर लगावे से भी वो नष्ट होला। तो दोस्त लोग अभी हमने के जननी हसन मुहासा घटावे के कुछ घरेलू नुस्खा। चलिए अब जानल जाओ जुकाम से बचाव खातिर कुछ नुस्खा। ई मौसम में सर्दी खांसी आम बात है, तुलसी और अदरक ई मौसम में लाभदायक होला। तुलसी में काफी उपचारी गुण समाइल होला। जन जुकाम और फ्लू आदि से बचाव में कारगर है। तुलसी के पत्ती चबावे से कोल्ड और फ्लू दूर रहेला। यही तरह तुलसी और बांसा के पत्ती प्रत्येक 5 ग्राम पीस के पानी में मिलाई और काढ़ा तैयार कर ली। इसे खांसी और दमा में काफी फायदा मिली। अलसी के बीज भी खांसी के इलाज में काफी कारगर होला, काहे कि ई बलगम के बाहर निकाले में मदद करेला। एक काढ़ा बना के पी ली या फिर बीज के पीस के चाट ली। जुकाम से जल्द राहत खातिर 10 ग्राम अलसी के पीसल बीज के मुलेठी के चूर्ण में मिलाई और 200 मिलीलीटर पानी में एक पानी आधा रह जाए तक उबाली। में 20 ग्राम शुद्ध शहद मिलाई और गरम गरम पी जाई। इसे शरीर के बलगम बाहर निकली और खांसी में राहत मिली। अदरक की चाय ई मौसम में स्वाद और सेहत दोनों की दृष्टि से अच्छा होला। तो दोस्त लोग, अब हम बतावे जात मानी दिल के रोगी से बचाव खातिर कुछ सब्जी के बारे में। भोजन में अनेक ऐसन वस्तु होला जिके प्रतिदिन प्रयोग करके हार्ट के सब बीमारी से बचल जा सकेला। जैसे में प्याज, एकर सेवन सलाद के रूप में कर सकता नहीं। एके प्रयोग से रक्त के प्रवाह ठीक रहेला। कमजोर हृदय होके पर जी लोग की घबराहट होला या हृदय की धड़कन बढ़ जाला, वो लोग खातिर प्याज बहुत ही लाभदायक है। टमाटर, इमें विटामिन सी, विटा कैरोनिन, लाइकोपीन, विटामिन ए व पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पावल जाला, जिसे दिल की बीमारी के खतरा कम हो जाला। लौकी, एके घिया भी कहल जाला, एके प्रयोग से कोलेस्ट्रॉल के स्तर सामान्य अवस्था में आवल शुरू हो जाला। ताजा लौकी के रस निकाल के पुदीना पत्ती, चार व तुलसी के 2 पत्ता डाल के दिन में 2 बार पिए के चाहिए। लहसुन, भोजन में एकर प्रयोग करी। खाली पेट सुबह के समय 2 कली पानी के साथ भी निगले से फायदा मिलेला। गाजर, बढ़त होकर धड़कन के कम करे खातिर गाजर बहुत ही लाभदायक है। गाजर के रस पी, सब्जी खाई व सलाद के रूप में प्रयोग करी। दिल के रोगी के बचाव खातिर कुछ सब्जी के बारे में। चलिए अब हम बताएं अलसी के असरकारी नुस्खा। अलसी में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, थायमीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन पावल जाला। ई गनोरिया, नेफ्राइटिस, अस्थमा, सिस्टाइटिस, कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, कब्ज, बवासीर, एक्जिमा के उपचार में उपयोगी है। अलसी के धीमा आंच पर हल्का भून ली, फिर एक दरदरा पीस के कोनो एयरटाइट डब्बा में भर के रख ली। आरोज सुबह शाम 1-1 चम्मच पाउडर पानी के साथ ली। एक सब्जी या दाल में भी मिला के लिहल जा सकेला। एक अधिक मात्रा में पीस के ना रखे के चाहिए, काहे कि एक खराब होके लागेला। इसे थोड़ा थोड़ा ही पीस के रखी। अलसी के सेवन के दौरान पानी खूब पिए के चाहिए। एमे फाइबर अधिक होला जौन पानी ज्यादा मांगेला। एक चम्मच अलसी पाउडर के 360 मिलीलीटर पानी में तब तक धीमा आंच पर पकाई जब तक कि ये पानी आधा ना रह जाए। थोड़ा ठंडा होके पर शहद या शक्कर मिला के सेवन करी। सर्दी खांसी जुकाम में ये चाय दिन में 2 से 3 बार सेवन कर जा सकेला। अस्थमा में भी ये चाय बड़ा उपयोगी है। अस्थमा वाला लोग खातिर एगो और ही नुस्खा भी है। एक चम्मच अलसी पाउडर आधा ग्लास पानी में सुबह भिंगा दी आ शाम में एक छान के पी ली। शाम के भिंगा के सुबह सेवन करी आ पिए वाला ग्लास कांच के होके के चाहिए। आज के घरेलू उपाय तो रखे रहो अपन सेहत के ख्याल आजमाएं इस सब नुस्खा के। नमस्कार।
3: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया घूम लेनी नु सारा मार्केट देख लेनी नु सारा बाजार कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
4: अरे ना देवर जी कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा दुल्हन के लिए साड़ी सूट पीस लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ कमल श्री कमल श्री कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
6: अब बेटा बहू घर आने वाली है सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान गुप्ता ज्वेलर्स BIS अप्रूव्ड शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर गोल्ड या डायमंड हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ विश्वास की परंपरा नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान चंद्रगोखो लोड गोपालगंज मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0096-575।
10: नमस्कार मैं हूं जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। शिव महाराज समानता सिखाते हैं। शिव एक साथ मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। अब आगे
11: एक्सक्यूज मी सर।
12: हाँ
11: ये आप क्या कर रहे हैं?
12: प्लीज गो अवे इट्स नन ऑफ योर बिजनेस।
11: यू लुक प्रिटी एफ्लुएंट ये किसी और के छोड़े हुए फ्राइज क्यों खा रहे हैं आप?
12: एफ्लुएंट में था अब नहीं हूं।
11: मैं समझा नहीं क्या हुआ है आपके साथ?
12: 2 दिन पहले आए लॉस्ट एवरीथिंग।
11: पर ये सब हुआ कैसे?
12: मुझे हमेशा से जल्दी अमीर होने का शौक रहा बिजनेस में कार्ड्स में। मुझे कार्ड्स खेलने का शौक था तो मैं आज तक जो भी कमाया उसी पर लगाना शुरू कर दिया। एक बार मैं जीता तो मुझे लगा और जीतूंगा जीतता ही रहूंगा। जैसे जैसे मैं जीतता गया मेरा लालच बढ़ता चला गया और फिर 2 दिन पहले।
11: संभालिए अपने आप को। मैं समझ रहा हूं कि आपका ये हाल कैसे हुआ। क्या आपकी कोई फैमिली नहीं है?
12: है फैमिली है पर मैं 2 दिन से घर नहीं गया।
11: अरे सर आपकी फैमिली वहां बहुत परेशान होगी।
12: आई नो पर क्या करूं घर जाकर क्या कहूं क्या कहूं उनसे कि उनकी सारी सिक्योरिटी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दांव पर लगाकर आया हूं।
11: सर हम गलतियां करते रहते हैं। हमारा एक टेम्पटेशन फुलफिल होता है तो हम दूसरे पर चले जाते हैं दूसरा पूरा होता है तो तीसरे पर चले जाते हैं। ऐसे कब तक आप अपनी फैमिली के पास नहीं जाएंगे? उन्हें कभी ना कभी तो बताना ही होगा ना।
12: हाँ मुझे में हिम्मत नहीं होने फेस करने की। तुम जाओ अपना टाइम वेस्ट मत करो जाओ।
11: टाइम वेस्ट नहीं अच्छा जाने दीजिए। क्या मैं आपको एक कहानी सुना सकता हूँ?
12: मैंने कहा मुझ पे टाइम वेस्ट मत करो।
11: देखिए देखिए, आप जिस सिचुएशन में हैं उसी की तरह एक कहानी है, सुनाने दीजिए ना। आई इंसिस्ट।
12: ठीक है, सुना।
11: तो एक दिन स्वर्ग का मौसम बहुत खराब हो जाता है, आंधी तूफान, स्वर्ग में मानो लालिमा सी छा जाती है। तभी शिव का ध्यान टूटता है,

0: पार्वती, ये क्या हो रहा है? ये आंधी तूफान?
1: पता नहीं प्रभु, पूरे स्वर्ग का मौसम खराब है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ कीजिए ना प्रभु।
0: नंदी, नंदी।
2: जी प्रभु।
0: ये हो क्या रहा है नंदी?
2: मुझे भी नहीं पता प्रभु।
0: पता करके बताओ।
2: जो आ गया प्रभु।
1: कहो नंदी, कुछ पता चला?
2: माता, ये सब इंद्रदेव की लीला है माता।
0: इंद्रदेव?
2: जी प्रभु, इंद्रदेव बहुत क्रोधित हैं।
1: क्रोधित हैं? किंतु किस पर?
2: सभी देवगणों पर।
0: लेकिन बात क्या है
2: प्रभु? बात क्या है ये तो इंद्रदेव ही बता सकते हैं, किंतु इंद्रदेव बहुत क्रोधित हैं प्रभु। सारे प्राणी उनसे डर के भाग रहे हैं। जिससे भी पूछा कि क्या हो रहा है, बस यही कहते हैं कि जान बचानी है तो भागो। मैं भी उनके पास जाकर उनसे ये पूछने का साहस नहीं कर सकता प्रभु, क्षमा कीजिएगा।
1: हे प्रभु, अब हम क्या करेंगे? स्वर्ग की ये दशा है तो ना जाने धरती पर क्या हो रहा होगा, आपके भक्तों की क्या दशा हो रही होगी प्रभु।
0: मैं स्वयं जाऊंगा इंद्रदेव के पास। इंद्रदेव, रुकिए इंद्रदेव।
3: महादेव, मुझे रोकने का प्रयास मत करिए महादेव।
0: इंद्रदेव, ये आप क्या कर रहे हैं?
3: महादेव, आज मैं सभी देवगणों को सबक सिखा कर रहूंगा, आप बीच में मत आइए।
0: रुकिए इंद्रदेव, आपके इस क्रोध का कारण क्या है?
3: प्रभु, इन देवगणों का साहस तो देखिए, मेरे ही दरबार में आकर मेरी ही अप्सराओं के साथ प्रेम मिलाप कर रहे हैं।
0: आपको कितनी अप्सराएं चाहिए इंद्रदेव? मेनका तो आपकी ही है, वो इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री है, आप चाहते क्या है?
3: हाँ प्रभु, किंतु अप्सराएं तो।
0: इंद्रदेव, मेनका आपसे प्रेम करती है और उनके हृदय में किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है, किंतु मुझे ये भी प्रतीत हो रहा है कि मेनका आपके लिए लोभ से बढ़कर कुछ नहीं।
3: ऐसा नहीं है महादेव।
0: ऐसा ही है इंद्रदेव। यदि आपको सच में मेनका से प्रेम होता तो यदि आपकी अप्सराएं किसी और देवता के साथ संबंध रखना चाहती हैं, तो इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
3: किंतु महादेव।
0: इंद्रदेव, अब आप मुझे क्रोधित मत कीजिए। ये मत भूलिए कि हम त्रिदेवों ने आपको देवलोक का राजा बनाया है और ये सब कुछ आपको इसीलिए मिल रहा है। यदि आप लोभी बन जाते हैं तो आपको मनुष्य रूप में धरती पर भेज देंगे।
3: नहीं नहीं महादेव, मुझे क्षमा कीजिए महादेव, मुझसे भूल हो गई। मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरा लोभ और लालच मुझे अपने भाइयों से, अपने मित्रों से दूर कर रहा था।
0: याद रखना इंद्रदेव, लोभ मोह का कोई अंत नहीं है, हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। एक इच्छा पूरी हो गई तो दूसरी इच्छा का लोभ मोह आ जाएगा। इसीलिए ये समझना आवश्यक है कि अपने हृदय को नियंत्रण में रखें और लालची ना बने।
3: जी महादेव, मैं समझ गया, फिर से ये भूल नहीं होगी, क्षमा कीजिए।
4: लालच हमेशा बर्बादी का कारण बनता है। ये मनुष्य, देव और राक्षसों सभी के साथ होता है, जैसे इंद्र के साथ हुआ, आपके साथ भी हुआ।
5: तुम सही कह रहे हो, ये लालच ही था जो मुझे यहां लेके आया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, पर अब क्या?
4: अब कुछ नहीं। जैसे इंद्र देव ने शिव के सामने अपनी गलती के लिए क्षमा मांग ली, आप भी अपने परिवार के सामने अपनी गलती मान लीजिए, उनसे माफी मांग लीजिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए।
5: माफी तो मैं जरूर मांग लूंगा, पर क्या वो मुझे माफ कर पाएंगे? और नई शुरुआत करना आसान तो बिल्कुल नहीं है।
4: अरे माफ क्यों नहीं करेंगे, वो आपका परिवार है, आपसे प्यार करते हैं, आपकी बात समझेंगे, आपको पूरी तरह से सपोर्ट भी करेंगे। उनके साथ एक नई शुरुआत कीजिए।
5: सच, मुझे इस वक्त अपनी फैमिली के साथ के अलावा कुछ चाहिए भी नहीं। थैंक यू सो मच। अरे मैं भी कितना पागल, अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट बातें कर ली, तुमसे नाम तक नहीं पूछा।
4: जी मेरा नाम नील है।
5: मैं हूँ गोल्डी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा नील।
4: मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा गोल्डी जी। अब मैं चलता हूँ, आपको भी घर जाना चाहिए।
5: हाँ वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो क्या मुझे घर तक छोड़ दोगे?
4: हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए ना बैठिए मेरे नंदू पर।

0: लीजिए, ये आ गया आपका घर।
1: थैंक यू नील। फिर कब मुलाकात होगी हमारी?
0: बहुत जल्द, अमरनाथ की तरफ जा रहा हूँ, कभी वहाँ आना हुआ तो याद कीजिएगा।
1: अरे कोई नंबर तो दे दो।
0: वो तो नहीं है, पर दिल से याद कीजिएगा, मैं जरूर मिलूंगा। हर हर महादेव।
1: हर हर महादेव।
2: ब्रो, अगर तेरे को दो रोटी की भी भूख है और तू खाएगा चार तो होगा क्या मालूम है? पेट खराब, तबीयत टाइट, समझा ना? वैसे लाइफ में जरूरत से ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए बाबा। जितना तेरे को मिलना चाहिए वो ऊपर वाला जरूर देगा तेरे को, काहे को टेंशन लेता है? बड़ू, अगर तेरे दोनों हाथ में लड्डू एक मुंह में और तू चौथे पांचवे के चक्कर में गिरेगा तो तेरे हाथ में जो है वो भी गिर जाएगा। बाबा ये मोह माया का जाल हमेशा जी का झंझाल बन जाता है बाबा। शिव महाराज मोह माया से दूर रहना सिखाते हैं, शिव महाराज लालच से दूर रहना सिखाते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करें 87 894 18744।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए।
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89733।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए।

0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R, अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गंडक नदी और इससे सटे हुए विद्यालयों का हुआ निरीक्षण। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए क्विज प्रतियोगिता की होगी शुरुआत। नल जल योजना की जिला पदाधिकारी करेंगे जांच। और SOP के अनुसार बाढ़ के तैयारियों की गई समीक्षा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। मीरगंज में महावीरी जुलूस के दौरान अवैध हथियारों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस ने इस मामले में छापेमारी की और सौरेजी में मिली सूचना के स्थान पर पुलिस ने छापेमारी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी अजय मिश्रा, पिता महात्म मिश्रा, साकिन सौरेजी, थाना मीरगंज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से 2 देशी कट्टा तथा जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। पूछताछ के क्रम में अभियुक्त अजय मिश्रा ने बताया कि उसने अवैध हथियार और कारतूस रूप शर्मा, पिता बालेश्वर शर्मा, साकिन छोटका मोहम्मदपुर, थाना माजी, जिला छपरा से 7,000 रूपए में खरीदा था। अब इस मामले में कांड दर्ज कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में विधि सम्मत कार्रवाई की पुलिस के द्वारा की जा रही है। साथ ही अवैध हथियार के इस नेटवर्क में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। बिहार सरकार के निर्देशानुसार गंडक नदी के तटबंधों की सुरक्षा और विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने इसको लेकर गंडक नदी के दाएं तट पर अवस्थित तटबंधों का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने अहिरौली दान से गोपालगंज के मंगलपुर पुल के दाएं साइड बांध तक निर्मित तटबंधों का जायजा लेते हुए इसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और तटबंधों के 5 किलोमीटर ग्राम विशंभरपुर के समीप पहुंचकर स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तटबंध की स्थिति, सुरक्षा और रखरखाव के संबंधित बिंदुओं पर अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। मौके पर तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही तटबंध क्षेत्रों में स्थित सभी विद्यालयों का भी निरीक्षण किया गया और सुरक्षा तथा शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिया गया। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने तथा उनकी प्रतिभा, विचारों और नेतृत्व क्षमता को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है। माई भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 15 वर्ष से 29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए राष्ट्रीय मंच प्रदान करने की तैयारी की जा रही है। यह मंच युवाओं को विभिन्न अवसरों, स्वयं सेवा, सीखने, मेंटरशिप, सहभागिता एवं राष्ट्र निर्माण से जुड़ी गतिविधियों से जोड़ता है। इसके लिए माई भारत एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है और जिले के सभी युवाओं से निवेदन किया गया है कि लोग माई भारत एप्लीकेशन पर जाकर अपना पंजीकरण कराएं। विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अथवा ईमेल के माध्यम से OTP सत्यापन के बाद आवश्यक विवरण भरकर पंजीकरण पूरा कर सकते हैं। युवाओं से अपील की गई कि वे इस अवसर को केवल एक क्विज के रूप में ना देखें, बल्कि अपने अपने विचारों और प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने की दिशा में पहला कदम माने। इसके लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और क्विज में भाग लेने के लिए माई भारत एप्लीकेशन पर पंजीकरण करना आवश्यक है। युवा निश्चित रूप से इस माई भारत एप्लीकेशन पर अपना पंजीकरण कर राष्ट्र के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। माई भारत कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय युवा दिवस यानी 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर किया जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों से चयनित युवाओं को अपने विचार, नवाचार और सुझाव राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। विशेष रूप से यह युवाओं को प्रधानमंत्री के साथ सीधे संवाद करने तथा विकसित भारत के निर्माण से संबंधित अपने विचार साझा करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। इस पूरी प्रक्रिया का पहला और महत्वपूर्ण चरण विकसित भारत क्विज प्रतियोगिता है। क्विज के माध्यम से युवा इस राष्ट्रीय अभियान में अपनी भागीदारी की शुरुआत कर सकते हैं। सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन नल जल योजनाओं के क्रियान्वयन की जांच करने के क्रम में सभी पंचायतों में तैयारी कर ली है। इस दौरान नल जल की जांच की जाएगी। जिला पदाधिकारी स्वयं 7 और 8 सितंबर को जांच करवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिले में नल जल योजना के क्रियान्वयन और संचालन के संबंध में प्राप्त शिकायतों को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और इसी को लेकर जिलाधिकारी ने जिले के सभी 230 पंचायतों के लगभग 3110 वार्डों में नल जल योजना के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत की विशेष जांच का आदेश दिया है। जांच के लिए 230 कर्मियों को एक साथ प्रतिनियुक्त किया गया है, जो 7 और 8 सितंबर को पूरे जिले के सभी संबंधित पंचायतों और वार्डों में पहुंचकर नल जल योजना की वास्तविक स्थिति का स्थलीय सत्यापन करेंगे और इसका रिपोर्ट जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे, जिसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। संभावित बाढ़ से पूर्व तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी समीर सौरभ ने आज समाहरणालय के सभागार में जिला स्तरीय एवं तकनीकी पदाधिकारियों के साथ बाढ़ की मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP के अनुसार बिंदुवार समीक्षा की। हथुआ अनुमंडल के सभी BDO, CO एवं कार्यपालक पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैकुंठपुर, सिधवलिया, बरौली, माझा, गोपालगंज और कुचायकोट के संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा में प्यारेपुर, फैजलापुर, सलेमपुर, मेहदीपुर, पकड़िया, रामपुर, टेंगराही, जादवपुर, दुखरन और निमुया सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि संभावित बाढ़ से निपटने के लिए सभी विभाग पूर्व तैयारी पूरी रखें और अपना सूचना तंत्र सुदृढ़ करें, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को SOP का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने तथा प्रभावित बाढ़ क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखने का निर्देश दिया। आपदा के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर आपदा प्रबंधन के सुसंगत नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। आज अलग अलग मामलों में जिले के सभी थाना क्षेत्रों से 40 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें SC/ST एक्ट, हत्या का प्रयास, कोर्ट के द्वारा जारी वारंट और अन्य गंभीर मामलों में लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शराब तस्करी में भी आरोपियों को पकड़ा गया है। इन सभी 40 आरोपियों पर आज पुलिस विधिक कार्रवाई करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज रही है। बैकुंठपुर के चांदपुर गांव में एक महिला के साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। पीड़िता को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस मामले में चिकित्सकों द्वारा स्थानीय अस्पताल से सदर अस्पताल में रेफर किया गया। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्त हरे राम यादव और संजय यादव, दोनों पिता राम पूजन यादव, साकिन चांदपुर थाना बैकुंठपुर को आज गिरफ्तार किया गया और दोनों पर अब पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। नगर थाना की पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 342 लीटर देशी शराब जब्त किया है। इस मामले में तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने शराब और स्कॉर्पियो को जब्त कर तस्कर की पहचान करनी शुरू कर दी है। वाहन मालिक और चालक के विरुद्ध कांड भी दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सम्राट अशोक नगर में छापेमारी की और वहां से स्कॉर्पियो में रखी गई 342 लीटर शराब को जब्त किया। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बलहा गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों से आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने दो प्राथमिकी दर्ज की। और त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इसमें एक आरोपी अजय गिरी और दूसरा जितेंद्र गिरी, ये दोनों सगे भाई हैं और ध्रुव गिरी के पुत्र हैं, बलहा के ही निवासी हैं। दोनों को गिरफ्तार किया गया और एक दूसरे आवेदन पर पुलिस ने राम कृपाल भारती पिता रघुनाथ भारती को भी गिरफ्तार किया, ये भी बलहा बैकुंठपुर के ही निवासी हैं। इन दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी और दोनों पक्षों से 3 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि भूमि विवाद के कारण दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी और इसी में यह कार्रवाई की गई है। टीबी मुक्त भारत अभियान को गति देने के लिए और टीबी मरीजों को उपचार के दौरान बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए गोपालगंज क्लब गोपालगंज में टीबी मरीजों के बीच निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत फूड बास्केट का वितरण किया गया। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने टीबी मरीजों को फूड बास्केट प्रदान किया। यह फूड बास्केट वितरण कार्यक्रम चेंबर ऑफ कॉमर्स गोपालगंज के सौजन्य से आयोजित किया गया था। कुचायकोट थाना की पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी मुख्तार माली पिता स्वर्गीय शिव शरण माली बताया जा रहा है, जो मनियारा थाना कुचायकोट का निवासी है। इस पर दहेज में 4 चक्का वाहन की मांग पूरी नहीं होने पर वादी की पुत्री के साथ मारपीट कर उसकी हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बरौली थाना की पुलिस ने महावीरी अखाड़ा में डीजे और अश्लील गाना बजाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान कई डीजे सेट को पुलिस ने जब्त कर लिया है और प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि अब इसमें जिनको आरोपी बनाया गया है उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीरगंज और उचका गांव में महावीरी अखाड़ा का आयोजन हो रहा है। इसको लेकर हथुआ के SDM संतोष कुमार ने जनता से अपील की। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा,
4: सभी को स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है कि आपसी सौहार्द के साथ में इस त्योहार को मनाएं। आज 7 तारीख को यहाँ पर मीरगंज में और उसका गांव जो है उसका अखाड़ा निकलना है। इसके लिए हम लोग कल फ्लैग मार्च भी निकाले थे और प्रशासन की तैयारी पूर्ण है। सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु है वहाँ पर 4 सबमजिस्ट्रेट की डेप्यूटेशन कर ली गई है। CCTV कैमराज बैरिकेटिंग किया गया है, उसका वीडियोग्राफी भी रहेंगे, कौन से भी लोगों की नजर रहेगी। तो सभी से अपील रहेगा कि जो महावीर अखाड़ा है उसको सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई काम ना करे जिसपे की कार्रवाई करना पड़े। और स्पष्ट निर्देश रहेगा कि लाइसेंस के बिना जुलूस ना निकाले और DJ प्रतिबंधित है, इन सब मामलों का ध्यान रखें और आपसी सौहार्द में ही इस पर्व को मनाए। धन्यवाद।
3: बिशंभरपुर थाना की पुलिस ने 36 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस ने यह कार्रवाई सिपाया कृषि फार्म के पास की, जहां एक मोटरसाइकिल से 22 लीटर देशी शराब पकड़ी गई। इसमें सिपाया दुबे टोला गांव के पास एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया और दूसरी कार्रवाई में 14 लीटर से अधिक शराब एक मोटरसाइकिल से पकड़ी गई। इसमें भी एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और दोनों मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। अब दोनों आरोपियों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
5: देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गंडक नदी और इससे सटे हुए विद्यालयों का हुआ निरीक्षण। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए क्विज प्रतियोगिता की होगी शुरुआत। नल जल योजना की जिला पदाधिकारी करेंगे जांच और SOP के अनुसार बाढ़ के तैयारियों की गई समीक्षा।
3: इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
12: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
12: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
12: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
13: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
14: भारतवर्ष, महानायकों की गौरव गाथा, अनुपम खेर के साथ।
15: ये है हेमू, नमक का व्यापारी जिसने तैमूर के झंडे को नीचा करने की हिमाकत की, दिल्ली पे कब्जा करने की हिम्मत जुटाई। बादशाह सलामत, इसे मौत देकर गाजी का मर्तबा हासिल करो। मौत तो इसे मौत। बढ़ो बादशाह, बढ़ो और इसे मौत दो।
16: हम एक बेहोश और अधबरे इंसान पर तलवार नहीं उठा सकते बाबा।
15: अच्छा, ये क्या बोल रहे हो, खत्म करो इसे। बादशाह सलामत ने हेमू को मारकर गाजी का मर्तबा हासिल किया। बादशाह सलामत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
17: राजा हेमचंद्र विक्रमजीत का अंत हुआ और पानीपत की दूसरी लड़ाई खत्म हुई। राजा हेमचंद्र विक्रमजीत कई इतिहासकारों की राय में दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने वाला आखिरी हिंदू राजा था और इसकी जगह ली जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने। भारतवर्ष में इस बार जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की महागाथा। नमस्कार, मैं हूं अनुपम खेर। भारतवर्ष में इस बार कहानी अकबर की। अकबर का जब जन्म हुआ था तब उसके पिता हुमायूं हिंदुस्तान से जान बचाकर भाग रहे थे। जन्म हुआ अमरकोट में एक हिंदू राजा के घर, जहां उनकी मां और कुछ लोगों को शरण मिली थी। बचपन के शुरुआती दिन कांधार में बीते, जहां अकबर के चाचा ने उसे बंधक बनाकर रखा था। अकबर महान की जब पढ़ाई की शुरुआत हुई तो पढ़ाने वालों की ही शामत आई। उसे पढ़ाई नहीं, कबूतरबाजी पसंद थी, घुड़सवारी पसंद थी, हाथियों की लड़ाई पसंद थी। बहरहाल किसी तरह दोबारा दिल्ली पर पिता हुमायूं का कब्जा हो गया, लेकिन हुमायूं खुद को मजबूत कर पाता उससे पहले वो एक दुर्घटना का शिकार हो गया।
18: जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को जब अपने पिता हुमायूं की मौत की सूचना मिली तब वो पंजाब के जिला गुरदासपुर के कलानूर में था। अकबर का सिपा सलार और अतालिक यानी गुरु बैरम खान वहां मौजूद था।

0: बादशाह सलामत को सीढ़ियों से उतरते समय सिर पर गहरी चोट लगी है। उनका बचना नामुमकिन है।
1: बाबा क्या कह रहे हैं आप? ये
0: शहजादे संभालो अपने आप को, ये वक्त रोने का नहीं है, खुद को संभालने का है। और ये बात, जब तक कोई फैसला नहीं लिया जाता तब तक यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए।
2: जी हुजूर।
0: सिपा सालार, शहजादे की ताजपोशी की तैयारी की जाए।
2: जो
3: अकबर को जब अपने पिता के गंभीर रूप से घायल होने की खबर मिली तब उसकी उम्र 13 साल कुछ महीने थी। हुमायूं की असमय मौत ने हालात बदल दिए। जिस वक्त हुमायूं की मौत हुई मुगल सल्तनत कुछ शहरों और फौजी कैंपों तक ही सीमित थी। किसी भी लिहाज से सल्तनत अकबर के लिए सुरक्षित नहीं थी। पंजाब में मुगल सेना ने सिकंदर सुर को हराया जरूर था लेकिन सिकंदर सुर सक्रिय था। बिहार और आज के पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुल्तान आदिल शाह था जो बनारस के पास चुनार में काबिज था। आदिल शाह खुद को शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी मानता था। बंगाल में मोहम्मद खान सुर था। उधर हुमायूं की मौत की खबर लगने के साथ 50,000 की फौज लेकर जलाल शाह सुर जौनपुर से दिल्ली पर हमले के लिए तैयार था।
4: कुछ इस हालात में भारतवर्ष के महानतम शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की ताजपोशी हुई। दिन था 14 फरवरी 1556 का, समय दिन के 12 बजे। इसके लिए कलानौर में ईंटों का एक चबूतरा बनाया गया।
3: बैरम खान ने हुमायूं की शाही तलवार अकबर को सौंप दी। इस ताजपोशी के बाद 13 साल के बादशाह ने अपना फरमान सुनाया। अकबर ने अपने फरमान में बैरम खान को सल्तनत का वकील मुतलक यानी राज्य के सभी राजनीतिक और आर्थिक मामलों का जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त किया। साथ ही खान खाना और सिपा सलार यानी सेनापति भी बना दिया।
4: अकबर की परीक्षा की घड़ी बहुत जल्दी आ गई। अकबर ताजपोशी के बाद भी दिल्ली नहीं गया। बैरम खान ने टारदी बेग नाम के मुगल सेनापति को दिल्ली का गवर्नर बनाकर भेजा और खुद पंजाब में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जालंधर में रुक गया। तभी बिहार और उत्तर प्रदेश में राज कर रहे आदिल शाह के हिंदू सेनापति हेमू ने दिल्ली का रुख किया। खास बात, हेमू ने हारना सीखा ही नहीं था।
3: हेमू के बारे में कहते हैं कि उसने अपने जीवन में कुल 22 युद्ध लड़े थे, सभी युद्ध जीते थे। वो अपने जीवन के 23वें युद्ध की तैयारी में लगा था। लेकिन 5 नवंबर 1556 को जब हेमू विक्रमाजीत और मुगल सेना के बीच पानीपत में आमना सामना हुआ, हेमू और उसके साथियों ने मुगलों को बुरी तरह से रौंदना शुरू कर दिया। हालात को देखते हुए बैरम खान ने लड़ाई के मैदान से पीछे हटने की तैयारी शुरू कर दी। तभी एक चमत्कार ने मुगलों के भाग्य को बदल दिया।
4: पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर और बैरम खान की फौज हार के कगार पर थी। अपने प्रिय हाथी हवाई पर सवार हेमचंद्र विक्रमजीत अपनी फौज का नेतृत्व कर रहा था। तभी एक तीर न जाने कहां से आकर हेमचंद्र की आंख में घुस गया। अबुल फजल ने कहा वो तीर नहीं था, खुदा से मिली सजा थी। तीर लगने से हेमचंद्र बेहोश हो गया। हेमचंद्र को बेहोश देखकर उसकी फौज घबरा गई। महावत ने हेमचंद्र को लड़ाई के मैदान से बाहर ले जाने की कोशिश की लेकिन वो असफल रहा। हेमचंद्र विक्रमजीत को बंदी बना लिया गया।
5: यह है हेमू, नमक का व्यापारी जिसने तैमूर के झंडे को नीचा करने की हिमाकत की, दिल्ली पे कब्जा करने की हिम्मत जुटाई, बादशाह सलामत, इसे मौत देकर गाजी का मर्तबा हासिल करो। मौत तो इसे मौत। बढ़ो बादशाह, बढ़ो और इसे मौत दो।
3: अबुल फजल कहता है कि बादशाह अकबर ने घायल और अधमरे हिमू को मारने से इनकार कर दिया। उसके बाद खुद बैरम खान ने उसका सिर काट दिया।
2: हम एक बेहोश और अधमरे इंसान पर तलवार नहीं उठा सकते बाबा।
5: अच्छा, ये क्या बोल रहे हो? खत्म करो उसे। बादशाह सलामत ने हेमू को मारकर गाजी का मर्तबा हासिल किया। बादशाह सलामत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
3: जबकि कई इतिहासकार ये मानते हैं।
6: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
9: सुनिए सुनिए सुनिए,
10: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
10: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
11: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
12: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
12: यहां टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
12: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
12: संपर्क करें 84710-30992 या 9765-65750।
13: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
14: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
13: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
14: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
9: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
14: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
9: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
14: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
9: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: कि अकबर को बड़े दिल का दिखाने के लिए अबुल फजल ने ये बातें गढ़ी, जबकि सच्चाई ये है कि अकबर ने ही हेमू के गर्दन पर पहला वार किया। बाद में बैरम खान के वार से हेमू का सिर धड़ से अलग हो गया। इसके बाद हेमू के सिर को काबुल भेजा गया और धड़ को दिल्ली।
15: एक वर्जन तो अबुल फल का है कि अकबर ने मना कर दिया, और दूसरा वर्जन बाकी सब मौर्यों का है, जिसे मैं फरिश्ते का सही समझता हूँ। सर काटना किसी का आसान नहीं होता है, तो इसलिए इन्होंने जो तलवार वार किया उसमें कुछ नहीं हुआ, तो फिर बैरम खान ने बहुत ज़ोर से तलवार से उसकी गर्दन काटी। तो
16: उसके कई किस्से हैं। अकबर ने एक ये भी किस्सा है कि अकबर ने कहा कि, या अकबर के बिहा पर कहा कि तुम अगर मुसलमान हो जाओ तो तुम्हें मैं माफ़ कर दूंगा। तो उसने ये कहा कि मैं अगर जीत जाता इस लड़ाई में तो शायद मैं मुसलमान होने की सोच सकता था, लेकिन चूंकि मैं हार, इसलिए सोच सकता था कि मैं ईश्वर का या खुदा का या अल्लाह को शुक्रिया अदा करता मुसलमान होकर के, लेकिन चूंकि मैं हार गया हूँ इसलिए मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। लेकिन ये सही है कि अकबर ने उसका गला खुद नहीं काटा था।
4: हेमू के अंत को भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। ये भी कहा जाने लगा है कि हेमचंद्र विक्रमजीत का अंत नहीं होता तो भारत का इतिहास भी कुछ और होता, जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हेमू से ज्यादा यह अफगानों की हार थी। बहरहाल इस जीत ने मुगल सल्तनत में बैरम खान की स्थिति बहुत मजबूत कर दी।
3: बैरम खान का दबदबा 4 साल तक चला, 1556 से 1560 तक। इस बीच बैरम खान ने मुगल सल्तनत को काबुल से उत्तर प्रदेश के जौनपुर तक फैलाया, ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। बैरम खान ही ज्यादातर बड़े फैसले ले रहा था। बैरम खान के रवैये की एक मिसाल इतिहासकार सतीश चंद्र अपनी किताब में देते हैं। एक बार जब अकबर ने 17 रुपए मांगे तो उसने मना कर दिया। उसकी इज्जत तब बची जब माहम अंगा ने उसे खर्च के लिए पैसे दिए। माहम अंगा ने अकबर को बचपन में अपना दूध पिलाया था और महल में उसका बड़ा रसूख था। एक तरह से बैरम खान के विरोधी खेमे का नेतृत्व वही कर रही थी। दूसरी तरफ अकबर अब 13 साल का बादशाह नहीं था, वो बड़ा हो चुका था।
16: अकबर अब बड़ा हो गया था, 1556 में वो गद्दी पर आया था और 1560 तक 4 साल, जो 4 साल में अब बड़ा 17-18 साल का हो गया था, तो अभी भी वो उसको बच्चा ही समझता रहा। अभी भी वो उसको बच्चों की तरह ही, उस पर हुक्म तो नहीं चलाता था लेकिन उसको ऐसे ही ट्रीट करता रहा। लेकिन अकबर ने अब ये फैसला कर लिया था कि अब मैं वाकई बादशाह बनना चाहता हूँ।
4: महल में खींचतान थी, अकबर उससे परेशान रहता था और वो इनसे बचने के लिए शिकार के बहाने बाहर निकल जाता था, लेकिन बैरम खान के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने से भी वो बचता रहा। बैरम खान के कत्ल का प्रस्ताव भी उसे दिया गया लेकिन अकबर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
17: हम तुम्हारे दिल की बात समझते हैं, बहुत बहादुर हो तुम, लेकिन बैरम खान के कत्ल का हुक्म हम नहीं दे सकते। जिस इंसान ने हमारी और हमारे वालिद की हिफाजत की हो उसका कत्ल करवाना भरोसे का कत्ल करना होगा, और अगर ऐसा हुआ तो हम किसी के भरोसे के लायक नहीं रह जाएंगे।
3: अकबर बैरम खान को अपनी सल्तनत के वकील या प्रधानमंत्री पद से हटा देना तो चाहता था, लेकिन बैरम खान की शख्सियत और एहसान उसे रोक रही थी। ऐसा बहुत दिन तक नहीं चला। शिकार के बहाने अकबर आगरा से रवाना हुआ, सिकंदरा नाम की जगह पर रुका और फिर दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचकर बैरम खान को हटाने का फरमान जारी कर दिया। बैरम खान ने मुलाकात की इजाजत मांगी लेकिन अकबर नहीं माना।
17: मेरे खान बाबा, आप हमारी मोहब्बत और नेक तमन्नाओं की इस पैगाम को पढ़ें और जान लें कि मौजूदा हालात को देखकर ही हमने दिल्ली में पड़ाव डाला है। जब हमें पता चला कि आप हमसे मिलना चाहते हैं तब हमने ही ये कहलवाया कि आपको हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। हमने आपसे काफी तकलीफ पाई है, आपको फिर भी भरोसा देने के लिए मैंने लिखा है कि बाप बेटे के बीच भी झगड़ा हो सकता है, गैर इत्तेफाकी हो सकती है, लेकिन वो कभी अलग नहीं हो सकते। आप आज भी मेरे खान बाबा ही हैं।
3: बैरम खान खत मिलने के बाद आगरा छोड़कर हज के लिए रवाना हो गया।
4: अकबर की शाही फौज बैरम खान के खिलाफ मार्च कर रही थी। बैरम खान के साथियों की संख्या कम थी, लेकिन अकबर की सेना उसे हरा नहीं पाई। अंत में अपने लोगों के खिलाफ हथियार उठाने से परेशान होकर खुद बैरम खान ने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया।

भच्चीबाड़ा की लड़ाई याद है आपको खान बाबा? ये वही तलवार है जिसने मेरे वालिद जन्नत आशियानी नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बादशाह की हिफाजत की थी। ये वही तलवार है जिसने पानीपत में हिम्मू को खत्म कर दिया था और इस तलवार को खुद अपने पास रखने वाला आपसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता खान बाबा।

0: अकबर ने बैरम खान को कालपी या चंदेरी की सूबेदारी देने को कहा, लेकिन बैरम खान ने कोई ओहदा लेने से इनकार कर मक्का जाने की बात कही। लेकिन बैरम खान मक्का न पहुंच पाया।
1: बैरम का अंत हो गया, वो फिर गया हज पर। हज में फिर वहाँ पाटन है जगह गुजरात में, वहाँ जाते ही उसका किसी ने कत्ल कर दिया। तो इस तरह से उसका बहुत ट्रेजिक अंत हुआ।
0: बैरम खान का दौर खत्म हुआ, लेकिन मुगल दरबार में खींचतान खत्म नहीं हुई, उल्टे बढ़ गए। शासन प्रशासन पर माहम अंगा का प्रभाव काफी बढ़ गया। मुनीम खान को प्रधानमंत्री बनाया गया। मुनीम खान पर माहम अंगा का खास प्रभाव था। इसी दौर में राज्य विस्तार का नया दौर भी शुरू हुआ। माहम अंगा के बेटे आदम खान के नेतृत्व में मालवा पर हमला किया गया। यहां बाज बहादुर का शासन था।
2: मुगल सेनापति आदम खान ने क्रूरता की हदें पार कर दी। राजधानी सारंगपुर में कत्लेआम मचाया गया, लूटा गया।
0: जीत के बाद अकबर ने मालवा कूच करने का फैसला किया। कत्लेआम करने वालों को सजा देने नहीं, बल्कि लूट पर कब्जा करने। उस लूट में हरम की लड़कियां भी थी।
3: आदम खान ने वहां जाके जब बाज बहादुर को हरा लिया था, तो बहुत बुरी तरह से ये लूट मार कर रहे थे। उसके जो हरम में वो तीन कंकुबाइंस थी, उनको भी सबको कब्जे में कर लिया था। और बहुत जैसी उनको खबर मिली, वैसे ही बगैर किसी को बताए हुए फर्स्ट मार्च से वहाँ पहुँचे। और पहले तो उससे सारी बूटी रखवाई, उसके बाद फिर औरतों को छोड़ने को कहा, दो को उसने नहीं छोड़ा। फिर महामानगा इतनी देर में पहुँच गई, उन्होंने उसे खामोशी से मरवा दिया।
0: साफ था कि आदम खान बतौर बादशाह अकबर को महत्व देने के लिए तैयार नहीं था। अकबर ने 1561 के अंत तक अपने प्रभाव का विस्तार तेजी से करना शुरू कर दिया। उसने मुनीम खान को हटाकर शमसुद्दीन अतका खान को वजीर बनाया। इतना ही नहीं, आदम खान से मालवा की सूबेदारी वापस ले ली। लेकिन आदम खान कहां मानने वाला था? आदम खान और उसके साथियों ने शमसुद्दीन अतका को ही मार डाला।
4: क्यों मारा तुमने इसको?
2: क्या ये आपका वफादार नहीं?
0: अकबर ने आदम खान को उसी वक्त छत से नीचे फेंकने का हुक्म दिया। नौकरों ने नरमी दिखाई तो दोबारा नीचे फेंकने का हुक्म दिया।
4: तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? ले जाओ इसको।
0: अकबरनामा की यह तस्वीर उसी घटना का वर्णन करती है। इस घटना के कुछ दिन बाद माहम अंगा की मौत हो गई।
2: आदम खान और माहम अंगा के अंत के साथ अकबर की जिंदगी का एक अध्याय खत्म हुआ और कई मायनों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। दरअसल आदम खान के अंत से 4 महीने पहले अकबर जियारत के लिए अजमेर शरीफ गया। वापसी में दौसा के पास उसकी मुलाकात आमेर के राजा भारमल से हुई और यहीं से भारत के महत्वपूर्ण शासक वर्ग राजपूतों के साथ अकबर के संबंध का नया दौर शुरू हुआ।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
8: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
8: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
8: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
9: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन, मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
8: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
9: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
8: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
11: चक्रवर्ती की सेवा में निवेदन है।
12: बताइए कछुआराज, क्या चाहते हैं आप?
11: हमारी इच्छा है कि आप हमारे कछुआ वंश के साथ संबंध बनाएं।
12: वो कैसे?
11: आप हमारी बड़ी बेटी के साथ सास सम्मान विवाह करें।

0: जब राजा भारमल ने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव अकबर को दिया तब उसकी हालत बहुत खराब थी। मेवात के सूबेदार ने आमेर पर हमला करके भारमल को एक बड़ी धनराशि देने को बाध्य कर दिया। उसने भारमल के बेटे और दो भतीजों को बंधक भी रखा हुआ था। भारमल के पास अकबर जैसे बड़े बादशाह की शरण में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया था। बहरहाल अजमेर से लौटते समय सांभर में आमेर की राजकुमारी के साथ अकबर ने विवाह किया। राजा भारमल की बेटी का नाम राजकुमारी हीरा कुंवरी उर्फ हरखाबाई माना गया है। हरखाबाई के बाद भी अकबर ने कई और राजपूत राजकुमारियों से शादी की। हरखाबाई से शादी के बाद अकबर की राजनीतिक दिशा के साथ साथ उसकी सामाजिक सोच में भी एक बड़ा बदलाव आया।
1: अकबर ने एक नई नीति, एक नया आधार जिसके मैं जिक्र कर रहा था बनाया कि यहाँ के जो राजवंश हैं, जो देशी राजवंश हैं, उनके साथ 300 साल से हम लड़ते आए हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना हम उनको ख़त्म कर सके ना वो हमें ख़त्म कर सके, तो इसलिए इनको अपने साथ क्यों ना मिलाया जाए, यू नो, इनको भी शासन में, राज्य में, साम्राज्य में जगह दी जाए।
2: यहाँ एक बात बताना बेहद जरूरी है कि फिल्मों के जरिए, कुछ कहानियों के जरिए ये बात सामने आती है कि अकबर ने किसी जोधा बाई से शादी की थी, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, ये बनावटी बातें हैं, इसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है।
1: क्योंकि ये ना जोधाबाई वो थी जो जोधपुर के घराने से आती हैं, और जोधपुर के घराने से अकबर के हरम में कोई नहीं थी, तो ये जोधाबाई अकबर की कोई पत्नी नहीं थी, बल्कि जहांगीर की पत्नी थी, जोधाबाई अकबर की पत्नी नहीं थी। लेकिन ये और अकबर के ज़माने में और अकबर के बाद के 17वीं शताब्दी में इनका कोई जिक्र है नहीं, ये शायद 18वीं शताब्दी से या 18वीं शताब्दी के बाद के हिस्से से ये एक आम जनता में एक शुरू हो गई कथा कि अकबर की सबसे चहेती पत्नी थी जोधाबाई और उसका बेटा जहांगीर था वगैरह वगैरह।
0: अकबर एक तरफ गहरे राजनीतिक फैसले करने में सक्षम था, वहीं कभी गुस्से में तो कभी बेवकूफी में अपनी जान को भी दांव पर लगा देता था। 1564 में दिल्ली में लड़कियों और विवाहित औरतों के पीछे अकबर इस कदर दीवाना हो गया कि उस पर जानलेवा हमला हो गया। अकबरनामा में ये पेंटिंग उस घटना को दर्शाती है। 1573 में तो उसने राजपूतों की वीरता की नकल में अपनी जान जोखिम में डाल दी। बात तब की है जब वो गुजरात अभियान में सूरत में था और कुछ राजपूत राजाओं के साथ शराब पी रहा था। वहां मानसिंह भी मौजूद था। बातचीत घूम फिर कर राजपूतों की वीरता पर होने लगी।
3: राजपूत अपने जान की बिल्कुल परवाह नहीं करते, इतिहास इस बात का गवाह है।
4: बादशाह सलामत, जान लेने और देने के तरीके तो कोई हमसे सीखे। दो धारी तलवार लेकर दो राजपूत एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और तलवार एक दूसरे के सीने के

0: स्थान से उठा और उसने तलवार नीचे गिरा दी।
1: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
0: अकबर अपनी वीरता को दिखाने के लिए इतना आतुर था कि उसने इस बात की परवाह ही नहीं की कि अगर मान सिंह ने तलवार नहीं हटाई होती तो उसकी जान चली जाती। इतना ही नहीं, अकबर ने गुस्से में मान सिंह को जमीन पर पटक कर मारना शुरू कर दिया। मान सिंह को पिटते देख वहां मौजूद दूसरे लोगों ने मान सिंह की जान बचाई।
2: इन घटनाओं से साफ है कि अकबर भारतीय इतिहास के सबसे बड़े शासकों सम्राटों में से एक जरूर था, लेकिन फिर भी इंसान था, गलतियां करता था और उन्हें सुधारने की कोशिशें भी करता था। बहरहाल, अकबर को जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि सम्राट अशोक के बाद वो पहला शासक था जिसने धर्म में सुधार की कोशिशें की, धार्मिक कट्टरता का विरोध किया।
0: कहा जाता है कि जो राजपूत राजकुमारियां अकबर के महल में आईं, उनका धर्म परिवर्तन नहीं करवाया गया। महल में वो हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक पूजा पाठ करती थी। तब के मौलवी और इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने तो लिखा है कि वो अपनी राजपूत पत्नियों के साथ हवन किया करता था, यानी यज्ञ में हिस्सा लेता था। देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी को खुद से जोड़ने के लिए इसी दौर में अकबर ने दो बड़े फैसले लिए। पहला फैसला था हिंदुओं के तीर्थ पर लगने वाले टैक्स को हटा लिया गया।
3: अकबर साहब मथुरा गए थे वो खेलने, शिकार खेलने, और काफ़ी रुक के वहाँ शिकार खेला। ये पैदल मथुरा से आगरे, उस वक्त आगरे में था, और पैदल पहुँच गए और वहाँ जाके जो इन्हें पहला ऑर्डर निकाला है, अबुल फजल लिखता है पहुँचते के साथ ही, वो ये था कि पिलग्रिमेज टैक्स माफ। तो इन्हीं ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे गरीब से गरीब आने वाले लोगों से भी पैसे लिए जाते हैं, जो बड़ी श्रद्धा से आ रहे हैं, चाहे ये उस श्रद्धा में यकीन रखते हों चाहे नहीं, मगर वो तो आ रहे हैं और उनके ऊपर एक टैक्स लग रहा है। तो इन्होंने उसको फौरन माफ़ कर दिया। तो ये इनका इंसानों के साथ, आदमियों के साथ रहने और उनकी परेशानियाँ समझने का एक था, इसमें कोई पॉलिटिक्स या कोई पॉलिसी नहीं थी।
0: अकबर का इसी तरह का दूसरा फैसला था जजिया हटाने का। जजिया वो टैक्स था जो सभी वयस्क हिंदुओं को उनकी हैसियत के हिसाब से देना पड़ता था। ये टैक्स एक तरह से पराजित हिंदू जनता को धर्म परिवर्तन के लिए विवश करता था। इस टैक्स से मुगल सल्तनत को अच्छी आमदनी होती थी। अबुल फजल ने लिखा है 1564 में यह फैसला अज्ञानी उलमाओं की भारी खुसफुसाहट के बावजूद लिया गया है, जो कि हिंदू सल्तनत के लिए उतने ही समर्पित थे।
2: यह अकबर महान की जिंदगी का वो दौर था जब कहते हैं अकबर कट्टर सुन्नी मुस्लिम उलेमाओं के प्रभाव में था। उनमें से दो मुख्य थे, शेख अब्दुल नबी और अब्दुल्ला सुल्तानपुरी। अब्दुल नबी तो इतना कट्टर था कि उसने अकबर को एक बार केसरिया रंग का कपड़ा पहनने के लिए भरे दरबार में डांटा ही नहीं, बल्कि डंडे से मारने तक की बात कही थी। खैर, ये पहला दौर था, जबकि दूसरा दौर तब शुरू हुआ जब उसने इबादत खाना बनवाया, जहां वो धर्म के जानकारों के बीच बहस को सुनता था और धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़ों को बेमानी समझने लगा था।
0: इबादत खाना में होने वाली बहस से अकबर बहुत परेशान हो गया। छोटी छोटी बातों पर झगड़े ने उसे धार्मिक गुरुओं के निजी स्वार्थ को समझने में मदद की। 1581-82 में तो उसने इबादत खाना बंद ही करवा दिया।
4: अबुल, काश कि हमने मौलाना और उलमाओं के बीच की ये अलग अलग राय नहीं सुनी होती। काश कि हमने कुरान शरीफ की आयत और हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जुड़े वाकयात के अलग अलग मायने नहीं सुने होते। काश।
0: इबादत खाना की बहस से अकबर परेशान तो था, लेकिन उसके धर्म को लेकर समझ बिल्कुल साफ हो गई थी। वो समझ गया था कि सभी धर्मों में सच्चाई के कुछ तत्व मौजूद हैं और सभी धर्म आखिरकार परम सत्ता तक ले जा सकते हैं। यही आगे चलकर सुलह कुल यानी सभी धर्मों के बीच शांति की अकबर की नीति

0: महान बना। सुलह कुल ही अकबर को अकबर महान बनाता है।
1: भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ तो एक तरफ तो ईश्वर की, अल्लाह की एक नई अवधारणा थी, एक ईश्वर है और उसकी इबादत का एक तरीका है। दूसरी तरफ हिंदू धर्म में कई ईश्वर हैं, करोड़ों ईश्वर हैं, करोड़ों देवी देवता हैं। ईश्वर तो एक है लेकिन कई करोड़ों देवी देवता हैं, उनके पूजा के करोड़ों तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो इन दोनों अवधारणाओं में, दोनों परिकल्पनाओं में आपस में सामंजस्य भी हुआ, आपस में टकराव भी हुआ। तो इस टकराव की परिप्रेक्ष्य में एक नई अवधारणा उभरी कि हमें अल्लाह और ईश्वर में फ़र्क नहीं करना चाहिए, हमारे लिए एक ही ईश्वर है, वो अल्लाह भी है और हिंदुओं का ईश्वर भी है। तो यहाँ से अवधारणा बनती है उसकी सुलह कुल की।
2: 1580 में कुछ मुगल अहदेदारों ने अकबर के खिलाफ बगावत कर दी और छोटे भाई मिर्जा हाकिम को बादशाह घोषित कर दिया। इस बगावत को कुछ उलेमाओं ने अपना समर्थन दिया। बहरहाल अकबर ने बगावत को शांत कर दिया, लेकिन अकबर रुका नहीं।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
9: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: एक बादशाह की सल्तनत के लिए ये बहुत बुरी बात है कि उसके लोग बटे हों, एक दूसरे के खिलाफ हों। हमारी सल्तनत में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं। ये सब लोग सिर्फ अलग अलग सोच नहीं रखते, अगर कभी कभी एक दूसरे के साथ दुश्मनी से पेश भी आते हैं। हमें इन सबको एक करना होगा, एक, लेकिन इस तरीके से कि ये सब एक भी हो और सब भी हर मजहब में अच्छाई होती है, हर मजहब में। हमें उस अच्छाई को बढ़ावा देना है, इसी में खुदा की इज्जत है और सल्तनत इसी से बची रहेगी और लोगों में अमन होगा। आप जितने भी लोग यहां मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसकी राय दें, और जब तक वो होता नहीं तब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा।
0: अकबर की नीतियों को आगे चलकर दीन इलाही का नाम दिया गया। कहीं कहीं तौहीद इलाही का जिक्र आता है, लेकिन खास बात यह है कि अकबर ने खुद कभी भी यह नहीं कहा कि वो किसी नए धर्म या दीन की शुरुआत कर रहा है।
1: दीन इलाही इस शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक इतिहासकार ने किया, अकबर के ज़माने में, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने। बाकी इसका औपचारिक जो नाम है वो तौहीद इलाही है। एक राजनीतिक विचारधारा की स्थापना की इस तौहीद इलाही के ज़रिए कि आपको मेरी तरफ वफादार होना चाहिए। आपकी धार्मिक आस्था क्या है, आपकी वैचारिक आस्था क्या है, किस कास्ट से हैं, किस जाति से हैं, इस सबसे ऊपर उठ करके बादशाह की तरफ आपकी वफादारी होनी चाहिए।
0: अकबर के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उसने दीन इलाही नाम के धर्म की शुरुआत की। इतिहासकार इसे भी ख्याली और बेबुनियादी मानते हैं।
12: ना दीन इलाही ना तौहीद इलाही किसी मुगल कंटेम्प्रेरी सोर्स में ये आपको लफ्ज नहीं मिलेंगे। तो ये जैसे सूफी ऑर्डर्स होते हैं उसी तरह की एक चीज़ थी कि अकबर को आप अपना पीर मुर्शिद माने, अपना गुरु माने।
0: अकबर की इन उदारवादी नीतियों का विरोध हुआ। अकबर का कहना था कि मौलवी उलमाओं की अंध नकल की जगह अकल का इस्तेमाल होना चाहिए। 1591 के आसपास अकबर के बेटे मुराद ने उसे चिट्ठी लिखकर सवाल पूछा कि अगर कैंप में कोई शख्स धर्म के बड़े जानकारों की तरह नमाज या पूजा पाठ करता हुआ पाया गया तो उसे क्या रोका जाना चाहिए। अकबर ने जवाब में कहा कि उस सैनिक को उसके अधिकारी नसीहत दें, समझाएं, जिससे कि वो राह।
13: आज के अंक में बस इतना ही। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
14: एंड स्टे ट्यून्ड डियर लिसनर्स फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, द हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का भी लोकार्पण होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
2: प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य आकर्षण 20,700 करोड़ से अधिक के लागत से निर्मित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 326 किलोमीटर लंबे 3 मुख्य खंडों को राष्ट्र को समर्पित करना है, जिससे यह पूरा फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। प्रधानमंत्री न्यू साड़न, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगाम और न्यू JNPT से मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही वे टांडा रोड और वडोदरा के बीच एक नई यात्री सेवा की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात और मध्य प्रदेश के कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 9,700 करोड़ से अधिक की 3 रेल परियोजनाएं और 1,780 करोड़ की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात सरकार की लगभग 2,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें कडाणा बांध पर 110 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का लोकार्पण शामिल है। गुजरात प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नवसारी में भाजपा के नए AI सक्षम हाईटेक कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
3: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेविये बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
4: श्री बेटन ने कहा कि परिषद का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। श्री बेटन ने मौजूदा वीटो प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष बताया और तर्क दिया कि किसी भी एक देश को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित निर्णयों को रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सुरक्षा परिषद में 2/3 बहुमत वीटो को रद्द करने में सक्षम होना चाहिए। श्री बेटन ने सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की मांग की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्किन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 6G पहल का उद्देश्य नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
8: अमरीकी वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने अमरीका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों को प्रतिबिंबित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और नवाचार को बढ़ावा दें। ये घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की G20 नवाचार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमरीकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात के बाद हुई। दोनों नेताओं ने 6G प्रौद्योगिकी के भविष्य और अगली पीढ़ी के दूर संचार नेटवर्क के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, AI और डेटा केंद्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। राज्य मंत्री प्रसाद ने ISM 2.0 में अधिक अमेरिकी निवेश की संभावना को प्रोत्साहित किया। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
9: मीडिया से बातचीत में पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि संपत्ति महिला के नाम पर थी और बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन उनके पति के नाम पर था। वहीं बेटा बिल्डिंग का प्रबंधन संभालता था। दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बेटे को 2 दिन के पुलिस हिरासत में भेजा गया है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। कुल 12 लोगों को एम्स दिल्ली लाया गया था। एम्स के अनुसार 3 लोग गंभीर हालत में हैं जबकि 2 की हालत स्थिर हो गई है, जिनमें से 1 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 5 अधिकारियों को निलंबित किया है। इनमें उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्षा को देखते हुए बरेली में अगले दो दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
10: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में रामगंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वहीं अगले दो दिनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में इराक से खेलेगी। वहीं मिक्स टीम W1 फाइनल में चेक गणराज का मुकाबला करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
11: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। रक्षा खरीद परिषद की 1,10,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई DAC की बैठक, 1,00,000 करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, तीनों सेनाओं की बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे नए रडार, हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक, विशेष वाहन और जैमर। राजस्थान पत्रिका ने पहली बार शीर्षक से दिया है, पीएम मोदी के कार्यक्रम की ऑनलाइन बुकिंग 1 घंटे में फुल, 42,000 वेटिंग, सारी व्यवस्था डिजिटल। प्रधानमंत्री मोदी आज वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हिंदुस्तान के अनुसार हत्यारे पीजी का मालिक गिरफ्तार, निगम उपायुक्त समेत 5 अधिकारी निलंबित, असुरक्षित इमारतें खाली कराई गई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, हाईकोर्ट के निर्देश, जांच हो, अफसर की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, MCD अफसरों से होगी पूछताछ। अमर उजाला ने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बयान देते हुए लिखा है, विश्वविद्यालयों में ज्यादातर स्वर्ण पदक विजेता महिलाएं, यह मूक क्रांति है। पंजाब केसरी ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, वैश्विक उथल पुथल के बावजूद आर्थिक वृद्धि कायम, भारत अन्य देशों से जुड़ा रहा, 15 अगस्त 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। हिंदुस्तान ने ऐलान शीर्षक से लिखा है, होर्मुज में नया मार्ग बनाएगा ईरान, पोतों के लिए कॉरिडोर के नक्शे जारी होंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल समेत 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, बिहार में बाढ़ का कहर, 13 जिलों के 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमरीका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढाई इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch development projects worth over 35,000 crore rupees from Vadodara in Gujarat today. To also inaugurate Global FinTech Fest 2026 in Mumbai. Defence Acquisition Council clears capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for defence forces. Luxembourg backs India's bid for permanent seat in UN Security Council. India joins US and 24 other countries to shape development of next generation 6G networks. Delhi police arrests 3 members of family that owned collapsed building in Satya Niketan area of national capital. And India set to feature in 4 gold medal finals at World Archery Para Series in Ahmedabad today. And now the news in detail.
13: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
14: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
15: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
14: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
15: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
14: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
15: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
14: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
16: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
17: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
16: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
17: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
16: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
18: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ। आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 पे।
14: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
15: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
14: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
19: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
20: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
21: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
22: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
21: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
19: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा, मिला ही नहीं
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
9: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87 8 94 18 7 44।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 अमर जेड पर।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज यहाँ सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: फिर कभी मेरे प्यार पर शक मत करना।
1: फिर तुमने मेरे दिमाग में शक क्यों डाला? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन शक नहीं।
0: अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं पागल हो जाऊंगा, पागल।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
7: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
8: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
7: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
8: अभी कॉल कीजिए 90066 7231।
7: कॉल कीजिए 90066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
10: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
9: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
10: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
10: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
10: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: जलस्तर में कमी से बाढ़ से थोड़ी राहत, 13 जिलों में 27 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ पीड़ितों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने का दिया निर्देश, फसल क्षति का आकलन कर प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा मिलने का दिया भरोसा। राज्य में 4000 से अधिक अपराधी और माफियाओं की संपत्तियां होंगी जब्त। और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा, खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए पंचायत खेल महोत्सव का किया जाएगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में गंगा, गंडक, कोसी, सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। 13 जिलों के 423 ग्राम पंचायतों के 27 लाख से अधिक लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना में गंगा, सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। हमारे पटना संवाददाता ने बताया है कि अब भी बाढ़ से 11 प्रखंडों की लगभग 3,25,000 की आबादी प्रभावित है।
1: पटना जिले के 11 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं। पुनपुन नदी में 7 साल बाद इतनी गंभीर बाढ़ आई है। मोकामा, अथमलगोला, फतुहा और मनेर में बाढ़ का सबसे अधिक असर दिख रहा है। बख्तियारपुर नगर परिषद के निचले इलाकों में भी बाढ़ का पानी फैल गया है। हाथीदह के महेंद्रपुर गांव के पास NH-80 के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। मोकामा के शिवनाथ और बहुपुर तथा अथमलगोला के सबनीमा में बाढ़ का पानी आ जाने से आवागमन प्रभावित हुआ है। बेहटा सरमेरा पथ पर नेवा गांव के पास लगभग 10 फीट लंबाई में सड़क धंस गई। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: पटना के मसौढ़ी प्रखंड के 48 स्कूलों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने के कारण इन्हें बंद कर दिया गया है। इधर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने बताया कि बाढ़ के कारण 22 आंगनबाड़ी केंद्रों को दूसरे स्थानों पर संचालित किया जा रहा है। भोजपुर जिला मुख्यालय आरा में गंगा नदी अब भी खतरे के निशान से 154 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर आज स्थिर होने की संभावना है। अभी राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर 2.5 फीट पानी बह रहा है।
2: जिले के दोगच्छी से अकबर नगर थाना की ओर जाने वाले मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों और लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। जिले के 56 पंचायतों के 178 गांव और 347 वार्ड बाढ़ से प्रभावित हैं। 2,17,000 से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। वहीं 22,000 से ज्यादा लोग घर खाली कर चुके हैं। जिला प्रशासन द्वारा 71 नावों का परिचालन कराया जा रहा है। जिले में 15 सामुदायिक रसोई चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित लोगों को हर प्रकार की सुविधा देने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। वैशाली और सारण जिले में राहत शिविरों और सामुदायिक रसोई केंद्रों का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति सामान्य होने के बाद नुकसान का आकलन कर प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जाएगी। श्री चौधरी ने कहा कि बाढ़ के कारण हुई फसल क्षति का भी आकलन कर प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।
3: राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर सारी टीम लगाई गई है, लगातार लोगों को खाना भी उपलब्ध कराया जा रहा है और यहाँ पर सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जांच की भी प्रक्रिया चल रही है, जितने लोग आ रहे हैं उनके बच्चों को पढ़ने की भी व्यवस्था की जा रही है। अभी तक लगभग 20 सेंटीमीटर से अधिक पानी नीचे जा चुका है और अगले 24 घंटे में लगभग इससे अधिक पानी नीचे जाएगा, लोगों को रिलीफ मिलेगा।
0: मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि गंगा में गाद की समस्या के निराकरण के प्रयास किए जा रहे हैं, इससे बाढ़ की समस्या का स्थायी निदान हो सकेगा।
3: सेंट्रल वाटर कमीशन से बात किया है और इसका पूर्ण रास्ता कैसे हो सकता है CWC के माध्यम से, या उप मुख्यमंत्री जी इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं, उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जी भी हैं, सब लोग इस पर गहन चिंतन कर रहे हैं कि गंगा मैया के पूरे स्ट्रेस को किस तरह बांधकर लोगों को बाढ़ से रिलीफ मिल सकता है, इसका प्रयास।
0: उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य में 3800 किलोमीटर से अधिक तटबंध बने हुए हैं जिनमें कहीं भी कटाव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर जमींदारी और छोटे बांध टूटे हैं जिस कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि फरक्का बराज से बिहार को नुकसान हो रहा है। श्री चौधरी ने कहा कि तत्कालीन केंद्र की देवगौड़ा सरकार ने 1996 में बांग्लादेश

0: से एक समझौता कर लिया था जिससे परेशानी हो रही है। पूर्व मध्य रेलवे ने पुनपुन रेल पुल संख्या 21 पर सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज भी 10 मेमू रेलगाड़ियों के परिचालन को रद्द कर दिया है, जबकि 10 रेलगाड़ियों के मार्ग को बदल दिया गया है। रेल प्रशासन के अनुसार जलस्तर सामान्य होने के बाद नियमित रेल सेवा बहाल की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक गांव स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक विशेष अभियान चलाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कल पटना में बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि अभियान के तहत रक्तदान, वंदे मातरम का गायन समेत 13 तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: 13 तरह के कार्यक्रम पूरे माह भर चलने वाले, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे देश में बिहार में रक्तदान करने वाले। इसके साथ साथ महिलाओं को जो प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए जो किया, वो हमारी आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को बुलाकर, उनके अभिभावकों को बुलाकर कई तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं। उसके साथ साथ कार्यक्रम के अंतिम दिन पार्लियामेंट से पंचायत तक के 25,00,000 जनप्रतिनिधि पूरे देश में किसी एक स्थान पर एक साथ 6 छंदों का वंदे मातरम गायन करेंगे।
0: राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है कि स्वच्छ वायु पर्यावरणीय विलासिता के बजाय एक मूलभूत आवश्यकता है। नई दिल्ली में स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ वायु जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इधर राष्ट्रीय हरित अधिकरण की ओर से जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 की रिपोर्ट में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 48 शहरों में राजधानी पटना को 16वां स्थान मिला है। पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 43 को बेहतर स्वच्छता व्यवस्था के लिए 40 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। सर्वेक्षण सूची के अनुसार लखनऊ पहले, इंदौर दूसरे और जबलपुर तीसरे स्थान पर है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा, पर्यटन में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बड़ी क्षमता है। नई दिल्ली में आयोजित स्वास्थ्य सेवा और कल्याण एक्सपो संजीवनी 2026 में श्री गोयल ने कहा कि भारत अपनी मजबूत चिकित्सा व्यवस्था के जरिए दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने बताया कि पिछले 7 वर्ष में 35 लाख विदेशी मरीजों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। राज्य में आपराधिक माध्यमों से संपत्ति अर्जित करने वाले 4000 से अधिक अपराधी और माफियाओं की संपत्तियां जब्त की जाएंगी। पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा के आधार पर पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इनमें से 800 मामले न्यायालय के स्तर पर प्रक्रियाधीन हैं। अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय सुनील कुमार और एडीजी विधि व्यवस्था KS अनुपम ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए कहा कि BNSS की धारा 107 के तहत संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव है। KS अनुपम ने बताया कि राज्य भर में महिला हॉस्टल और कोचिंग संस्थान की जांच को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान पटना में 400 महिला हॉस्टल बिना निबंधन के मिले हैं। पुलिस दीदी की मदद से निजी महिला हॉस्टलों पर नजर रखी जा रही है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSRTC बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच 14 नए अंतर्राज्यीय मार्गों पर बसों का परिचालन शुरू करेगा। परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने बताया कि उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से चल रहे 25 पुराने मार्गों पर बस संचालन के समझौते को भी आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। श्री रावत ने कहा कि नए मार्गों के जुड़ने से प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। राज्य के दूध उत्पादक सहकारी संघ से जुड़े पशुपालकों को अब दूध बिक्री की राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। कॉम्फेड के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि पशुपालकों को सीधे खाते में राशि भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस महीने के अंत तक राज्य के 5000 दूध उत्पादक सहकारी संघ से 50,000 दूध उत्पादकों को जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद 7 लाख से अधिक दूध उत्पादकों के खाते में सीधी राशि भेजी जाएगी। श्री अशोक ने कहा कि वर्तमान में प्रतिदिन 30 लाख टन दूध जमा किया जा रहा है। राज्य में खेल प्रतिभाओं को ग्रामीण स्तर पर अवसर उपलब्ध कराने के लिए पंचायत से प्रदेश स्तर तक विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि इसके लिए पंचायत खेल महोत्सव के आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में है। श्री सिंह ने कहा कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत एथलेटिक्स, कबड्डी, साइकिल रेस, फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आगामी 12 सितंबर से पटना में महिला शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में जिला शतरंज संघ से पंजीकृत खिलाड़ी भाग लेंगी। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि साक्षरता ज्ञान, अवसर और बेहतर भविष्य का रास्ता खोलती है। उन्होंने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। इस अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सभी वर्ग के लोगों से संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य हासिल करने में सक्रिय योगदान की अपील की है। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीवान और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: दिनांक 8 सितंबर को राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज एवं पश्चिम चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, लालू प्रसाद और अन्य के खिलाफ IRCTC से जुड़े लारा प्रोजेक्ट धन शोधन मामले की सुनवाई टली। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब 25 दिनों में होगी रसोई गैस की बुकिंग। दैनिक भास्कर लिखता है, पंचायती राज विभाग ने माना, पंचायत सचिव ट्रांसफर में गड़बड़ी, 3 नाम हटाए गए। प्रभात खबर ने लिखा है, विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मियों को प्रोन्नति के लिए अब पास करनी होगी परीक्षा। आज अखबार की सुर्खी है, राज्य सरकार गांव के मकानों से नहीं वसूलेगी होल्डिंग टैक्स, 8 करोड़ ग्रामीणों को मिलेगी राहत। राष्ट्रीय सागर समेत अन्य अखबारों ने बाढ़ से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गंगा गंडक कोसी सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ से थोड़ी राहत, 13 जिलों में 27 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ पीड़ितों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने का दिया निर्देश, फसल क्षति का आकलन कर प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा मिलने का दिया भरोसा। राज्य में 4000 से अधिक अपराधी और माफियाओं की संपत्तियां होंगी जब्त। और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा, खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए पंचायत खेल महोत्सव का किया जाएगा आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
9: नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
10: हेलो, हाँ जी, योगेश जांगड़े बेगोपरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
11: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: जी धन्यवाद।
11: नाम बता दीजिए।
10: योगेश जांगड़े बेगोपरा छत्तीसगढ़ से।
11: अच्छा, कैसे हैं आप?
10: बढ़िया है, अच्छा है।
11: तो क्या हो रहा था अभी?
10: अभी घर ही में है अभी।
11: अच्छा, मौसम कैसा उधर का?
10: मौसम बहुत धूप है अभी 2-3 दिनों।
11: अच्छा, तो वैसे क्या करते हैं योगेश जी आप?
10: हमारा काम खेती बाड़ी का ही है।
11: अच्छा, चलिए बढ़िया। तो नाश्ता वास्ता हो गया आपका?
10: हाँ जी हो गया है।
11: चलिए ठीक है, तो फिर आज की फरमाइश बता दीजिए।
10: फिल्म मोहब्बत से सुनवा देंगे, हमको हमेशा चुरा लो।
11: क्या आप गा के बता सकते हैं?
10: गाने नहीं सुना देंगे, अगली बार सुनाएंगे जो भी फरमाइश रहेगा।
11: ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये गाना आप किसी को डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
10: सभी को, आप सभी के लिए भी।
11: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
10: जी धन्यवाद।
11: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी मैडम, मैं ज्योति साहू मधुसूदनगढ़ से बात कर रही हूँ।
1: जी जी, कैसी हैं ज्योति जी?
0: बस बढ़िया है मैडम। बेटे आप कैसे हो?
1: मैं भी बढ़िया हूँ।
0: आज बहुत दिनों में फोन लगा है मेरा।
1: अच्छा जी, क्या पहली बार कॉल किया?
0: नहीं, ऐसे नहीं, पहली बार नहीं, कई बार लगा है, लेकिन अभी कुछ दिनों से नहीं लगा रही थी।
1: अच्छा,
0: अभी कुछ नहीं, बस खाना खा रहे थे और सुन रहे थे।
1: तो मैं बोल रही हूँ कि मुझे नहीं खिलाइएगा।
0: खिलाऊंगी ना, आओ ना आप। आज हमने सेना की तरी की सब्जी बनाई है।
1: अच्छा जी,
0: हमारी गुड़िया का जन्मदिन है आज का लगता।
1: अच्छा जी, तो उनको मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो।
0: थैंक यू मैडम जी। जन्मदिन के ऊपर से ही आज कोई सा गाना सुना दीजिए।
1: ओके, तो आप ही बता दीजिए
0: कौन सा गाना है। तो नाम नहीं आ रहा है
1: तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034648652 पे।
5: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: नमस्ते दी।
7: नमस्ते, कैसी हैं?
6: राधे राधे।
7: राधे राधे।
6: और चलिए हमारा से भी भोजपुरी में बात करी रहा, और आवाज बड़ा नीक लगा था आजकल भोजपुरी में सुन के।
7: वैसे कहाँ से बोला था नहीं?
6: जी जी, हमारा नाम है रानी, हमार घर है रखुआ, और हम बड़ा दिन से रो तो सोचते रहनी बात करे के, आज फाइनली मौका मिला। और बताई रुआ कैसन वानी है? और ऐसे ही तो रेडियो पर आवाते हैं तो काफी रुआ के सुन के सुकून मिलता और बहुत अच्छा लगा था जी।
7: अच्छा जी
6: सच न। और आज हम देखी रोवा कहते सब चीज छोड़ के कहानी, आज देखा था नहीं केकरा से बात होता, बाकी अंत वाला तो सब वाला रोवा से बात हो गई। देखी रोवा से लिसनर सब बात करे खातिर कैचे भर भर के ढाका भर भर के सभी कोई खाली बात
7: करके बहुत अच्छा लगा।
6: और खास करके सच में रोवा सबकी आवाज के पता ना रोवा लो आरजे सब कोई तो खाना हुए खाला, बाकी रोवा लोग आवाज ये का इतना नीक लगा था समझे में नहीं की आवाज। थोड़ा राज
7: राज तो कुछ ना बा, लेकिन वैसे बता दी थे राउत भी आवाज बहुत ही प्यारा बा।
6: अच्छा जी, कसर ना छोड़नी पूरा कर देनी
7: ना जन बता दी गईला।
6: जी जी, और ऐसे भी रहोगे जब से हम सुना था नहीं, बीच में कॉल कर लेवानी तो दो बार तीन बार चार बार दीदी से बात बोल बा भारती दी से, और एक दिन बात वो बता झटका आ गए हम जो वहाँ से बात भाई तो फिर बात कहीं वहाँ से दी से देखा था नहीं, अब वहाँ से कब बात बोला, बाकी आज फाइनली बात हो गई।
7: हम भी रवा से बात करके बहुत ज्यादा एक्साइटेड बानी।
6: जी जी, और खास करके रवा जब रेडियो ऑन आई यार आवे नी और आवाज बहुत मस्त बा जी। और रवा सभी के जितना अर्जे बानी लो, और रवा लो के बारे में हमने कहा बोली सर जितने बोली से उतने कम पड़ गई।
7: आप रवा लो के
6: दुआ
7: जी जी रवा लो के दुआ प्यार से हम ये के बोले निशान।
6: जी जी, और होके के चाहे जी होके के चाहे, और कहला किसा एक ही को सवाल हर कोई के मन में उठेला के स्टार्टिंग में अगर हमने के कोई भी काम करी सन, अगर हमने में 1000 बुराइया हो बाकी हर इंसान में एक अच्छाइया होला जी, तो सही बात। और रवा लो तो पूछे के नहीं के, और बताई रवा नाश्ता वास्ता कैले बानी की ना?
7: हाँ हाँ भैया, और भैया की ना?
6: और आज हम देखियो भैया, आज थोड़ा हम लेट बानी और सुबह बस से थोड़ा सोमवार तो आज थोड़ा काम ज्यादा होला
8: और
6: जी और खाए के केवल बात रही तो आदमी खा ली बाकी बिना अगरबत्ती जे रहले थोड़ा आदत नहीं छे और यही के थोड़ा सा रुक बा बाकी अब बात हो जाए तब तुरंत वही काम बाकी बा
8: जी जी पूजा पाठ
6: और बारिश होता रहो तेरा
8: बारिश तो नहीं छे वो अभी फिलहाल
6: होता थोड़ा बहुत
8: अच्छा वैसे कहाँ से बोलत बानी रहुआ
6: जी हमारा नाम है रानी और हमारे घर है रखुआ और रहुआ जाने में थोड़ा दिक्कत होता बाकी लोग जान जाये
8: ना एक बार शो में पता चला हुए कि जे रानी नाम के जे लिसनर वानी बहुत अच्छा बात करेंगी और बहुत देर तक बात
6: काफी दिन दिव्या दी से बात भई रहो पर काफी रिएक्शन मिले रहुए और दी अब बिना देरी की अगर इजाजत हो तो एक लाइन हमरा बोले के बाद अगर वो कहीं तो हम बोली और सारी जो भी कुछ बात दो लाइन वो लिसनर के बारे में हमरा बोले के बाद अगर तो खैर हमके वहाँ के नाम पता नहीं है बाकी बड़ा शिद्दत से वो हमारी जौन दो लाइन भोजपुरी में वो गाना गाई बड़ा जबरदस्त गाना गाई दी और सच बताई तो हम वहाँ के रिकॉर्डिंग सुनते रही खाना बनाई बाकी हम अपन खाना छोड़ के वहाँ का ताली बजेले रही जरूर और जी जी और वहाँ के जितना भी बात दर्शैले रही बड़ा जबरदस्त दर्शैले रही दी और काफी सबसे बड़का चीज ये लग रही जो मैं अपन नाम भी दर्शैले रही गाँव के भी नाम दर्शैले रही जी माँ हमनी के जौन सबसे बड़का थावे के मशहूर माता जी वानी वो दर्शैले रही तो वहाँ के काफी सुन के बहुत अच्छा लग रही थी और कभी भी इंसान के कम चाहे ढेर तो हर कोई के अंदर एक गुण होता बोला ना तो कभी वहाँ के अंदर बात कभी ओकरा के सामने ले आवे के चाहिए वहाँ के बहुत अच्छा से गई हिंदी बहुत अच्छा से गई और हमने की हिंदी में कितना बात कर ली सब की जन भोजपुरी की जन मिठास होला ना ओकर एक अलग भाषा वाला दी पूरा दिल के झकझोर देला
8: बात तो बिल्कुल सही कहा
6: और सच अरे वही बात बोला ही ना और माफी मांगते रही तो बेकार लग रही थोड़ा सा ऐसा कोनो बात नहीं की इंसान अगर जो भी कुछ बोले ला वो अपने दिल से बोले ला तो अपने लगन और मेहनत अपनी आवाज के दम पर बोले ला और वहाँ के बहुत अच्छा से गई और इतना हमारा जानकारी बाबू महाराष्ट्र से कॉल कर ले रही और वहाँ के बहुत अच्छा गीत गई दी बहुत अच्छा गीत गई
8: अच्छा
6: और अब टाइम ऐसे में तो सब चीज छूट जाओ एक दिन खाना छूट जाओ बाकी रेडियो ना छूटे के चाहे
8: अच्छा इतना लगाओ
6: इतना लगाओ बचपन से सुने नहीं ना अपना शो के बारे में जाओ चीज पूछिए हम बता दें पूरा 100 से स्टार्टिंग से लेके अभी तक पूछे हम सब बता दें और एमए से कितना अर्जी गर्ल वानी लो लेडीज में आदमी की सब जानकारी बा और बहुत शो सुन ले वानी से दी और स्टार्टिंग चुकी से सुने नहीं सो रहे बाकी जुड़े नहीं बहुत कम
8: देखिए रहुआ शो में बराबर जुड़ल करी कैसे की रहुआ से भी हम सब जुड़ल बानी बात करे के जन तरीका बना बहुत अच्छा लगे हम सबके
6: अच्छा जी और देखिए हम एक दो बात बाती हम बड़ में बहन में बड़ बानी और हम सबसे जिम्मेवारी ज्यादा हमारा ऊपर रहला छोटी सी हम बात रहुआ से बताओ तनी और जोन हमारा माँ की थोड़ा तबियत खराब हमने की काफी सरस्वती पूजा से पेट से लेके अभी तक ले माँ के तबियत बहुत जोर से खराब और वहाँ के थोड़ा सा हार्ट की बीमारी रहला और हमने के पूरा घर भर के परिवार मानी एक पल खाते टूट गए रहनी ऐसा बाकी अब भगवान की दुआ से आप सभी के बाद से सब चीज ठीक बावे
8: जी जी भगवान की सब ठीक हो जाए
6: और वहाँ के हार्ट के ऑपरेशन भइल बा तो थोड़ा वही में हमने की ज्यादा दिकदारी रहला बाकी अब जुड़े और रवालों के बीच में जरूर आए सामने
8: जी जी बिल्कुल तो फिर आज के कार फरमाइश वाला
6: जी और आज मौसम बहुत प्यारा है भोजपुरी से हम बजा दी वो गाना भगवान बोल ना जाने का हो गई बाय आज
8: क्या दो लाइन गा के बता सक रही हूँ
6: बिल्कुल बिल्कुल और रवा गाई अगर हाँ गाई रवा कहती तो पूरा निछावर बा खाली रहो इजाजत चाहे
8: बाप रे इतना ज्यादा लगाओ
6: बिल्कुल बिल्कुल रवा सब बर्थडे पानी हो लाइक तो लगाओ तो रही थी ना
8: अच्छा जी तो फिर सुना दी दो लाइन गा के
6: जी जी और हम गा के सुना देते नहीं रवा के और चलिए आवाज तो गाना के माध्यम से पता ना जैसे भी जाए बाकी रवा कहती जरूर

0: धड़केला, ये सॉन्ग सुनने के बाद
1: के साथ साथ गाना भी इतना अच्छा गा नहीं है।
0: अच्छा जी। और वो जब अपना आवाज से कहे नहीं कोनो लिसनर से के थोड़ा दो लाइन गा दी तो सोचे नहीं का मौका पर हम रहती बाकी चली आज और तसल्ली के पूरा कही नहीं।
1: हमके भी बहुत अच्छा लागल।
0: अरे गाना जितने हमने की तारीफ करी सब भोजपुरी में सबसे पहले लिस्ट में ये गाना हम रखे बहुत अच्छा लगे दी।
1: अरे गाना रहा क्योंकि सुनाए के भी चाहता नहीं।
0: जी जी। और हमारे कुछ रेडियो दोस्त बानी लो सभी के तो सुनाए चाहता नहीं। और सबसे पहले रोगा के इतनी मीठी आवाज में बात करे खाती और आज खुद से बात कर लेनी वो खाती रानी की तरफ से और भारती दीवानी दिव्या दीवानी और सोनी दीवानी और सोनू सर वानी और हम उनकी सबसे प्रिय एक आपका कहीं से डायरेक्टर सर के उनको के वानी वहाँ के संडे के दिन जब आवे नहीं तो बहुत अच्छा से बात करे नहीं हमने की लगे एक फैमिली के जैसा उनको के वानी तुमको के गाना में रानी की तरफ से। और कुछ रेडियो दोस्त आने लो जी कमरान जीवानी भास्कर जीवानी उत्तम सोनी जीवानी सगीर जीवानी बर्जी जीवानी इरफान जीवानी अहमद अली जीवानी दिलीप राम जीवानी पंकज जीवानी और शाहजहां जीवानी सन्यासी रंजन बाबा जीवानी राकेश जीवानी देवेंद्र जीवानी और उमा शंकर जीवानी और बाकी जितने लिसनर छूट गए लो रानी की तरफ से सब कोई के सवार है और मुकेश जीवानी।
1: जी जी बिल्कुल ये सब हम के परिवार हैं लोग है ना।
0: समझी एक सब आदमी एक रेडियो के डोर से बनाइल बा और सभी के एक दूसरे के सुन के बहुत सुकून मिले लादी।
1: जी जी बात तो सही बराबर
0: बात तो सही बा।
1: जी तो रानी जी फिर गाना प्ले करता नहीं कैसे कि और भी कॉल आवता।
0: बिल्कुल बिल्कुल और एमएस पूछे वाला बात नहीं क्या। और
1: वैसे तो रोगा से बहुत सारा बात करे के मन करता है लेकिन अगला आदमी भी तो पड़ी ना।
0: और सच बताए दी जब कॉल के बारी आवेला ना सच में कहता नहीं अगर कभी मौका मिले तो कभी लिसनर बनकर कॉल करे
1: जी
0: समझन जी लिसनर सब के आपके प्रति कितना प्यार रहेला जो कॉल करला के बाद जो हालत होला ना हमने के तो क्या कोनो बात ना रहेला हमने के तो अगर चाहे तो 5000 कॉल कर सका तनी से कोनो लेना देना नहीं के जैसे केवल बात करे के चाहत में आदमी 5000 कॉल हिला दी बाकी मेहनत सफल जाला। जी चलिए बिना देरी की हम गाना प्ले कर दी और आगे भी कर ली।
1: जी जी एक और बात बता दी कि हम बहुत खुश मानी लोग से बात करके
0: सबसे ज्यादा तो राहुल रानी बारी और सच कही तो राहुल नीक बड़ा आवाज बा।
1: अच्छा
0: भोजपुरी में अक्सर लोग बोले राहुल आवाजिया बड़ा नीक लगा था। जी
1: जी जी बिल्कुल
0: चलिए आगे भी कर ली दी।
1: जी जी तो प्ले करता नहीं सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक तकनीक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक तकनीक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-65750।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमज़ेड पर।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
9: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
10: Jab phone ghanti bajti hai to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello, hello.
11: To dosto break ke baad आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: जी, नमस्ते।
12: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM।
13: बालबू सोना को
12: कैसन बानी?
13: ठीक बानी, आपने बताया
12: हमने के भी ठीक बानी सर।
13: बारिश हुई?
12: बारिश तो अभी नहीं हो, मौसम बनेगा।
13: इधर तो हो रहा है बहुत ज्यादा।
12: अच्छा,
13: ना खोल बरसा भीजे न जाने,
12: क्योंकि सुनाए की भी चाहते नहीं।
13: हमारा फिर पाँच पंकज।
12: ओके, तो फिर प्ले पसंद होगा ना?
13: जी नमस्ते।
12: नमस्ते, सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: थैंक यू मैडम जी, मैं अरुण मिश्रा बोल रहा हूँ गोपालगंज से।
0: जी, क्या हाल चाल है अरुण जी?
1: बस ठीक है जी, आप लोग कैसे हैं?
0: जी, हम लोग भी बढ़िया है।
1: जी बस बढ़िया, कहीं जरूरत है? आप भी अच्छा रहे। हमको गाना सुनना है मैडम जी,
0: बता दीजिए।
1: ये गाना है आपको, काली काली घटा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है। ये गाना है, काली काली घटा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, तो आज मौसम है बड़ा।
0: तो अरुण जी, मुझे गा के बता सकते हैं दो लाइन?
1: मैं अपना भाई तो बराबर नहीं है ना, अपना भाई तो बराबर नहीं है।
0: कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे तो गाना तो बता रहे तो अच्छा लग रहा है, तो गाएंगे भी तो अच्छा
1: लगेगा। नहीं नहीं, ये गाना आप गवा दीजिए।
0: चलिए कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम आपसे गवाएंगे, ठीक है?
1: अच्छा अच्छा ठीक है जी।
0: और गाना किसी को डेडिकेट भी करना है?
1: अपना जितना भी रेडियो रिमझिम के सदागण है और जितने भी स्टाफ है, सभी मतलब रेडियो रिमझिम के प्रेमी आदमी को सबको डेलीकेट करना।
0: ओके जी,
1: ठीक है।
0: तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी जी
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन।

0: सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: Now pick your phone up.
7: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
8: जी मैडम जी, अभी मेरा फोन कट गया था।
9: अच्छा
8: जी, मैं ज्योति साहू मधुसूदनगढ़ से।
9: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
8: बढ़िया हूँ मैडम जी, अभी खाना वाना खा के फ्री होके बैठे हैं। आओ, आप भी खाओ खाना।
9: जी जी, बिल्कुल आएंगे।
8: मैं मधुसूदनगढ़ से।
9: अच्छा
8: जी, अभी फोन लगाया था लेकिन वो कट गया, अभी इसमें आज ही बात आई थी ना, इसलिए।
9: जी जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी।
8: गाना सुनूंगी, मूवी का नाम है संजोग
9: जी,
8: और गाने का बोले जसोदा का नंदलाला ब्रज का उजाला।
9: क्या आप दो लाइन गा के बता सकती हैं?
8: जी, जसोदा का नंदलाला ब्रज का उजाला, मेरे लाल से ही तो सारा जग दिल मिलाया।
9: डेडिकेट भी है
8: जी।
9: तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
8: थैंक यू मैडम जी, थैंक यू
9: जी। वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंजन 90.4 FM में।
1: मैम गाना सुनना है।
0: गाना सुनवाएंगे ना, बता दीजिए अपना।
1: सुनीता देवी हटियापुर से। 31 तारीख को फोन किए थे मैम, और बीच में नहीं किए थे, भूल गए थे, समय भूल गए थे काम करते करते।
0: चलिए कोई बात नहीं, वैसे क्या हो रहा था?
1: मैम खाना खा कर बैठे हैं तो आपको गाना देखिए सुनाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, और तो छोटा वाला मोबाइल से सुनते हैं। आज सोचे का पहले बार लगाए, मगर पहले बार नहीं लगा, 10:49 से लगाए मगर नहीं लगा।
0: चलिए कोई नाम लग रहा
1: है। तो मैम खाना हो गया है?
0: हाँ हाँ हो गया है। और आपका?
1: मेरा भी हो गया है मैम। गाना सुनना है मैम, घर वाली बाहर वाली में के भोजपुरी में के जो शंकर भगवान को तीज करती थी उसमें के नहीं है?
0: थोड़ा सा गाने के बारे में बता दीजिए।
1: भूल गए हैं, मगर घर वाली बाहर वाली में के रानी चटर्जी है जो
0: के रूप में।
1: हाँ जी वही। हाँ जी मैम वही सुनना है। अब तीज में आ रहा है, आज का अठवार तो उपवास रहेंगे लोग।
0: मतलब मंडे को
1: अगला मंडे को उपवास रहेंगे लोग। संडे को मैंने खाए नहाए जाता है, मंडे को उपवास रहेंगे।
0: ठीक है, तो फिर यही आपका गाना प्ले करेंगे। जी और सुनाना भी चाहते हैं किसी को?
1: जी मैम आपका भारती है ना, रेडियो परिवार सुनते हैं, सभी लोग का सुनाना चाहते
0: हैं। ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: थैंक यू मैम
0: जी। वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
8: हाँ भारती जी, मैं गोपाल बोल रहा हूँ बेंगलुरु से।
7: जी जी, कैसे हैं गोपाल जी?
8: बहुत अच्छे हैं, आपका प्रोग्राम सुनने के तो मन करता है हर दिन, इसलिए परमिश भी करती हूँ। उस दिन आपने मेरा गाना सुनाया, बहुत अच्छा लगा है।
7: अच्छा जी।
8: आज मेरा घर में मेरा भाई भी आया है सिलीगुड़ी से, वो भी गाना सुनेंगे आज
7: जी।
8: तो बोल तो आज मेरा तो रिक्वेस्ट है सागर मूवी का
7: जी,
8: किशोर कुमार की आवाज में सागर जैसी आंखों वाली एक गाना है ना
7: जी, क्या गा के बता सकते हैं?
8: हाँ, चेहरा है या चांद खिला है, वो भी गाते हैं ना, वो गाना किशोर कुमार की आवाज में। तो गान तो मैं डेडिकेट करती हूँ आपको और आपको परिवार, रिमझिम परिवार को, सबको लिसनर्स।
7: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
8: हाँ, कितने बजे आज सुनेंगे
7: ये गाना आपका? आज नहीं तो कल बजी जाएगा।
8: अच्छा, ठीक है। आप कैसे
7: हैं? ये मैं भी बढ़िया हूँ।
8: आज समी जी
7: सब कुछ बढ़िया है।
8: अच्छा,
7: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
8: हाँ, ठीक है।
7: सबके साथ 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: क्या कर रही बा?
1: जी बढ़िया बा, अपन बताए।
0: ठीक बा, हमके बा दवाई से चला था। ठीक बा,
1: छका हुई बा।
0: अरे ये सिर दर्द बुखार
1: सब मौसम की वजह से होता है।
0: कौन दिन पे से पासार में रोज की पर फिर संसी पर तो दवाई चलता है।
1: चली दवाई वही टाइम से खाता नहीं हूँ।
0: हाँ जी दवाई तो बता दिन सी तो गरम दस बजे संसी पर।
1: अच्छा हम ठीक
0: बानी।
1: हाँ नाश्ता हो रहा है और भाई ला
0: जी हमारे
1: चलिए बढ़िया भाई से रुआ कृष्णा बोलते हैं ना।
0: जी मैं कृष्णा बोलते हैं। अच्छा
1: जी
0: तो बंद हो रहा जल्दी।
1: कुछ प्रॉब्लम हो गई वही की वजह से बंद करे के पड़ जाओगे।
0: देखो नहीं चलो भाई गाना बजे बंद कर दो मोबाइल लेकर दुकान बंद हुआ रोज चालू कर ले रहे।
1: हाँ हाँ हमें चालू कर
0: रहे हैं। शायर भेज रहे हैं।
1: हाँ चलिए खाना बनाओ रही तो दूसरा दिन पढ़ल गई। अच्छा हाँ सुन जैसे की हम इन्हें रहें तो भाती जी बताओ तो रही की तरफ से तो आज की फरमाइश बता दी।
0: तो बारिश होता
1: बारिश तो होता
0: आपको अच्छी लग रहा बता दो।
1: हल्का हल्का होता
0: आज बजा दी बड़का बर्फ चाहे बम बर्फ सारा से मिले खाती
1: गाना तो विजुअल बताइए
0: बारिश मतलब
1: बिल्कुल। चलिए तो फिर प्ले करते हैं गाना। जी सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: मेरा पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करे 87-894-18-744।
9: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
10: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
9: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
12: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
14: जी मैडम,
13: नमस्कार।
14: जी मैडम, मैं आप
13: जी अब बता दीजिए कहाँ से बोल रहे हैं।
14: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू, मधुसूदनगढ़ जिला, गुना, मध्य प्रदेश से।
13: ओके जी, कैसे हैं आप?
14: बढ़िया है दीदी, आज तो हमारे यहाँ धूप खिल रही है, बरसात बंद हो चुकी है।
13: ये बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, आज तो बंद हुई।
14: जी
13: तो अभी क्या हो रहा था?
14: उसने दुकान पर बैठे हैं और रेडियो आज का सुन रहे हैं आपका रेडियो रिमझिम। और आज हमारी बेटी का जन्मदिन भी है, कनक साहू का।
13: जी तो उनको मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो।
14: मैडम धन्यवाद। और आज उनके लिए गाना डेडिकेट रहेगा मेरी तरफ से, का नाम है अनाड़ी और गाने के बोले छोटी सी प्यारी सी नन्नी सी आई कोई परी।
13: ओके जी, ये तो सॉन्ग बहुत ही प्यारा है
14: जी। और मैं हमारे बच्चों के नाम भी लेना चाहता हूँ।
13: जी बिल्कुल
14: जी, मिलन साहू, राशि साहू, रवि साहू, कनक साहू, पायल साहू, गौरव साहू और शुभम साहू की, शिवान साहू की, सभी बहन भाइयों के लिए ये गाना डेडिकेट रहेगा।
13: ओके जी,
14: तो कब पहले होगा ये?
13: शाम को।
14: जी मैडम धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
13: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार,
0: मैं ललन पासवान बोल रहा हूँ। अभी तो फिलहाल दिल्ली से बोल रहा हूँ मैडम।
1: कहाँ से?
0: दिल्ली से।
1: तो क्या हो रहा है?
0: काम हो रहा है मैडम।
1: क्या करते हैं? जी
0: पेपर का काम करता हूँ, पेपर का मशीन चलाता हूँ।
1: अच्छा जी, फिर आज की फरमाइश क्या है?
0: जंगल लव का गाना सुनूंगा। लैला ने कहा जो मजनू से, रंगा ने कहा जो हीर से, रवि मोदी से चढ़े से।
1: क्या आप गा के बता सकते हैं?
0: लैला ने कहा जो मजनू से, राजा ने कहा जो हीर से, दो ही मुझसे कह दे तू आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हेलो
1: जी, और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: मैडम, सबसे पहले तो आपको सुनना चाहता हूँ, जितने भी मेरे श्रोतागण है रेडियो और सभी भाइयों को सुनाना चाहता हूँ। मैं भी सुनना चाहता हूँ और मेरे दोस्त लोग सुनना चाहते हैं गाना।
1: अच्छा जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
3: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
9: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
10: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070-32042 पे।
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
13: The phone can be bajti hai to kehte hain hello.
12: Hello. Hello. Hello. Hello.
14: To dosto break ke baad आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो।
16: हेलो
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
16: नमस्कार मैम।
15: नमस्कार।
16: ऐसे मधुसरण से राजीव कुमार बोल रहे हैं, काम सुनना है।
15: जी जी, कैसे हैं आप?
16: ठीक हूँ, ठीक हूँ, अच्छा हूँ।
15: क्या हो रहा है?
16: कुछ भी नहीं हो रहा है।
15: अच्छा, नाश्ता वास्ता हो गया?
16: खाना हो गया।
15: चलिए बढ़िया, तो फिर आज की फरमाइश बता दीजिए।
16: फरमाइश है, मुझे पीने की शौक नहीं, पीता हूँ गम भुला।
15: डेडिकेट भी है
16: सुनने वाले सभी दोस्तों।
15: प्ले करते हैं गाना आपका, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी मेरा नाम जाकिर हुसैन।
1: कहाँ से?
0: बिहार गोपालगंज से मैम।
1: गोपालगंज में कहाँ?
0: यादवपुर।
1: अच्छा जी, तो कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ मैम, अपना बताइए।
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
0: मैं आपसे बात हुआ था ना बुध के दिन की। हाँ बुध के दिन जी मैम गाना सुनना चाहते हैं।
1: बता दीजिए।
0: जी मैम गाना सुनना चाहते हैं, मैं दुनिया तेरी छोड़ चला जरा सूरत दिखला जाना।
1: क्या गा के बता सकते हैं?
0: अरे मैम तो वही गाना सुना दीजिएगा, सूरज का भी दूर गगन से, चंदा का भी दूर किरण से, ये गाना सुना दीजिएगा कोई भी।
1: ओके
0: ठीक है
1: जी जी।
0: और नाम बताएंगे दोस्तों को?
1: जी बिल्कुल
0: जी, मेरा दोस्त का सूफी आलम है, मोहम्मद कुक है, यूसुफ है, मेराज आलम है, और मुकेश शर्मा, संजीत, और एक मेरा दोस्त जितले शर्मा, धर्मेंद्र, और इतने और आपको भी सारे परिवार को पूरा।
1: जी तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका?
0: हाँ जी मैम, इसको जरूर सुना दीजिएगा, जो गाना बताया वही गाना सुनाइएगा मैम। ठीक है
1: जी जी बिल्कुल।
0: ओके मैम
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमजेड पर।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
5: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में, कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता

0: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
1: मैं सुधीर बोल रहा हूँ, करीमगंज जिला देवघर झारखंड से मैम।
0: जी जी, क्या हाल चाल है सुधीर जी?
1: बिल्कुल ठीक हूँ मैम। आप भारती मैम बोल रहे हैं ना?
0: नहीं,
1: मनोरमा मैम बोल रही हैं।
0: जी जी
1: जी जी, बिल्कुल ठीक हूँ मैम।
0: तो क्या हो रहा था?
1: समय हो गया, आज बहुत मशक्कत करनी पड़ी, काफी मेहनत करनी पड़ी तब जाके कॉल लगी आज।
0: जी जी,
1: आज पुरानी फिल्म का गाना सुना दीजिए मैम। आने मिलो सजना फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में।
0: जी, और गाने के बोल?
1: गाने के बोल हैं तेरे कारण इस तरह के गीत बोल हैं मेरे साजन।
0: अच्छा,
1: उससे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ और जितने भी रेडियो के प्रतागन है सबको सुनाना चाहता हूँ।
0: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी मैम।
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 एफएम।
0: नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
0: कौन तो लगा रहा था नहीं, कौन से तो अभी लागल बरा। और सब सुना समाचार?
1: जी सब बढ़िया बा, अपन
0: बताए।
1: इसे कहाँ से बोला था? हुआ
0: पंजाब से।
1: कहाँ से?
0: पंजाब। प्यार से
1: पंजाब।
0: हाँ जी।
1: और नाम क्या बा?
0: परमात्मा कुमार।
1: परमात्मा
0: जी।
1: सर क्या हो रहा था?
0: हाँ जी।
1: क्या कर रहे थे अभी आप?
0: अभी तो काम कर रहे थे, लगाए थे शोर बनी हुई थी, अभी लगाने काम कर रही है।
1: कहा ना बहुत सारा कॉल आवत रहे तो एक वजह से।
0: जी जी जी जी बताओ तो।
1: चलिए अब लागल
0: बानू।
1: मौसम तो ठीक बा, सुहाना मौसम
0: चलेगा। इतना गर्मी पड़ता है, सूखी बात बहुत गर्मी बा। बारिश भी बारिश
1: अभी तो मैंने धूप निकल रहा थी ना।
0: गाना सुना दे।
1: बता दे।
0: अरे लग दे।
1: कौन सा
0: सुना है? कौन
1: नहीं बता सका
0: दोनों गाना के साथ लड़के।
1: अच्छा चलिए ठीक बा। हाँ, क्योंकि सुनवाई के भी चाहता नहीं।
0: गुलंजी संतोष बिजली और जितना रेडियो रेंज सुनने वाला के सबके।
1: ओके तो फिर प्ले करते हैं जरूर गाना।
0: आज की दो दिन के बाद गाना हमारा लगा था।
1: हाँ, आज
0: बाजी।
1: जी तो प्ले करता नहीं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना है तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8029494 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी के दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।
9: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे समय 9:23 हो रहे हमारी स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277165696। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करना है तो आप सभी तो जानते ही हैं कि पुराने गाने की फरमाइश करना है। यहाँ पे कुछ मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो अपना भी कार्यक्रम शुरू करें मैसेज टाइप करने का। और पहला मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है, मैसेज तो कई पहुंचे हुए लेकिन काफ़ी समय पहले पहुंचे हुए, तो उस मैसेज को हम शामिल नहीं करेंगे। 2-5 मिनट पहले मैसेज पहुंचे हुए मैसेज को शामिल करते हैं। और 5 मिनट पहले मैसेज सबसे पहला लिखा गया है कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, आज मेरी अफसाना सिस्टर का एनिवर्सरी है और वो आज तक ही हमारा साथ है, कल उसकी विदाई है, सो आज एक सॉन्ग सुना दीजिए। बाबा मैं तेरी मल्लिका फिर से दलहीज पर करा दे। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे और आप ही के फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे गाने के साथ। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि गुड इवनिंग सर, माय नेम इज़ अनीश यादव विलेज डुमरा यदुवंशी टोला से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, सिवान बिहार से और स्टूडेंट ऑफ खान ग्लोबल स्टडीज पटना, नीट की तैयारी करते हैं। तो चलिए आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए तो बने रहे हमारे साथ और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार, मुझे गाना सुनना है जिसका बोल है तेरे लिए सारी उम्र जागो, सुनाना है आपको और भारती जी को, रोशनी जी को, गुड़िया जी को, तो बिल्कुल सबको सुनाइए। और आपके गाने जब प्ले करेंगे तो उस वक्त सबको डेडिकेटेड नामे शामिल कर देंगे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, माँ मुझे माँ से मिला दे। सुरेश जी त्रिपुरवा से जुड़े हुए, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज सफरोज अली जी, हेलो सर, हम सफरोज अली आकेल टोला से गाना सुनना है, तो बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो भैया गुड इवनिंग, आप कैसे हैं और क्या हाल चाल है। सजदा अंसारी मेरी गज से तो बिल्कुल बढ़िया है और आप सभी के बीच उपस्थित है। मैसेज आते जा रहे हैं। राजू जी मधुसरिया से भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। कमलेश जी सभ्या फील्ड से जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और बन रहे हैं आप सब हमारे साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, गाने को प्ले करते हैं और पहले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं शबीना खातून की, और डेडिकेट करती हैं, लिखी हैं आपको और ऑल रेडियो दोस्तों को और मेरी ऑल सिस्टर को। तो चलिए सुनते हैं हम सभी आपके पसंद के गाने रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

रेडियो एमजीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे, और आप सभी से एक सुझाव साझा करेंगे कि आप जब भी कार्यक्रम में अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो आप एक ही मैसेज करें। यदि आप एक मैसेज करते हैं तो आपकी सीरियल बनी रहेगी और आपके गाने जल्द आप तक पहुँचाई जाएगी, आपको सुनाई जाएगी। आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने मैसेज करेंगे उतने आप देर आपकी गाने को प्ले करने में देरी होगी, क्योंकि जब हम गाने शामिल करते हैं सुनाते हैं तो सीरियल भाई कोशिश करते हैं कि सुनाए, और आप मैसेज करते हैं तो फिर आप पीछे चले जाते हैं। तो आप जब गाने सुनना चाहते हैं तो एक ही मैसेज करके स्थिर रहें, स्थिरता बनाए रखें, ताकि आपकी भी बारी आए और आपकी भी फरमाइश हम पूरी कर पाएं। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो जी नमस्ते, हमें गाना सुना दीजिए सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर। निशा शुक्लवा से, और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है, और कहते हैं कि हमारा मैसेज आपका मैसेज देखा हुआ देखे, लेकिन जब हम मैसेज शामिल कर रहे थे उस वक्त दिखाई नहीं दिया क्योंकि आप रिपीट कर दी थी, और हम मैसेज आपके देखते हुए भी हम शामिल नहीं कर पाए, आप फिर ऊपर चले गए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि नमस्ते सुनो भैया, क्या हाल है, हमें गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और इस मैसेज को किए हुए हैं, अपना नाम तो नहीं बताए हुए हैं, तो आप जब भी मैसेज करें तो अपना नाम जरूर बताएं हर रोज़। रंजीत कुशवाहा जी महुआ वैशाली से स्वागत है आपका। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है बुलेट चौधरी जी बढ़िया थाना क्षेत्र तीन फेड़िया से जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाना सुनना है तो सुनाएंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है सुनो भाई, मैं ब्रिज बिहारी पांडे राजेंद्र नगर गोपालगंज से, और मुझे एक गाना सुनना है। गाने का बोल है पीते पीते कभी कभी ये जाम बदल जाते हैं। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, थोड़ा सा सब्र करें, आपकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सुनो भैया, मैं शिव सागर दीवाना जम्मू एंड कश्मीर से, और मुझे एक गाना सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। जो भी मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए जितना समय हमें मिला है उतना में कोशिश रहेगा कि अधिक से अधिक आप सभी की फरमाइश पूरा करें। आगे बढ़ते हैं और अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं, और यहाँ पे देखा जाए अगली फरमाइश अनीस यादव जी की है, और गाने के फरमाइश किए हुए हैं काफ़ी प्यारा, अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी। सॉन्ग डेडिकेट मनीष यादव, सतीश यादव, नीतीश यादव, रौनक यादव, अंकिता यादव, अंजलि यादव, नंदनी यादव, मिष्टी यादव, मिल्की यादव एंड आपको थैंक यू। चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो एमजीएम 94 एफएम पर।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
5: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
7: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
7: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
7: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम पे। और आगे गाने की फरमाइश हमारे पास किए हुए हैं दिलीप जी, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश किया गया है तेरे लिए सारी उम्र जाग। सुनाना चाहते हैं, कई श्रोतागण के नाम दिए हुए हैं और काफ़ी लंबी चौड़ी नामों की लिस्ट है, तो एक ही बात है कि इनके नाम से मोहब्बत करने वाले, जानने पहचानने वाले सभी को इन्होंने डेडिकेट किए हुए हैं। तो समय को देखते हुए आपकी शॉर्टकट मैसेज को शामिल करते हैं और आपके गाने को हम प्ले करते हैं। दिलीप जी, आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ सारे दोस्तों के साथ रेडियो रिमझिम 94.4 एफएम पे।

रेडियो एमसीएम 94 एफएम पे आप सब बने हुए कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सोनू भाई नमस्कार, गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम 94 एफएम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सोनू बाबू, हम भी जुड़े हैं, चलिए आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज इनकी तरफ से ही लिखा गया है कि दिलीप जी का अच्छा सोच विचार अपने नैना के लिए, पर नैना का ये इनके प्रति ख्याल है, सोनू बाबू हम पर भी ध्यान दें। बिल्कुल कोशिश है और सब पर ध्यान दें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, मिथुन शर्मा बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं, गाना सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे सर प्रणाम, मेघनाथ माझी जी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ, लिखा गया है कि तनी हमरो गानवा बजा दी, बिल्कुल बजाए। और आगे बढ़ते हैं, अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश रेडियो रमशिम 94 एफएम पे। शफरो जल्ली आकिल टोला से भेजे हुए हैं और गाने का बोल देते हैं, कभी हंसना है कभी रोना है।

बिल्कुल काफी प्यारा शाम रेडियो एमसीएम 94 एफएम पे सुन रहे हैं हम सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि शोल्डर शोल्डर मिठी बातें बोलकर। निशा शुक्लवा से मैसेज की है, और चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपको पसंद के गाने हम सभी रेडियो एमसीएम 94 एफएम पे।

0: रेडियो एम जी 94 FM सुनने आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और इस गाने की फरमाइश करती की है निशा, और इनके तरफ से लाइन में लिखा गया है कि मैंने जान बचा कर रखी है अपने जान के लिए, इतना प्यार कैसे हो गया एक अनजान के लिए। जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, जो विष पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं, जो गुस्सा पीते हैं उन्हें पति देव कहते हैं। कमाल के लाइन है। चलिए, बिल्कुल सही सोचा है आपने, और आगे बढ़ेंगे, आगे छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद पुनः आप सभी के बीच उपस्थित होंगे, और फिर आप सभी के मैसेज को शामिल करेंगे और कार्यक्रम में आप सबके गाने को प्ले करेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें, और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है, और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
7: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
8: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
7: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
9: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
10: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
0: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 94.4 एफएम पे सो चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई श्रोतागण की फरमाइश हमारे पास पहुंची है और आगे बढ़ेंगे और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे ब्रिज बिहारी पांडे जी राजेंद्र नगर गोपालगंज से भेजे हुए हैं और गाने की फरमाइश किए हुए हैं, पीते पीते कभी कभी ये जाम बदल जाते हैं। लिखे हुए हैं कि ये गाने मैं अपने पूरे परिवार के साथ सुनना चाहता हूँ। तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे अभी। और यहाँ पे थोड़ा सा देख ले कि आगे कई श्रोतागण की मैसेज पहुंची है और लिखा गया कि सर मेरा गाना बजा दीजिए। बिल्कुल कोशिश है मेघनाथ माझी जी, आगे मैसेज पहुंचा। लिखा गया है कि पुराना सॉन्ग भी है तो कोशिश है सबकी फरमाइश हम पूरा कर पाए। पूरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि समय जो है हमारा निर्धारित है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू मेरा सॉन्ग सुनाने के लिए और चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रमझिम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि नहीं बजेगा क्या, बजेगा थोड़ा वक्त लगेगा। और मैसेज करती हैं साजिदा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि प्रणाम भाई कैसे हैं, ठीक हैं सभी दोस्त कैसे हैं, ठीक है। सविता चौहान मैसेज की हैं सुपर सॉन्ग, बिल्कुल सुपर सॉन्ग सुन रहे थे और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। बढ़ते हैं आगे और अगले गाने को प्ले करते हैं हम सभी। सुनते हैं ब्रिज बिहारी पांडे जी की फरमाइश रेडियो रमझिम 94.4 एफएम पे।

रेडियो एमजीएम 94 एफएम पे इस गाने को सुन रहे थे अभी हम सभी। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि यही तो सब कारण है कि सरकार ने पीने पर रोक लगा दी भाई। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया, बिल्कुल। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और अगली गाने की फरमाइश प्ले करते हैं। और यहाँ पे राजू जी गाने की फरमाइश किए हुए हैं और लिखे हुए हैं अभी के मैसेज में कि ए मैसेज चल जा चमकते चमकते और पढ़ने वाले को कहना नमस्ते नमस्ते, मेरा सॉन्ग नहीं बजेगा क्या। बिल्कुल, आपकी मैसेज हमारे पास काफ़ी पहले पहुंची है, हम एक एक करके फरमाइश पूरी कर रहे हैं, आपकी भी फरमाइश हम पूरी कर ही देते हैं। चलिए, इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सावन के महीना पवन करे शोर, और सुनाना चाहते हैं सभी को। तो चलिए हम सभी सुनते हैं आपके पसंद के गाने रेडियो रिमझिम 94 एफएम पे। राजू जी आप भी एंजॉय करें अपने गानों के साथ।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर,

रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और काफ़ी प्यारा शो। आगे कई मैसेज है हमारे पास और समय जो है समाप्ति का हो गया है, तो अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करेंगे। अंतिम गाने हम प्ले करते हैं और यहाँ पे मैसेज किए हुए हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के खरिया रक्सल ने पाल बटर से, और एक नारी दो रूप मूवी से गाने के फरमाइश किए हुए रफ़ी जी के आवाज़ में, और गाने का बोल देते हैं दिल का सुना सा तराना ढूंढूंगा, और डेडिकेट आपको शफाक हीना हजरा निशा खुशी गुड़िया ब्यूटी शाहजहाँ और शाबा शबीता सबीना रोशनी सलोनी गुप्ता आशा दिलीप भाई और जानने पहचानने वाले सभी को डेडिकेट करते हैं। तो चलिए आपकी फरमाइश प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं, और सभी श्रोताओं से निवेदन करते हैं कि जो भी श्रोतागण छोड़ जा रहे हैं नाराज नहीं होना है, समय जो है हमारा निर्धारित है, तो कल कोशिश करते हैं यदि आप सभी का मैसेज पहुंचता है तो आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर मैसेज करें, कल हम कोशिश करेंगे कि कल आपकी फरमाइश पूरी कर पाए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहे रेडियो 94.4 एफएम, जो मैसेज कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
4: All right.

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पर शिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388894470 या रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388894470 या 9198886973। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: All right.

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती अकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
7: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
8: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
7: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
8: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
7: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
8: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
7: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
9: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
3: ठक ठक
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। ऑलराइट।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
6: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
4: ओनली ऑन रेडियो रंजे 90.4 AMZ पर।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 620-3139564।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम, RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9939365923।
2: कब भौजी, आज सुबह से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमलश्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
6: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
9: ऑलराइट।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
4: All right.

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87-894-18744।
5: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
7: ठक ठक।
8: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
10: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
12: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
13: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
12: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
13: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने।

0: गोपालगंज प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
2: All right.

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166264498 पे।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
5: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
9: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
10: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
9: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
10: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
9: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
10: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
9: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750।
11: श्रोताओ, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।

0: worth 35,000 crore rupees in Gujarat. Prime Minister Modi to inaugurate and address the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai this evening. Bombay High Court refuses to quash summons issued to Congress MP Rahul Gandhi in 2019 defamation case over his remarks against Prime Minister Narendra Modi. IMD forecasts heavy rainfall over Bihar, eastern Uttar Pradesh, Odisha, West Bengal and northeastern parts of the country today. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। कहा, भारत उन्नत रेलगाड़ियों और मेट्रो कोच के निर्माण का वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार किया। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WFDC के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव का उल्लेख किया।
2: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्तधारा का आह्वान किया है। इस सप्तधारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2006 में की गई थी, लेकिन इस दिशा में आगे प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस पर तेजी से हुए काम ने देश के लॉजिस्टिक तंत्र को पूरी तरह बदल दिया है, जो तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है।
2: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
2: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव और न्यू JNPT से मालगाड़ी सेवाओं को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने टांडा रोड और वडोदरा के बीच नई यात्री रेल सेवा को भी झंडी दिखाई। ये सेवा अलीराजपुर के दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 रेल विस्तार परियोजनाओं और लगभग 1,780 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसका उद्देश्य गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। उन्होंने गुजरात सरकार की 2,600 करोड़ रुपए की विभिन्न नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नवसारी भी जाएंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के नए एआई सक्षम और अत्याधुनिक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
3: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण आज से मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। जीएफएफ वर्ष 2020 से ही नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है। जीएफएफ 2026 का विषय है प्रभाव डालने की क्षमता, एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय जुड़ी हुई वैश्विक प्रणालियां। जीएफएफ में इस वर्ष एजेंटिक एआई, प्रोग्रामेबल फाइनेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा आयोजित की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लेख को आज साझा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष और पोषण माह पर आधारित ये लेख आंगनवाड़ी व्यवस्था को जन आंदोलन बनाने के संदेश को दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आंगनवाड़ी समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर एआईआर न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की एकलपीठ ने श्री गांधी की याचिका को खारिज किया। याचिका में उन्होंने मैजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। यह मामला रफाल सौदे पर राहुल गांधी की वर्ष 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने के बाद यह याचिका दायर की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। संवाददाताओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।
5: सारी स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है और फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री भाटिया ने संगरूर जिले की घटना का जिक्र किया जिसमें एक निवासी ने राज्य के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने उसे कथित रूप से धमकाया और मंत्री से माफी मांगने को कहा था। इसके बाद उस निवासी ने आत्महत्या कर ली थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथाम विक्रम सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से त्वरित कार्रवाई और गहन जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।
6: श्री विक्रम सिंह जी मूल रूप से मणिपुर के निवासी है। वो अपनी गली में एकत्रित कुछ लड़कों के साथ उनकी कहासुनी हुई शोर शराबे के ऊपर। उसके बाद वो कहासुनी के बाद उन दोनों पक्षों में हाथापाई हुई जिसमें इनको कुछ चोटें आई। इनकी फैमिली द्वारा इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सुबह 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए अभी तक हमने इसमें टोटल 7 लोग अरेस्ट करे हैं और एक माइनर को अप्रिहेंड किया।
1: तमिलनाडु विधानसभा में वाणिज्य कर और पंजीकरण मंत्री डी लोकेश तमिल सेल्वन ने तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा अधिनियम में और संशोधन करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय अधिनियम के साथ एक रूपता बनाए रखने के लिए अधिनियम में संशोधन करना है। तमिलनाडु विधानसभा ने आज केंद्र सरकार से समुदायों और उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी के लिए जाति आधारित जनगणना को स्पष्ट रूप से शामिल करने का आग्रह किया। सदन में प्रस्ताव पर बोलते हुए सदस्यों ने सुझाव दिया कि जस्टिस पार्टी का जनगणना मॉडल एक व्यापक मॉडल है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है।
8: गंगा, गंडक, कोसी, सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, भोजपुर और पटना में विभिन्न स्थानों पर 12 से 25 सेंटीमीटर तक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि डाउनस्ट्रीम में मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न इलाकों में जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में 27 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की विकट स्थिति का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली और सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न सामुदायिक रसोई केंद्रों और राहत शिविरों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के काम और तेज करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 में भारत ने आज 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। पैरा महिला रिकर्व स्पर्धा में पूजा जत्यान और भावना चौधरी को चीन के हाथों 6-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 75,585 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
12: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
13: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
12: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
13: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
12: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
13: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
12: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
13: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
12: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
14: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
15: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
14: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
15: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
14: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
16: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
17: All right.

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
8: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
9: All right.

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन

0: बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
8: भरोसे वाले से लेंगे,
7: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
8: और कीमत भी।
7: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
9: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
10: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
11: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
12: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
11: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
3: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
11: कॉल करें 85070-32042 पे।
13: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: All right.

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87894 18744।
6: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
9: और

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी। सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: रोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
2: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: All right.

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और

0: 65 65 750
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
2: All right।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के

0: साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।
0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10 बजे से 2 बजे तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
5: All right.

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
8: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
9: ऑलराइट।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: प्रस्तुत बा निर्गुण रउआ सबके सेवा में छोट भाई के द्वारा, हम और बाबूजान भाई। देखी एके बाबूजान भाई सजौले वाले कितना बढ़िया, आ गलती के क्षमा करब। प्रस्तुत बा निर्गुण, सुनी संसार में का होता आ का करे के चाहिए। शेरबा।
7: डाली डाली बगिया में चा...

सजनी कहतड़ी साजन से आसो तू बलम जीना गवना करई हा आसो तू बलम जीना गवना करई हा होखे दसयान।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करें 87-894-18-744।
5: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
9: All right.

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपति।

0: मोर गोपालगंज S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
4: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
5: नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्ते मैम।
7: नमस्ते।
6: हेलो
7: जी
6: बोलिए।
7: नाम बता दीजिए अपना।
6: जी, मेरा नाम नंदिनी कुमारी है।
7: कहाँ से बोल रही है नंदिनी जी?
6: गोपालगंज।
7: गोपालगंज में कहाँ?
6: अजयपुर।
7: अच्छा जी, तो क्या कर रही थी अभी?
6: अभी तो हम बैठे हुए थे, अपना बताइए हम क्या कर रहे हैं? अभी तो रिकॉर्ड कर रही होंगी।
7: जी जी, लोग से बातें हो रही हैं।
6: तो ठीक है, आपकी क्या?
7: जी मैं बढ़िया।
6: मुझे गाना सुनना है।
7: बता दीजिए।
6: ये गाना नहीं है, ढाई अक्षर प्रेम का, दो लफ्जों में लिखी मैंने
7: अपनी प्रेम कहानी।
6: जी,
7: ये गाना किसी को डेडिकेट भी करना चाहती हूँ।
6: जी जी जी, मैं अपने हस्बैंड को और हमारी भतीजी लोग है।
7: नंदिनी जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
6: जी जी
7: जी, वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। नमस्ते जी। बढ़िया है, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: क्या हो रहा
1: है? फोन लगा रही थी।
0: अच्छा, नाम बता दीजिए अपना। कहाँ से?
1: गोपालगंज।
0: गोपालगंज में कहाँ?
1: मतलब मेरा घर जो है ना वो नवादा है।
0: तो क्या हो रहा था भाई?
1: हम दोनों यही की बैठे थे, बात कर रहे थे आपस में।
0: जी तो खाना वाना हो गया आपका?
1: खाना वाना खा ली।
0: तो फिर क्या है आज की फरमाइश आपकी?
1: फरमाइश है हमारी, बुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे।
0: और ये गाना
1: सुनना है?
0: ये गाना किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
1: आपको, भारती मंत्री तृप्ति लामेर का, और दोनों करेंगे और
0: ओके। तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: प्रसाद क्लिनिक,
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
6: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
8: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल ID radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
9: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: चलिए गाना सुन ले, नादी गाना।
11: जी हम गाना सुनवा, हम लोग नाम बता दिया अपन।
10: नाम बोला शंभु यादव, घर बिहार में, पश्चिम चंपारण कबा माने हिमाचल प्रदेश में सोलन में।
11: अच्छा,
10: पेंट के कार करी ने, ये मेरा काम जारी FM भी चलतिया।
11: तो कैसे सुने नी, मोबाइल ऐप से की रेडियो के माध्यम से?
10: मोबाइल ऐप से सुनी, मोबाइल में दिन भर गाना चलेगा, यही सुबह रेडियो रिमझिम सवेरे से शाम कर 9 बजे चालू करी ने, शाम के 5 बजे चलेगा।
11: अच्छा,
10: जब लोग डिप्टी रहे पब्लिक चलेगा गाना और प्रोग्राम चलेगा।
11: चले बढ़िया बाबा, इसे कितना दिन से सुना तनी हुआ?
10: तो 2-3 साल से रिमझिम चलाई ने।
11: अच्छा,
10: पहले भी लोग से बात भइल बा, बात को के बहुत खुशी बा मन में, ये अगर बात हो गई आए पहले ही फोन लगाने या ला गई ना। अभी तो कई दिन ट्राई करे नहीं, लगबे ना करे
11: ना। तो ये बतावल जाला कि रिकॉर्डिंग होला सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के, तबे कॉल करे ना और कॉल लाग सकता।
10: जी ठीक बात है, वो गाना बा जान फिल्म के गाना बा, छोटी सी उम्र में बड़ा दर्द दिया रे, जिसे का इलाज नहीं कोई, रब्बा मुझे हद कर दिया।
11: ठीक बा, और गाना क्योंकि सुनाए की बिचार था नहीं?
10: गाना सुनाऊंगा करना लो, बाल कन्हैया बड़े, अनिल यादव बड़े और जे भी श्रोतागण सुनता सुने
11: जी। तो फिर चलिए और गाना प्ले करता नहीं?
10: कब चली गाना?
11: शाम के 7-5 से 7 के बीच।
10: 5 से 7 के बीच में।
11: जी जी
10: ठीक।
11: जी तो प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
10: थैंक यू मैडम जी,
11: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग जिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्ते
0: कैसी हैं मैडम जी?
1: जी, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए, आप कैसी हैं?
0: मैं अच्छा।
1: क्या हो रहा है?
0: आपका इंतजार हो रहा है, फोन लगा रहा है आधी लगे।
1: अच्छा जी, चलिए, बहुत मुश्किल होता है कॉल करने में, है ना?
0: जी बहुत मुश्किल होता है, इतना दिन पर तक फोन लगाया।
1: अच्छा, वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप?
0: भोरे से मैं हूँ।
1: कहाँ से?
0: भोरे से मैं हूँ, भोरे।
1: अच्छा, और आपका नाम?
0: नेहा।
1: नेहा जी। अच्छा नेहा जी, तो खाना वाना
0: नहीं
1: पसंद है?
0: अच्छा पसंद है।
1: जी, बहुत
0: अच्छा,
1: काफी दिन बाद कॉल की है आप।
0: हाँ बहुत काफी दिन बाद फोन नहीं लगते, इसलिए पूछताछ हैं, पता नहीं लग रहा तो देखते हैं।
1: अच्छा, वो क्या है ना, लिखना सारा ज्यादा हो गया तो फिर कॉल लेने में
0: हाँ
1: दिक्कत हो रहा है।
0: जी,
1: तो फिर आज की फरमाइश क्या है? कौन
0: फरमाइश राज फिल्म का गाना,
1: सा?
0: कोई गाना
1: राज फिल्म का कोई भी गाना?
0: जी।
1: ओके, और ये सुनवाना भी चाहती है किसी को?
0: जी आप मनोरमा मैडम बोल रहे थे?
1: जी,
0: सोनिया मैडम का रिटायर हो गया क्या?
1: नहीं मुझे तो नहीं पता।
0: नहीं पता, नहीं मतलब प्रोग्राम नहीं आते हैं, इसलिए बोलते
1: जी,
0: आप लोग रहते हैं। ठीक है, कोई चलाए अच्छा है, हम लोग तो स्टाफ एक बराबर है,
1: जी
0: हम लोग के लिए एक बराबर है, कोई चलाए अच्छा है। जी
1: जी जी तो फिर नया जी प्ले करते हैं गाना आपका।
0: मैडम जी, आपको आज इतना रेडियो आप जो है 200 सुनते सबके साथ।
1: ओके जी, तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: जी मैडम जी, नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470-10-30-92 या 9765-65-750।
5: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो,
7: हाँ, अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 FM में।
7: और मैडम जी, क्या हाल है?
6: जी बढ़िया है, अपना बताइए।
7: मैं भी बढ़िया है, बहुत नाश्ता पानी हो गया।
6: और आपका?
7: हमारा भी हो गया, नाश्ता पानी करके बस काम पर बैठे हैं।
6: वैसे किस चीज का दुकान है?
7: सिलाई का है।
6: अच्छा जी, चलिए बढ़िया। वैसे का नाम नहीं बता?
7: रहमत अंसारी।
6: अच्छा,
7: जलालपुर के बगल में। और मैडम, उधर का मौसम कैसा है? अभी तो मैं कश्मीर में हूँ।
6: तो पास का मौसम यानी बिहार का मौसम मैं आपको बता दूं तो बहुत सुहाना बना हुआ है।
7: चलिए अभी तो मैं कश्मीर में हूँ।
6: तो कश्मीर में अभी वहाँ पे ठंड पड़ रही है?
7: मैडम ठंड अब धीरे धीरे शुरू हो गया है। ऐसे तो यहाँ पे मौसम ठंडा ही रहता है हमेशा, मगर
6: नवम्बर तक ज्यादा बढ़ जाता है।
7: हाँ नवम्बर तक तो सभी लोग अपने यहाँ के चले जाते हैं घर से, इसलिए की यहाँ का ठंडी अपने यहाँ के लोगों से बहुत कम बर्दाश्त होता है।
6: चलिए अभी उतना तो ठंडी नहीं पड़ रही होगी।
7: हाँ अभी ठंडी नहीं, फिर भी रात को तो एक कंबल ओढ़ के सोना ही पड़ता है।
6: अच्छा।
7: एक कंबल तो हमेशा ओढ़ के सोना पड़ता है। दिन में थोड़ा सा धूप होगा तो गर्मी महसूस होगा, वो भी तो सीना नहीं निकलता है बहुत कम, नहीं तो बाकी तो एक कंबल का तो ठंडा हमेशा रहता ही है।
6: जी जी।
7: हमको ये गाना सुनना था।
6: बता दीजिए।
7: ये खलनायक फिल्म का गाना है, पालकी में होके सवार शरीर है तो अपने साजन के द्वार शरीर है।
6: जी, और ये गाना सुनवाना भी चाहते हैं किसी को?
7: गाना सबसे पहले आपको और तमाम जितने रेडियो इंजिन सुनने वाले हमारे श्रोता है, जो इंजिन के पूरे सदस्य परिवार है, सबको सुनवाना चाहता हूँ।
6: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका। जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो इंजिन 90.4 FM।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी सर, मास्टर धनाव से।
1: जी जी, क्या हाल चाल है?
0: ठीक है, अपना सुनाइए मैडम।
1: जी मेरा भी बढ़िया है।
0: आप लोग ठीक से रह रहे हैं?
1: जी जी।
0: मौसम आपके तरफ कैसा रह रहा है?
1: मौसम तो ठीक है, सुहाना हुआ है।
0: सुहाना धूप तो इधर निकला हुआ है हम लोग की तरफ बहुत ज्यादा, रोहतास जिले में।
1: अच्छा, क्या करिए, कहीं धूप तो कहीं छा।
0: हाँ तो ये है प्रोग्राम, एयरबोस चलेगा? एयरबोस
1: देखिए क्या होता है, वो क्या ना कि मतलब ये भी तो 5 बजे जो शो चलता है उसको भी तो देखना पड़ता है।
0: वो भी तो 5 बजे रिकॉर्डिंग जो है सब फिर से करना पड़ता होगा ना, सेटिंग करना पड़ता होता होगा।
1: जी चलिए देखा जाएगा।
0: हाँ हाँ, अच्छा लगता है प्रोग्राम हम लोग का, ये ज्यादा करके फरमाइश हम लोग ज्यादा करके सुनते हैं। कल तो सुन रहे थे 7:45 बजे, कहना होगा व्हाट्सएप को जरिए चाहे फोन के जरिए।
1: जी चलिए, तो फिर आज की फरमाइश क्या है?
0: आज की फरमाइश सुरवीर मूवी का गाना सुनवा दीजिएगा।

0: और सुनने वाले हमारा बेटा है छोटा है जीशान, और सबसे पहले आप लोग और जितने रेडियो रेंजी में सभी लोग सुनेंगे।
1: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी मैडम
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: जी।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
8: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
7: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
7: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
12: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो,
14: नमस्कार
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
14: आपका भी स्वागत है मनोरमा जी, का हाल चाल है
13: जी? बढ़िया है, अपना बताइए।
14: हम भी बढ़िया है। और गोपालगंज का मौसम कैसा है, बारिश वारिश हो रहा है कि नहीं?
13: गोपालगंज का मौसम सुहाना बना हुआ है, बारिश तो नहीं हो रही है।
14: तो बारिश का है नहीं करवा रहे हैं आप लोग, बताइए।
13: हाँ, बारिश हो, कभी कभी हो रहा है हल्का हल्का, लेकिन आज तो नहीं हुआ।
14: आज नहीं हुआ?
13: नहीं।
14: बदरी छाया हुआ है या धूप निकला हुआ है?
13: नहीं, धूप निकला है। है? नहीं, बदरी छाया हुआ है, कभी कभी हल्का हल्का
14: बोरिंग है। आपको लगता है कि हमारा आपका पहली बार बात हुआ है सर?
13: जी वैसे आपका नाम
14: आवाज से पहचानी,
13: आप ही
14: बताइए। बाकी तो हम बता रहे,
13: दिलीप जी बोल रहे हैं
14: जी। परफेक्ट,
13: देखिए आवाज से पहचानी है ना।
14: वही तो बोला कि आवाज से गेस कीजिए, हो सकता है कि नाम आपको ख्याल आ जाए।
13: जी जी, आवाज से जाना पहचाना ही लग रहा था
14: जी। कल जो वो कॉन्टेस्ट जो खुला रही थी ना, तो उसमें जो क्या हुआ कि आपका आवाज ही क्लियर नहीं आ रहा।
13: अच्छा,
14: बिल्कुल आवाज क्लियर नहीं आ रहा। आपने सवाल पूछा था कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें जनसंख्या कम है?
13: कल का, कल तो मैं ये शो नहीं चलाई थी,
14: कॉन्टेस्ट वाला नहीं।
13: अच्छा जी, हाँ हाँ,
14: उसमें आप
13: जी जी।
14: उसके बाद जो भोजपुरिया एक्सप्रेस में दो तीन गाने चला के आप चली गई, उसके बाद आई ही नहीं आपने।
13: जी जी, कुछ प्रॉब्लम हो गया था उसकी वजह से नहीं चला।
14: इसलिए सोचा कि आप चलो, क्या कहा जाए, मान लीजिए कि दुविधा है, वो आते तो भारती जी तो प्रोग्राम चलती।
13: जी जी।
14: और आप इधर कॉन्टेस्ट वाला भी काम किए है, इधर थोड़ा आया, आपको हैरानी ज्यादा हो गया था। हम लोग जो है बहुत पुराना लिसनर है, कितने आर्जे लोग आए, कितने आर्जे गए, हम लोग जहाँ पे है वही पे स्थापित है, वही पे स्थापित है। लेकिन यही कहेंगे कि अभी मन लगा के काम कीजिए, अभी ऊंचे मकाम तक जरूर आप व्यतीत कीजिएगा। लेकिन आपका आवाज जो है ना रानी मुखर्जी से मैच करता है जी, इसीलिए आपका आवाज जो है ना सब कोई कहता है कि क्यों मनोरमा जी नहीं रिकॉर्डिंग कर रही है क्या? मनोरमा जी कहाँ है? उनसे बात करना था, इसलिए कि मैं सुनता हूँ ना। रानी मुखर्जी का आवाज की तरह आपकी आवाज है।
13: अच्छा जी,
14: तो कोई बात नहीं, और भी लाइन में लगे होंगे। तो आज का प्रोग्राम है जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, ये वाला सॉन्ग सुना दीजिएगा। सबसे पहले आपको और भारती जी हैं, समीना जी, वहीता जी, गुड़िया जी, निशा जी, मनीषा जी, संजू जी, सोनू भाई, गाटा भाई, सन्यासी भाई, संगीर अंसारी जी हैं, कमरान भाई हैं, अफसर भाई हैं, श्रुति जी हैं, उसके बाद जो सोनी शर्मा जी हैं, और जितने तमाम श्रोतागण जो रेडियो सुनेंगे रिंदी, उन सभी को एक गाना डेडिकेट है। मैं दिलीप राम दिल्ली से।
13: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंदी 90.4 FM।
14: नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।
13: नमस्कार।

0: और सब बताइए।
1: और सब बढ़िया। वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: गणेश कुमार पुष्कर नारायण से।
1: अच्छा, तो फिर आज की फरमाइश
0: पूरी संग बजा दीजिए। अंकुश राजा का आवाज में
1: कौन सा
0: अपना पसंद, जो भी अच्छा लगेगा तो बजा दीजिए।
1: मुझे अच्छा लगा, और आपको नहीं लगा तो
0: नहीं। तो अंकुश राजा बोल रहे थे, कोई भी बजा दीजिए अपना पसंद से।
1: ओके, और डेडिकेट भी है।
0: सबसे पहले आपको भारती दीदी को, सोनी दीदी को, दिव्या दीदी को, करिश्मा जी को, जितना सुन रहे सब लोग डेडिकेट करना चाहते।
1: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो टिमटिम 90.4 FM।
0: नमस्ते
1: नमस्ते।

0: मेरे दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: बाजार होलसेल मार्ट, यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: Now pick your phone up.
7: Hello.
6: Pick it up, pick it up.
7: Hello.
6: Now pick your phone up.
7: Hello.
8: Jab phone ghante bajte hai to kehte hai hello.
7: Hello. Hello. Hello. Hello.
9: To dosto break ke baad aap sabhi ka fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. Main aap sabhi ko bata dun, yadi aap sabhi is karyakram se judna chahte hain to pratyek sombar, budhvar aur shukrvar ko subah 11 baje se call karke apne gaane ki farmaish ko record kara sakte hain. Number hai 80029494 11। ji ha 80029494 11। to chaliye badhte hain aage aur lete hain agla call.
10: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: हाँ बोलिए जी,
11: कैसे हैं आप?
10: हम ठीक हैं जी।
11: नाम बता दीजिए अपना।
10: मेरा नाम मोहम्मद अबू अंसारी है।
11: और कहाँ से?
10: मैं झारखंड से, फिलहाल गुजरात में है जी। दो दिन से लगा रहे थे, मैं भी सोचा ट्राई करता हूँ, देखता हूँ आज लग गया एक ही बार में।
11: जी जी, तो क्या आप पहली बार कॉल किए हैं?
10: हाँ, एक बार और लगा रहे थे, स्विच ऑफ बता रहा था, लग ही नहीं रहा था।
11: अच्छा, चलिए कोई ना, अभी लग गया ना।
10: हाँ आज लग गया, एक बार उसमें भी लगाया, एक और चैनल है ना, इसमें पता नहीं गाना सुनाया कि नहीं, इसमें भी पता नहीं सुनाएगा कि नहीं।
11: काहे नहीं, जब आप रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो गाना तो जरूर बजेगा।
10: कब बजता पता भी नहीं चलता ना, उसका 2 घंटा इंतजार किया, आया ही नहीं मेरा नंबर।
11: तो जो अभी आप रिकॉर्ड करवा रहे हैं ना, ये शाम को बजेगा?
10: आज ही, आज थोड़ी बजेगा। हेलो
11: जी,
10: आज गाना थोड़ी बजेगा?
11: आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
10: नहीं, आज मेरा पहला रिकॉर्डिंग कर दीजिए ना, 1-2 नंबर में कम से कम सुनने को तो मिल जाए पहली बार।
11: जी जी, वैसे होता तो अब तक मैं बजा दी होती। और क्या ना, बहुत सारे कॉल्स आए हैं तो आगे पीछे हो जाता है, चूज करूंगी।
10: दिल वाले का सॉन्ग सुना दीजिएगा।
11: कौन सा? गाने के बोल।
10: कोई जीता था जिसके लिए,
11: क्या गा के बता सकते हैं?
10: तो गाना है ना, चर्च सॉन्ग, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था।
11: जी, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
10: हाँ, सुनवाना चाहते अपने दोस्त लोग को।
11: तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका?
10: हाँ प्ले कर दीजिएगा, मगर सुनवाइएगा कब, यही हमको।
11: आपका गाना शाम 5 से 7 के बीच बज जाएगा। आप अगर आज नहीं बजा तो कल फिर से की बज जाएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप ऐसे सुने, नहीं तो आज भी बज सकता है आपका कॉल।
10: तो ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो कितना बजे चालू होता है जिसे सुनने वाला?
11: ये होता है आपका 5 से 7 के बीच।
10: 5 बजे से 7 बजे तक चलेगा ना?
11: जी जी,
10: आज नहीं तो कल बज जाएगा।
11: जी जी
10: जी सर।
11: ओके, तो फिर प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में। जी नमस्ते, कैसे हैं आप?
0: छुट्टी में है, लगाते फोन लगाता
1: थक गई नहीं, बहुत ज्यादा कॉल आवत रहे तो दिक्कत होला तो नहीं
0: कॉल उठलो ना बोलिए।
1: ना ना ऐसा कोई बात नहीं थे, फोन तो हम ना उठ ले रहे अभी
0: उठा
1: अभी तो अभी कॉल ले कटल जैसे वैसे फोन आयला
0: ऐसे मैंने तीसरा या चौथा कॉल रहा के कट गई आवाज ना 10 सेकंड फरमाइशी बा अमित उपाध्याय के भी रही, जब घर के चक्कर में पेरा जला आदमी तब वेद शास्त्र भूला जला आदमी।
1: अच्छा गा के बता सकते
0: नहीं? नहीं ऐसे तो नया ही बा गाना, ऐसा ही बा जब घर के चक्कर में पेरा जला आदमी तब वेद शास्त्र भूला जला आदमी, ऐसा ही बा। ज्यादा प्रेशर ना दें, मिले तो बजा दें। ज्यादा प्रेशर ना रही,
1: ना ना हम कोशिश करें कि गाना राहुल टाइम से प्ले करें और के के सुनाए के भी चाहते नहीं।
0: कितना हमारे नाम से जाने वाला लोग सब सुन लो, इतना ना हो जाए, ठीक है इंतजार करें।
1: जी फिर प्ले कर दें राहुल गाना।
0: हाँ, कर दे।
1: जी सुनत रही सबके साथ, बिल्कुल सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: जब घर के चक्कर में, जब घर के

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
6: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
10: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
10: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
11: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4
13: FM में। कहाँ
12: से?
13: गोपाल में।
12: और आपका नाम?
13: सोमनाथ बेगम।
12: आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है।
13: जी, नेटवर्क का प्रॉब्लम है।
12: अच्छा, जी जी, सभी बढ़िया है, कैसी हैं?
13: मैं अच्छी हूँ, आपकी दुआ है। मैं आपसे बात करके बहुत खुश रहती हूँ।
12: जी
13: जी, जब बात करते हुए तो मेरा थोड़ा सा बहुत मुश्किल आ रहा था। चलो हम लोग, हमने दीदी में बात किया था, कितना अच्छा, कितना सही सलाह दोनों में बात हो, तो बहुत अच्छा। इधर भी नहीं आइएगा क्या? गोपालगंज में नहीं आइएगा?
12: जी जरूर आएंगे। गोपालगंज में कहाँ है?
13: जी बंजारी।
12: अच्छा जी, जरूर आएंगे। लो
13: मैंने सुनना है,
12: बता दीजिए।
13: गुना देखिए
12: और ये गाना डेडिकेट हुई है।
13: जी, हमारे घर में सब लोग सुनने वाले हैं।
12: अच्छा जी, वैसे क्या हो रहा था अभी?
13: से बात कर रहे हैं, गाना की सुनवाई कर रहे हैं।
12: आपके घर परिवार में सब कोई ठीक है?
13: हाँ, सब लोग दुआ है, सब लोग भी अच्छे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं।
12: अच्छा चलिए बढ़िया। तो फिर
13: कितने नंबर से लगाए लो
12: जी?
13: कितने नंबर से लगाए? बिना कितने नंबर से जाना फरमाइशी मेरा?
12: आप ये तो नहीं बता सकती क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आए हुए हैं।
13: कितने बजे सुना सकते जाना?
12: आज नहीं तो कल बढ़ ही जाएगा,
13: 5 से 7
12: तो क्या ना, बहुत सारे कॉल्स हो जाते तो आप सबका एक साथ तो नहीं बच सकता।
13: चलिए
12: आप ठीक है ना?
13: हाँ, ज्यादा दिन हो गया कॉल करने का, उस टाइम तो बंद था, कितना भी ट्राई किए।
12: बहुत काफी दिनों बाद कॉल की है आप।
13: हाँ जी
12: जी, तो आप शो में जुड़ते रहिएगा, बहुत अच्छा लगता है।
13: हाँ, हमको भी अच्छा लगता है बात करके।
12: जी ठीक है, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
13: जी मैम
12: जी, सुनते रहिए सबके साथ। बाय। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी नमस्कार, बहुत 90.4 FM में।
1: जी मैम, कैसे हैं?
0: जी बढ़िया है, अपना बताइए, आप कैसे हैं?
1: जी हम भी अच्छे हैं। भारती मैम?
0: नहीं
1: जी, आपका नाम क्या है?
0: जी मेरा नाम मनोरमा।
1: अच्छा, आपका आवाज कुछ अलग है, इसलिए मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं।
0: अच्छा जी, कोई बात।
1: जी हम पटवाजी बोल रहे हैं, गोपालगंज से।
0: जी
1: जी, हमको रेडियो इतना लगाव है।
0: अच्छा जी,
1: इसी लगाव को देखते हुए एक गाना सुनना है।
0: बता दीजिए।
1: जी गाना का नाम है जब हम तेरे आशिक बने।
0: कौन सा?
1: जब हम तेरे आशिक बने।
0: क्या आप दो लाइन गा के बता सकते हैं?
1: जी हम गाना तो गाते नहीं है, वैसे गाही तो बता रहे हैं।
0: दो लाइन ही गाना है आपको?
1: हमको मैम गाना गाने आता नहीं, लेकिन सुनते हैं बहुत ज्यादा।
0: अच्छा, फिर गाने के बाद?
1: जी मैम, कल भोजपुरी एक्सप्रेस पूरा चलाई नहीं।
0: जी जी, कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो नहीं चला पाया।
1: फर्स्ट वाला मेरा फरमाइश बच गया, लेकिन बाकी लोगों का नहीं बच पाया।
0: चलिए, आपका तो बचा कहीं ना हटे वहाँ।
1: आज तो चलेगा भाई का?
0: देखिए क्या होता है।
1: जी चलेगा, तो मेरा एक सप्ताह कम्प्लीट हो गया है, जो तो पहले बजाइएगा लो।
0: जरूर चलेगा।
1: बहुत फॉलो करते हैं।
0: अच्छा, अच्छी बात है। वैसे फरमाइश क्या बताए थे आप
1: आज की?
0: जी
1: आज का मेरा फरमाइश है जैसे हम तेरे आशिक बने।
0: डेडिकेट भी है?
1: डेडिकेट है आपको, सभी आरजे को, फातिमा को, सभी रेडियो दोस्त को। और मैं ये कब चलेगा?
0: ये शाम को चलेगा।
1: जी मैम, एक नंबर में है तो एक नंबर में बजेगा। एक नंबर में है तो एक नंबर में बजेगा।
0: जरूर बजेगा।
1: कोशिश कीजिएगा एक नंबर में जाने का, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब दो तीन मिनट पहले मैंने कैसे लगाया की एक नंबर में लग जाए। जी मैंने पसंद हुआ, इसलिए धन्यवाद आपको देते हैं।
0: तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: ओके मैम, बाय।
0: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
1: धन्यवाद।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम इकडेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
7: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
8: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
9: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
10: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
11: Now pick it up. Hello. Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
13: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
15: कैसे हैं आप?
14: जी मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए।
15: भारती मैम बोल रही है ना?
14: नहीं, मैं मनोरमा।
15: मनोरमा मैम बोल रही, पहली बार बात हो रही है आपसे मैम।
14: अच्छा जी,
15: बहुत खुशी हुई आपसे। मैं गया जी से बोल रही हूँ, शंकर प्रसाद गुप्ता जी।
14: जी कैसे हैं आप?
15: बिल्कुल बिल्कुल सही है मैम, आप कैसी हैं?
14: जी हम भी बढ़िया हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
15: गया जी से, जहाँ गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था।
14: जी।
15: स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए और इसी तरह से हम लोग को गाना एंजॉय करवाते रहिए।
14: जी जी, सब आप लोग के दुआ पे ऐसे हम लोग भी ठीक है लोग। पूरा कोशिश है कि आप लोग की फरमाइश टाइम टू टाइम हम लोग प्ले करते रहे लोग।
15: मैम हमारे आज बहू का जन्मदिन है।
14: अच्छा,
15: तो वो बहू हमारी मीरगंज की रहने वाली है
14: जी।
15: अभी तो बेंगलोर में है, बस उनके जन्मदिन पर एक अच्छा सॉन्ग सुना दीजिए मैम, हिंदी सॉन्ग।
14: जी बिल्कुल, तो मेरी तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो।
15: थैंक यू मैम
14: जी। तो जन्मदिन के अवसर पे आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
15: हम तो चाह रहे हैं कि हमारी बहू के लिए एक अच्छा हिंदी सॉन्ग सुनाए कि वो खुश रहे, हैप्पी रहे, हर समय एंजॉय करते रहे।
14: अच्छा तो बिल्कुल सुनाएंगे, तो क्या आप बता सकते हैं
15: क्या
14: कोई सॉन्ग?
15: बस आप अपनी तरफ से सुनाइए मैम, बर्थडे का जो नया सॉन्ग हो, अच्छा सॉन्ग हो, समझे मैम?
14: जी जी।
15: कब तक बज जाएगी मैम
14: ये? आपका शाम को बजेगा 5 से 7?
15: नहीं नहीं, आप तो बोलते हैं शाम को बज जाएगा, 5 दिन के बाद बजता है।
14: नहीं नहीं, इसमें 5 दिन के बाद नहीं बजता है।
15: हाँ मैम, अगला बार में हम फरमाइश किए थे तो मतलब मंडे का आया था, सीधे दम फ्राइडे का,
14: तो बीच में चीजें रिकॉर्ड की होंगी तो इसकी वजह से कॉल इधर उधर हो सकते हैं।
15: बस मनोरमा मैम जी, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आज मेरा सॉन्ग बजवा दीजिएगा, क्योंकि हमारी बहू का आज ही बर्थडे है।
14: जी जी, हम आज ही बजवाएंगे।
15: ठीक है, कितना बजे शाम में ना मैम?
14: 5 से 7 के बीच।
15: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम।
14: ओके
15: जी, मेरा गाना बजाने के लिए थैंक यू
14: जी। तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
15: थैंक यू।
14: रेडियो रिंजू 90.4 FM कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
15: थैंक यू मैम।
14: वेलकम।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: गाना सुनना है
0: जी? गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
1: ये कुशवाहा बोल रहे हैं
0: जी।
1: गाना सुनवा दिए आदमी खिलौना का।
0: गाने के बोल,
1: जब जो चाहे वही तो होना है आदमी खिलौना है।
0: ओके, वैसे अपना नाम नहीं बताया पर और बता दी।
1: नाम तो बताए हैं
0: तो ही से आवाज नहीं आ रही आपकी।
1: कुशवाहा बोल रहे हैं।
0: कहाँ से?
1: श्यामपुर से।
0: अच्छा जी,
1: पैडाला के पास है जी। मनोरमा मैम बोल रही है
0: जी। तो क्या जी, सब बढ़िया है? आप बताइए।
1: चलिए, आपसे बात होता है बहुत अच्छा लगता है
0: जी। मुझे भी आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगता है।
1: चलिए मैम, थैंक यू
0: जी। अब जो गाना बताया है वो किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
1: सभी रेडियो श्रोता सभी को सुनेंगे मैम।
0: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी मैम
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: थैंक यू मैम।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
8: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो।
10: हेलो मैम, नमस्ते।
9: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
10: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैं RMP से।
9: जी जी, क्या हाल चाल है सुनील जी?
10: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए मैम, तो अभी तो फोन लगे तो इंतजार खत्म हुआ मैम।
9: जी
10: जी जी जी।
9: तो नाश्ता हो गया आपका?
10: जी जी, चाय नाश्ता तो हो गया मैम, अभी तो खाने का तैयारी है मैम, तो हम सोचे चलो अभी फोन लगाते हैं, बातचीत करने के बाद फिर खाना खा लेंगे मैम। जी, तो आज एक फरमाइश है गाने के, बोला है सोमवार को हम मिले यही और सुनवाएंगे, कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते हैं, कभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
9: प्ले करते हैं गाना आपका, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैम,
0: नमस्कार।
1: मधुसरे से राजीव कुमार बोल रहे हैं, काम सुनना है।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ, अच्छा हूँ।
0: क्या हो रहा है?
1: कुछ भी नहीं हो रहा है।
0: अच्छा, नाश्ता वास्ता हो गया?
1: खाना हो गया।
0: चलिए बढ़िया, तो फिर आज की फरमाइश बता दीजिए।
1: फरमाइश है, मुझे पीने की शौक नहीं, पीता हूँ गम भुला।
0: डेडिकेट भी है
1: सुनने वाले
0: प्ले करते हैं गाना आपका, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: Now pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8029494 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: एपिसोड नंबर 49।

ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। एक बार सुंदर पर्वत नदी और वनों को देख नारद जी का भगवान के चरणों में असीम प्रेम जागृत हो गया। यहाँ तक कि दक्ष प्रजापति द्वारा नारद को दिए गए श्राप की गति भी रुक गई और नारद समाधि में लीन हो गए। नारद की समाधि से भयभीत होकर इंद्र ने कामदेव से प्रार्थना की कि वो किसी प्रकार नारद की समाधि को भंग करे। कामदेव ने नारद की समाधि को भंग करने के अनेक प्रयास किए पर असफल रहा। अंत में भयातुर कामदेव ने नारद के चरण पकड़कर उनकी स्तुति की। इस घटना के बाद नारद के मन में अभिमान जागृत हुआ कि उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है।

0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: प्रसाद क्लिनिक,
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले से लेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
9: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
5: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
10: एपिसोड नंबर 50, 50।

हाथ में अपनी वीणा लिए हरिगुण गाते हुए एक बार देवर्षि नारद नारायण के समक्ष क्षीर सागर जा पहुंचे। यद्यपि शिवजी ने नारद जी को कामदेव की करतूत पर अपनी विजय का हाल भगवान पर प्रकट न करने का परामर्श दिया था, फिर भी देवर्षि ने प्रभु से कामदेव का चरित्र कह सुनाया। प्रभु से ये बात छिपी न रही कि नारद जी को कामदेव पर विजय पा लेने का अभिमान हो गया है। भक्तों का कल्याण प्रभु का गुण है, अतः अभिमान के अंकुर को नारद जी के मन में से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने 400 कोस विस्तार वाले एक माया नगर की रचना की और उसे वैकुंठ से भी अधिक सुंदर बना दिया। इस माया नगरी के राजा शील निधि ने अपनी अति सुंदर कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा। इस अनिंद्य सुंदरी का वरण करने के लिए अगणित राजा वहां आ पहुंचे।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दें, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूं, देश का सिपाही हूं।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम इकडेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
9: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
10: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
9: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
10: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
7: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
10: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
7: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
10: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
7: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
11: 9.4 फ्रीक्वेंसी पर
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
11: ऑलराइट।

0: अपील की। दुबई में आयोजित वार्षिक निवेश सम्मेलन में उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने उद्योगपतियों को बिहार में निवेश का दिया न्योता। और पंजाब के लुधियाना में आयोजित 10वीं जूनियर राष्ट्रीय कुराश चैंपियनशिप में सीतामढ़ी के कल्याणी ने जीता स्वर्ण पदक। अब समाचार विस्तार से। पटना, भोजपुर, वैशाली, भागलपुर, कटिहार और खगड़िया समेत प्रदेश के 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इन जिलों के 82 प्रखंडों में 491 पंचायतों की लगभग 36 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 10 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। विभिन्न जिलों में 456 सामुदायिक रसोई घरों का संचालन किया जा रहा है, साथ ही 14 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1876 नाव का परिचालन हो रहा है। इस बीच उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंगा नदी के जलस्तर में पटना में कमी आई है, लेकिन भागलपुर में नदी का जलस्तर अभी भी स्थिर बना हुआ है। श्री चौधरी ने बताया कि भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा का जलस्तर 36.8 मीटर दर्ज किया गया, जो उच्चतम बाढ़ स्तर से 5 सेंटीमीटर ऊपर है। उन्होंने कहा कि जब तक गंगा का जलस्तर सामान्य नहीं होता है, तब तक बाढ़ से पूरी तरह राहत नहीं मिलेगी।
1: आज थोड़ी सी आफियत की स्थिति बनी है, जब गंगा का जलस्तर पिछले 24 घंटे से घट रहा है। हालांकि गंगा का जलस्तर पटना में घट रहा है, लेकिन भागलपुर और सुल्तानगंज में अभी स्टीडी यानी स्थिर ही है। जहां पे हम लोग को असली समस्या थी, वहां पर अभी पानी घटना नहीं शुरू हुआ है।
0: हमारे पटना संवाददाता ने बताया कि पुनपुन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए कई निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 2.95 मीटर ऊपर बह रही है और जल स्तर बढ़ रहा है। इससे पटना के निचले इलाकों में बाढ़ का दबाव बना हुआ है। पुनपुन बाजार और आसपास के कई निचले इलाकों में पानी पहुंचने की सूचना है। हमारे वैशाली संवाददाता ने बताया कि गंगा और गंडक के जलस्तर में कमी आने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं है।
2: वैशाली जिले के 6 प्रखंडों के 30 पंचायतों के 84 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं हाजीपुर और महनार के शहरी क्षेत्रों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। महनार के वार्ड संख्या 9, 18, 19, 20, 21 और 27 गंभीर रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं। अलीपुर, हट्टा और हसनपुर दक्षिणी पंचायत भी पूरी तरह बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए हाजीपुर से मनोज कुमार सिंह।
0: बक्सर जिले में गंगा नदी के जलस्तर में गिरावट आने से बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। रामरेखा घाट समेत शहर के अन्य प्रमुख घाटों पर जलस्तर में कमी आई है। भागलपुर जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: जिले के भवनाथपुर में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 80 पर बाढ़ का पानी आ जाने के बाद भागलपुर सुल्तानगंज के बीच आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने विकल्प के रूप में निर्माणाधीन 4 लेन के इस्तेमाल की सलाह दी है। इधर साहेबगंज, भागलपुर, जमालपुर रेल खंड पर गंगा नदी के पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि सुरक्षा के साथ इस रेल खंड पर अभी भी ट्रेनों का परिचालन जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार।
0: खगड़िया जिले से गुजरने वाली गंगा, गंडक, कोसी और बागमती नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। शिक्षा विभाग ने बाढ़ प्रभावित 59 विद्यालयों में पठन पाठन स्थगित कर दिया है। बेगूसराय जिले में बाढ़ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। बछवाड़ा प्रखंड के लोदियाही, शमसीपुर और विशनपुर पंचायत के नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के 4 अंचलों की 4,20,000 से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने लोगों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहीं जाने की अपील की है।
4: बाढ़ के पानी में बिल्कुल भी न जाएं। सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने के प्रशासन मुस्तैद है, इसीलिए सभी लोग से अपील है कि वो स्वयं भी सुरक्षित रहें और अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षित रखें।
0: मुंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से नए इलाके बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं।
5: गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने मुंगेर जिले के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। जिले के 6 अंचल सदर मुंगेर, जमालपुर, बरियारपुर, धरारा, खड़गपुर और असरगंज में बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपदा से जिले की लगभग 5 लाख की आबादी सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इधर भेलवा गंगा घाट के बाढ़ पीड़ितों ने आज राहत अभियान तेज करने की मांग को लेकर मुंगेर हेरुदीरा मुख मार्ग को करवल्ला के पास जाम कर प्रदर्शन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह।
0: सारण, समस्तीपुर, लखीसराय, पूर्णिया और अरवल जिले में भी बाढ़ की स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। बाढ़ के चलते पटना गया रेलखंड पर आज चौथे दिन भी ट्रेनों का परिचालन बाधित है। पुनपुन परसा बाजार के बीच पुल संख्या 21 के पास जल स्तर बढ़ने के कारण आज भी 10 मेमू ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया गया। वहीं 10 रेलगाड़ियों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जा रहा है। रेल प्रशासन के अनुसार जल स्तर सामान्य होने के बाद नियमित रेल सेवा बहाल की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने राज्य के सभी राजनीतिक दलों से फरक्का जल संधि को लेकर एकजुट होने की अपील की है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि फरक्का जल संधि में बिहार के हितों की उपेक्षा हुई है और इसके नवीनीकरण में राज्य के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
1: गंगा नदी को जल के मामले में सबसे धनवान बिहार बनाता है और इस संधि के कारण हम लोगों को ही, बिहार के लोगों को, बिहार की सरकार को ही गंगा जल के उपयोग से प्रतिबंधित हो जाना पड़ता है। इसलिए हम लोग की मांग है और हमें खुशी है बताते हुए कि केंद्र सरकार ने इस बार बिहार की मांग को बहुत ही गंभीरता से लिया है।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने निवेशकों से बिहार में निवेश करने और विकसित तथा समृद्ध राज्य की यात्रा में भागीदार बनने का आह्वान किया है। दुबई में वार्षिक निवेश सम्मेलन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने के लिए लोगों के बीच मजबूत संपर्क, तेजी से विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे और विशाल मानव संसाधन को बिहार की प्रमुख ताकत बताया।
1: इस कन्क्लेव की टैगलाइन वैश्विक समृद्धि को नया आकार देने और निवेश के नए रास्ते खोलने का मार्ग 13 करोड़ लोगों के दिलों से होकर गुजरता है और वो है बिहार राज्य। मैं आपको यहाँ यह बता रही हूँ कि बिहार अब एक नई कहानी लिख रहा है, विकास की कहानी, औद्योगिक क्रांति की कहानी। और मैं यहाँ सिर्फ आपसे बिहार में निवेश करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप लेखक बने और विकसित बिहार की नई कहानी लिखें।
0: उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह के नेतृत्व में राज्य का प्रतिनिधिमंडल 7 से 9 सितंबर तक आयोजित इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहा है। इस बीच सम्मेलन में आज बिहार और संयुक्त अरब अमीरात के बीच खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ। इसके तहत राज्य में एक फूड प्रोसेसिंग पार्क विकसित करने पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग शिविर में आम लोगों की शिकायतों की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने प्रखंड और जिला स्तर पर शिकायतों के निष्पादन से असंतुष्ट 137 आवेदकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को इसके तत्काल निपटारे के आदेश दिए। निगरानी जांच ब्यूरो ने आज प्रदेश के अलग अलग जिलों से राज्य सरकार के 3 अधिकारियों कर्मियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। निगरानी की टीम ने पटना के गांधी मैदान थाना में पदस्थापित ट्रैफिक दारोगा उपेंद्र साह को 10,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। वहीं जहानाबाद प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित कनीय अभियंता अमन कुमार को 20,000 रूपये जबकि शेखपुरा जिला परिवहन कार्यालय में पदस्थापित लिपिक कुणाल कुमार को 15,000 रूपये रिश्वत देते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने दरभंगा के बहादुरपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद कुमार विभूति के दरभंगा, पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई की गई है। एओयू के उपाधीक्षक मिथिलेश कुमार जायसवाल ने बताया कि सत्यापन के दौरान आनंद कुमार विभूति के पास उनकी ज्ञात आय से लगभग 122% अधिक संपत्ति अर्जित करने का साक्ष्य मिला है। सीबीआई की टीम ने बक्सर की डाक अधीक्षक कुमारी सरिता समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच एजेंसी ने डाक विभाग से जुड़े वित्तीय लेनदेन की शिकायत के मामले में कार्रवाई की है। हालांकि मामले में सीबीआई की ओर से अभी आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी गई है। पंजाब के लुधियाना में आयोजित 10वीं जूनियर राष्ट्रीय कुराश चैंपियनशिप में सीतामढ़ी की कल्याणी ने स्वर्ण पदक जीता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल्याणी को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में मॉनसून के कमजोर पड़ने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मुजफ्फरपुर के मुसहरी में सबसे अधिक 62.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान और गोपालगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: दिनांक 9 सितंबर को राज्य के दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की बहुत संभावना है, जबकि राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज एवं पश्चिम चंपारण जिलों के 1 या 2 स्थानों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: मधुबनी जिले के हरलाखी से एसएसबी की टीम ने नशीली दवाओं के साथ एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया है। अररिया व्यवहार न्यायालय से आज 12 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सुपौल के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 41 पदक जीते हैं। खगड़िया में आयोजित प्रतियोगिता में जिले के खिलाड़ियों ने 24 स्वर्ण, 12 रजत और 5 कांस्य पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गंगा के जलस्तर में मामूली गिरावट के बावजूद 14 जिलों की लगभग 36 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में। पटना गया रेलखंड पर चौथे दिन भी रेल परिचालन बाधित। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने सभी राजनीतिक दलों से फरक्का जल संधि के मुद्दे पर बिहार के हित में एकजुट होने की अपील की। दुबई में आयोजित वार्षिक निवेश सम्मेलन में उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने उद्योगपतियों को बिहार में निवेश का दिया न्योता। और पंजाब के लुधियाना में आयोजित 10वीं जूनियर राष्ट्रीय कुराश चैंपियनशिप में सीतामढ़ी की कल्याणी ने जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा, मिला ही नहीं
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
6: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
5: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
8: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना की ओर से रोजगार समाचार दिनांक 27 जून से 3 जुलाई 2026 के पत्र में प्रकाशित भर्ती विज्ञापन में कुछ संशोधन किया गया है। अब रिक्तियों की संख्या और पदनाम इस प्रकार हैं: फोरमैन मेटल रिक्तियां 42, फोरमैन इलेक्ट्रिकल रिक्तियां 26, फोरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स और गायरो रिक्तियां 10, फोरमैन वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स रिक्तियां 14, फोरमैन मैकेनिकल रिक्तियां 33, फोरमैन मैकेनिकल सिस्टम्स रिक्तियां 14, फोरमैन हीट इंजन रिक्तियां 20, फोरमैन मशीन रिक्तियां 6, फोरमैन शिप बिल्डिंग रिक्तियां 36, फोरमैन प्लानिंग प्रोडक्शन एंड कंट्रोल रिक्तियां 4 और फोरमैन सिविल वर्क्स रिक्तियां 4। इसके अतिरिक्त ट्रेड्समैन पुरुष पद के लिए 75 रिक्तियां उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 5 सितंबर से 11 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों अथवा किसी उच्च न्यायालय के पात्र अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पदनाम है सहायक रजिस्ट्रार कंप्यूटर। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रहेगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, इनमें से कोई एक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर्स डिग्री या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक डिग्री अथवा कंप्यूटर IT में BE या कंप्यूटर साइंस में BTech या समकक्ष योग्यता। सहायक रजिस्ट्रार कंप्यूटर पद के लिए अन्य जानकारी, नियम, शर्तें, शैक्षणिक योग्यता आदि जानने के लिए देखिए वेबसाइट www.sci.gov.in। Thank you. रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन। इंजीनियर E1 कुल रिक्तियां 12, सहायक प्रबंधक E2 कुल रिक्तियां 4, उपप्रबंधक E3 कुल रिक्तियां 2, इंजीनियर E1 कुल रिक्तियां 3, अधिकारी E1 कुल रिक्तियां 1 और सहायक प्रबंधक E2 एक रिक्ति। इसके अतिरिक्त अधिकारी E1 की भी एक रिक्ति उपलब्ध है तथा अधिकारी साचिविक एडिशनल CMO CMO E5 पदों के लिए भी एक एक रिक्तियां उपलब्ध हैं। लेखा अधिकारी E1 के लिए 3 रिक्तियां, सहायक प्रबंधक E2 के लिए 2 रिक्तियां, मुख्य प्रबंधक E6 के लिए 1 रिक्ति और इंजीनियर E1 ग्रेड के लिए 1 रिक्ति उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.rfcl.co.in। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। कारपेंटर 2 रिक्तियां, इलेक्ट्रीशियन 3, फिटर 1, वेल्डर 1, पेंटर, मशीनिस्ट और टर्नर एक एक रिक्तियां। योग्यता, सामान्य विवरण और चयन हेतु साक्षात्कार से संबंधित विवरण के लिए देखिए टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की वेबसाइट www.tifr.res.in/positions। भंडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण सलाहकार बैंकिंग के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। देखिए वेबसाइट www.wdra.gov.in। कोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अधीन अनुसूची ए महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसका कॉरपोरेट मुख्यालय कोलकाता में है। कोल इंडिया लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है। प्रबंधन प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए आवेदन। प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए शैक्षणिक योग्यता, नियम, शर्तें, आरक्षण और वेतनमान आदि की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.coalindia.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
9: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
10: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
9: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने की भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया है। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कल मूसलाधार बारिश की आशंका। और अहमदाबाद में विश्व पहला तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है, इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
2: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए, जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा UPI। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो UPI के बिना अधूरी ही होगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
2: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
2: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है।
2: साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।
5: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है। 273 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहां की सरकार, वहां के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
6: ध्यान दें, आप आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। एक रिपोर्ट।
7: आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म चुना गया है। वहीं रामनामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए मलयालम अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के लिए सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नॉन फीचर फिल्म वर्ग में पहली बार किसी संथाली फिल्म को सम्मानित किया जाएगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री

0: न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति और अवकाश के दौरान जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि 4 सितंबर तक देश में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 1,086 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। धान की खेती 421 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और दालों की बुआई 117 लाख हेक्टेयर में हुई है। श्री अन्न और दरदरे अनाज की खेती 181 लाख हेक्टेयर से और तिलहन की खेती 191 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया है। अमेरिका ने बताया कि इस पहल में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान तथा कुछ और देश भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 के दशक में 5G नेटवर्क की जगह 6G तकनीक आने से कई वर्ष पहले ही विभिन्न देशों की 6G रणनीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
2: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो कमला राय।

0: कॉलेज रोड गोपालगंज,
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ।
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9056 59536 या 9056 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।
7: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
8: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
7: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
8: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
7: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
8: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
7: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
9: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
10: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। स्मैक और सुलेशन के साथ दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर डिस्ट्रिक्ट जज ने की जनता से अपील। पंखे से लटका मिला एक महिला का शव और लगभग 5000 लीटर शराब को किया गया नष्ट। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी के निर्देश पर उप विकास आयुक्त ने केंद्रों में उपस्थिति पंजी और वास्तविक रूप से उपस्थित बच्चों की संख्या का मिलान किया। उपस्थिति पंजी में दर्ज बच्चों की संख्या की तुलना में केंद्र पर भौतिक रूप से बच्चों की उपस्थिति कम पाई गई। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि अभिलेखों में दर्ज उपस्थिति एवं केंद्र पर वास्तविक उपस्थिति में किसी भी प्रकार का अंतर स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति होने पर जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार के निर्देशानुसार विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों की गुणवत्ता में सुधार, विद्यार्थियों को आधुनिक और तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषण एवं प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा नियमित रूप से विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में उप विकास आयुक्त गौरव कुमार ने आज सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेमरा थामे तथा आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 2 सेमरा पंचायत थामे का औचक निरीक्षण किया। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मेनू के अनुसार उपलब्ध कराई जाने वाली भोज्य सामग्रियों की भी जांच की गई। जांच में मसाला सामग्री में गड़बड़ी पाए जाने पर वरीय पदाधिकारी को प्रतिवेदित करने को कहा गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले पोषण आहार की गुणवत्ता मात्रा एवं निर्धारित मेनू का 100% अनुपालन सुनिश्चित करें। बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। माधोपुर थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान माधोपुर बाजार स्थित अंकित जनरल स्टोर में कथित रूप से स्मैक और गांजा जैसे मादक पदार्थों का अवैध क्रय विक्रय करते हुए पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पुलिस बल के साथ वहां छापेमारी की गई, जिसे देखकर दुकान में मौजूद व्यक्तियों द्वारा भागने का प्रयास किया गया, पर पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर आरोपियों ने अपना नाम अभिषेक कुमार और अंकित कुमार बताया। ये दोनों माधोपुर के ही धुरेंद्र प्रसाद के पुत्र हैं। तलाशी के दौरान इनके दुकान के पीछे एक माचिस के डिब्बे से मटमैले रंग के कागज में लिपटी 11 छोटी छोटी पुड़िया स्मैक बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक तराजू से वजन करने पर 4.67 ग्राम स्मैक जैसा मादक पदार्थ पाया गया। दुकान की तलाशी में दुकान के अंदर से कैप्शन कोको रैपर 2048 पीस और मैजिक फिक्स सुलेशन 700 पीस भी बरामद हुए। बरामद सामग्रियों को विधिवत जब्त करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर इन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि रूबेश कुमार उर्फ झुनझुन सिंह पिता बागेश्वर सिंह साकिन कपारीपुर थाना नबीगंज जिला सिवान फोन के माध्यम से सामान मंगवाता है तथा उक्त सामान उपलब्ध कराता है, जिसे दोनों भाई दुकान में बेचते हैं। अब इस पूरे नेटवर्क को भी खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी जोर शोर से चल रही है। अधिक से अधिक वादों को सुलझाने के लिए जिला जज के नेतृत्व में तमाम न्यायिक पदाधिकारी गण और संबंधित कर्मचारी गण इसमें काम कर रहे हैं। साथ ही जनता से भी अपील की जा रही है कि आप लोग अपने अधिक से अधिक वादों का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करवाएं। इसको लेकर आज जिला जज से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
2: 12 सितंबर को इस वर्ष की तीसरी लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है गोपालगंज के कैंपस में। इस लोक अदालत में हम लोगों ने कुल 28 पीठों के गठन का प्रस्ताव रखा है। जनता की वादकारियों की सुविधा को देखते हुए न्यायालय के जो मामले हैं उन पीठों का गठन उसी संबंधित न्यायालय के ही कोर्ट में किया जाएगा तथा अन्य जो मामले हैं उनके लिए जो पीठ बनाई जाएगी वो हमारे पार्किंग एरिया में बनाई जाएगी तथा हमारे दूसरे कैंपस के बरामदे में बनाया जाएगा तथा उनका साइनेज भी लगाया जाएगा। जगह जगह आपको बैनर और पंपलेट लगे मिलेंगे जिससे जनता को सुविधा हो सके कि कौन सी पीठ कहां पर लगी हुई है। इसके अलावा हमारे दो हेल्प डेस्क यानी सहायता केंद्र भी मुख्य द्वार पर जहां से वादकारी प्रवेश करते हैं वहां पर बने होंगे, जिससे उनको जो लोग ना समझ पाए ना पढ़ पाए कि हम कहां पर जाएं वो उनसे सहायता ले सकते हैं कि उनको किस पीठ में जाना है और अपना मामला कैसे सुलझाना है।
11: कितने पीठों का गठन किया गया है?
2: इसमें कुल मिला के 28 पीठों के गठन का प्रस्ताव है। अभी फाइनल हो सकता है लोक अदालत के दिन तक एक कोई संख्या घट या बढ़ सकती है आवश्यकता अनुसार।
11: किस तरह की वादों की सुनवाई की जाएगी?
2: देखिए, इन लोक अदालत में जो न्यायालय में शमनीय वाद है, जो कंपाउंडेबल केसेस जिनको हम कहते हैं, जिन मामले में सुलह समझौते के आधार पे मामले का निस्तारण किया जा सकता है, उन सभी वादों का निस्तारण किया जाएगा जो न्यायालय में चल रहे हैं। इसके अलावा इसमें बैंक से बिजली से संबंधित बाट माप के चालान हो गए, वाहन के चालान हो गए, फैमिली कोर्ट के मामले हो गए, महिला हेल्पलाइन में जो शिकायतें आती हैं उनके मामले हो गए, ग्राम कचहरी में जो मामले होते हैं उनके मामले हैं, टेलीफोन बिल से संबंधित है, इन सभी मामलों का निस्तारण भी किया जाएगा।
11: आमजन से क्या अपील करेंगे?
2: मैं आपके माध्यम से आमजनों से ये कहना चाहूंगी कि हमने जो हमारे ये बैंकिंग या जो कोर्ट केसेस से हट के जो मामले हैं उनमें हमने टोटल 20,000 नोटिस निर्गत करवाई है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। और जिसमें हमने ये टारगेट रखा है कि हम 1500 केसेस तो कम से कम सॉल्व करेंगे, उनका समाधान निकालेंगे। और कोर्ट केसेस के मामले में हमने 4200 नोटिस निर्गत किया है और हमारा ये टारगेट है कि कम से कम हम 1000 मामलों को सुलझा करके समाप्त कर सके। तो इसलिए मैं आमजन से ये कहना चाहूंगी कि हमने आपके लिए प्रयास किया है, आपके खुशहाल समाधान के लिए प्रयास किया है, और लेकिन ये प्रयास सफल तभी होगा जब वो खुद अपना प्रयास करेंगे और लोक अदालत तक आएंगे, अपनी बात को रखेंगे और मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे।
12: गोपालगंज शहर के अधिवक्ता नगर वार्ड नंबर 14 में एक महिला का शव उसके कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा मृतिका के शव को कब्जे में लिया। मृत महिला की पहचान चांदनी कुमारी के रूप में हुई है, जो उदय सिंह की पत्नी बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, मामले की जाँच कर रही है। FSL की टीम भी घटना स्थल पर पहुंचकर आवश्यक अनुसंधान करने के बाद साक्ष्य एकत्रित की है। यह हत्या है या आत्महत्या, इन दोनों ही बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल इस घटना को लेकर पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। घटना के बाद से मृत महिला के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने अलग अलग कुल 51 मामलों में पकड़े गए लगभग 5000 लीटर से अधिक शराब को आज बलथरी चेक पोस्ट पर नष्ट किया। बताया जा रहा है कि देशी और विदेशी शराब के इस बड़ी कंसाइनमेंट को JCB से कुचलकर जमीन में दफन किया गया। इस दौरान मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी भी तैनात रहे। न्यायालय के निर्देश पर इन सभी शराब की बोतलों को कुचलकर दफन कर दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने संकुल समन्वयकों की कार्यशाला का आयोजन करवाया। शैक्षणिक गुणवत्ता पर DO सख्त हैं। सभी संकुल समन्वयकों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। DO अमरेंद्र कुमार पांडे ने विद्यालयों का नियमित अनुश्रवण करने और शिक्षकों को शैक्षणिक सहयोग देने का निर्देश दिया है। बच्चों के सीखने के स्तर में भी सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया गया। बिहार सरकार के निर्देश पर जिलाधिकारी समीर सौरभ द्वारा प्रखंड और अंचल कार्यालयों में नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में सिधवलिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय का भी औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान कार्यालय कार्यों, विभिन्न पंजीयों और अभिलेखों की जांच करते हुए योजनाओं तथा लंबित मामलों की जिलाधिकारी ने समीक्षा की। अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज परिमार्जन एवं अन्य भूमि संबंधित मामलों की जानकारी लेते हुए लंबित मामलों का नियमानुसार शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अमीन और राजस्व कर्मचारियों को आम जन के कार्यों का निष्पक्ष एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। RTPS के माध्यम से भी प्राप्त आवेदनों की जांच कर नियमानुसार ससमय सेवाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वाधान में शहर के SS बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोपालगंज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता हैदर अली ने कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं को नालसा जागृति स्कीम 2025 के अंतर्गत न्याय साक्षरता जनजीवन और जगत के लिए के तहत मौलिक अधिकार, महिला सुरक्षा, बच्चों के अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम सहित तमाम बिंदुओं पर उपस्थित लोगों को जानकारी दी। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय में लोगों की समस्याओं को सुनते हुए निष्पादित करने के लिए आवश्यक निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिए। इसके बाद पुलिस लाइन में पहुंचे और वहां लाइन डे पर पुलिस वालों की समस्याओं को भी उन्होंने सुना और उसके समाधान के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। माझा थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी अमित शर्मा, पिता अशोक शर्मा, साकिन करनपुरा, थाना माझागढ़ का निवासी है। पूछताछ के बाद इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
10: जिलाधिकारी ने स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। स्मैक और सुलेशन के साथ दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर डिस्ट्रिक्ट जज ने की जनता से अपील। पंखे से लटका मिला एक महिला का शव और लगभग 5000 लीटर शराब को किया गया नष्ट।
12: इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
14: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
15: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
16: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
17: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
16: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
17: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
16: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
17: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
16: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
17: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
18: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
19: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
13: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
20: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
18: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
21: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
22: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48-652 पे।
23: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
16: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
23: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
24: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे समय 9:24 हो रहे हमारे स्टूडियो गिरी में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करें आप तो पुराने गाने की फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। और एक ही मैसेज करें यदि आप गाने सुनना चाहते हैं तो। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचा हुआ है तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे मेरे पास पहला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि

लिखा गया है कि हेलो हाय भैया, गुड इवनिंग, आप कैसे हैं? और मुझे सॉन्ग सुनना है, और सॉन्ग का बोल है चुपके से कोई आएगा। डेडिकेट माई हॉबी को और सभी लिसनर्स को और थोड़ा बहुत आपको भी। और इस मैसेज को करती हैं सजदा अंसारी मेरे घर से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है, और आफी के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि हाय सर, समीर आलम जंगलिया से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, और इस मैसेज को करते हैं गुलाम हुसैन इंदरवा से, और कहते हैं कि मुझे गाना सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में गुलाम हुसैन। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो नमस्ते सोनू सर, मैं शिल्पी बरौली से और गाना सुनना है। तो बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सोनू भैया नमस्ते, MD 97 दरभंगा भाजीतपुर से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है 97 जी, क्या हाल चाल है? आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, क्या हाल है भैया जी, मुझे सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल बढ़िया है, और अपना बताएं, और अभी आपकी दुआएं देना समाप्त नहीं हुई, तो आपकी भी फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है दीपक एंड जेलर जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि कैसे हैं सर, हमको तुमसे प्यार है, डेडिकेट सबको। तो बिल्कुल मैं तो बढ़िया हूँ, और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को करती हैं अमो मौजम से श्रेया, गाने के फरमाइश पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है बुलेट चौधरी जी का, बढ़रिया थाना क्षेत्र तीनफड़िया से गाना सुनना चाहते हैं। तो बिल्कुल सुनाएंगे। और आगे मैसेज पहुँचा, सोनू भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को पहुँचाने वाले रोहित जी देहरा धुन से, और रोहित जी देहरा धुन से हैं, और गाने की भी फरमाइश किए हुए हैं, तो बिल्कुल पूरा करेंगे। आगे मैसेज कई आ रहे हैं, तो मैसेज को रोकते हैं क्योंकि गाने भी हम सबको सुनना है। तो मैसेज शामिल करते करते ऐसा ना हो कि दो गाने की समय इसी में बीत जाए। तो गाने को प्ले करते हैं, और गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज़ करते हैं। पहले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं सजदा अंसारी की, और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

रेडियो एम सी एम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। काफ़ी प्यारे गाने सुन रहे थे हम सभी और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हैं। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि भैया बहुत बहुत शुक्रिया सॉन्ग प्ले करने के लिए, सजदा अंसारी मीरगंज से। बिल्कुल आपको भी धन्यवाद है, काफ़ी प्यारे गाने की फरमाइश थी आपके द्वारा। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सर, मैं सन्नी पटेल गल्लिया से, क्या हाल है सर? बिल्कुल बढ़िया, और आपकी फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज, हाय नमस्ते, आई एम बीटू शर्मा फ्रॉम पिपराही से जुड़े हुए, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। बीटू जी, गाने की फरमाइश है तो आपकी फरमाइश पूरी करने की प्रयास है। आगे मैसेज लिखा गया है कि हाय आई एम रोस्तम अंसारी फ्रॉम न्यू दिल्ली से, और कहते हैं कि मुझे गाना सुनना है छेड़े मिलन के गीत तेरे मितवा। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो, हाय सुनो भैया जी, हम कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से, सभी लिसनर और सभी आरजे को गुड इवनिंग बोलिएगा। हम भी लखनऊ उत्तर प्रदेश से गाना सुनना चाहते हैं खेसारी लाल यादव के आवाज में, पीके करेला डरामा। तो आप साधारणतः हिंदी गाने का फरमाइश करें, और भोजपुरी सुनना चाहते हैं तो ऐसे गाने का फरमाइश करें जो हम आपको सुना सके। और इस गाने को तो हम काफ़ी पहले सुनाए हुए हैं, लेकिन इस पे थोड़ा पाबंदी लग गई है। आप इस गाने को छोड़कर कोई दूसरा फिल्मी गाने सुनाए, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि नमस्ते भाई, कैसे हैं? ठीक हैं। सभी दोस्त कैसे हैं? ठीक हैं। सुपर गाना चल रही है भाई। सविता चौहान भोज चपरा से मैसेज करती है, बिल्कुल काफ़ी प्यारे गाने की फरमाइश सजदा की तरफ से पहुँची थी। आगे मैसेज कई पहुँचे हुए तो मैसेज को रोकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। रेडियो रमझिम 94.4 एफएम पे एमडी नौसाद जी की और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है, नीली नीली चूड़ियाँ।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
9: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
10: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
11: अरे बिना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
10: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
11: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे शो चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई हमारे श्रोतागण मैसेज कर रहे हैं और आगे गाने की फरमाइश के साथ भी मैसेज किए हुए हैं, तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आगे गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे शमीर आलम की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है। बोल दिया गया है जाने दिल में कब से है तू, और डेडिकेट करते हैं कमरान भाई, गुलाम हुसैन, अहमद अली, साहिल भाई, दिलीप जी, सूफिया वशीम, शगुफा करीम, रुबीना नाच, सफाक, साजा, हिना हजरा, गुड़िया, सबीता, ब्यूटी, सबनम, जरीन, सबनम, सिद्दीकी, नीतू, रोशनी, शबीना, शब्बा, आशा, निशा, तब्बू और सजदा संतरा को। तो चलिए, और कहते हैं कि आपको भी तो हम भी सुनेंगे, आपके गाने हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज कुछ पहुँचा हुआ है, देख लिया जाए। लिखा गया है कि बहुत बहुत शुक्रिया सनु भैया मेरा गाना सुनाने के लिए, एमडी 97 दरभंगा भजीतपुर से आपको भी धन्यवाद है रेडियो रेमझिम सुनने के लिए। आगे मैसेज में अजय कुमार मिश्रा ग्राम गणेश स्थान माझा से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो हाय सर, मेरे तरफ से प्यारे प्यारे लिसनर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा, और मैं भी आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ, निशा भारती, विलेज उजवलिया, उचका गांव प्रखंड से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि नमस्ते सर, मैं अर्चना चौहान गोपालगंज से, और बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने के फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे बढ़ते हैं, अब गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी समीर आलम जी की फरमाइश रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे।

94 FM सुन रहे हैं आप सब और सोचल SMS फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई हमारे श्रोतागढ़ की फरमाइश पहुँची है और एक हमारे श्रोतागढ़ हैं गणेश स्थान माझा से अजय मिश्रा जी मैसेज किए जा रहे हैं। तो आप अपने आप को स्थिर रखे, आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा ही मैसेज कर देंगे तो हम आपकी फरमाइश जल्दी बजा देंगे, ऐसा नहीं। आप थोड़ा सा सब्र करें, आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। अगर आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि प्लीज़ सर प्ले कर दीजिए। मैं सन्नी पटेल, तो बिल्कुल आपकी मैसेज हमारे पास पहुंची है। आप स्थिर रहे, आपकी फरमाइश हम प्ले करने की कोशिश में, एक एक करके सबकी फरमाइश प्ले करने की कोशिश करते हैं। आप सभी से हम एक सुझाव भी कल साझा किए कि आप जल्दी गाने सुनना चाहते हैं तो आप एक ही मैसेज करें, हम आपकी फरमाइश जल्दी सुना देंगे। आप जैसे 2, 4, 10, 8, 10 मैसेज करेंगे तो आप फिर अपने लाइन को फिर से पहले स्थान पर चले जाएंगे, तो आपकी जो सीरियल है वो तो ख़त्म हो जाएगी, फिर शुरुआत से हो जाएगी, तो हम आपके पास पहुंच नहीं पाएंगे और ना ही आपकी मैसेज और ना ही आपके गाने हम सुना पाएंगे। तो आप अपने गाने को सुनना चाहते हैं तो एक मैसेज करके स्थिरता बनाए रखें, आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरी की जाएगी। यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज पहुँचाने वाले हैं हमारे सुरदागढ़ दीपक जेलर जी, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश दिया गया है, शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। दीपक जी, आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रमझिम 94.4 FM पे।

0: के लिए मिलता है कोट पैंट पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करे 87894 18744। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-65750।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद में आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे सुजल एसएमएस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए और आगे मैसेज में लिखा गया है कि बुलेट चौधरी बढ़ेरिया थाना क्षेत्र 3 फेड़िया से और गाने की फरमाइश किए हुए हैं, काफ़ी प्यारा तेरी चुनरिया दिल ले गई, उदित नारायण जी की आवाज़ में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सोनू बाबू, ऐसा लगता है कि जेलर भाई के दुख देखकर हमें भी गहरा दर्द होने लगा है। गॉड से दुआ है कि इन्हें हिम्मत दे दर्द सहने को। बिल्कुल, आप दुआ करें, साथ में हम लोग भी साथ देंगे। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया और स्वागत है आपका। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि तू खुदा है तो चमत्कार कर, मैं बैठा हूँ सब हार कर। तू खुदा है तो चमत्कार कर, मैं बैठा हूँ सब हार कर। हो गया है दुत्कार कर, मेरे भरोसे को यूं मार कर। मैं दर्द में हूँ कुछ तो उपकार कर, मुझे क्या मिला यूं इंतजार कर। मैंने मौन से दिल पे ना पर हार कर। तू खुदा है तो अब चमत्कार कर। इस लाइन को पहुँचाए हुए हैं, अपना नाम तो नहीं दिए हुए, और देखा जाए तो बढ़रिया थाना क्षेत्र से ही इस लाइन को पहुँचाया गया है। सनोज कुमार जी की तरफ से और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सुपर सॉन्ग, मुझे सॉन्ग सुनाने के लिए थैंक्स समीर भैया। और इस मैसेज को करने वाले

गुलाम हुसैन इंदरवा से हैं और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो हाय क्या हाल है जी। तो बिल्कुल बढ़िया है और इस मैसेज को करते हैं कमलेश जी। आगे मैसेज कई पहुंचे हुए तो मैसेज को रुकते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं हम सभी रेडियो 96.4 FM पे।

टुडे एमसीएम नेट फंड 4 FM पे काफी प्यारा सॉन्ग सुन रहे थे हम सभी। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि आप भी भाई अपने दिल पर काबू बनाए रखें, नहीं तो आप भी बाद में जेलर भाई के तरह रात दिन करते रहेंगे। शुक्रिया शुक्रिया, जनहित में जारी है। और इस मैसेज संदेश को देते हैं सभी के लिए वीरेंद्र गुप्ता भैया, खेखरिया रक्सल नेपाल बॉर्डर से। बिल्कुल सही बात है और सबको अपने दिल पे काबू रखना चाहिए, नहीं तो आगे जेलर भाई जी का हाल हो जाएगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि क्या सुनो भाई, हमसे नाराज है क्या? तो नाराज क्यों होंगे, हम आप सब के लिए तो है। हम इस मैसेज को किए हुए हैं, लिखे हुए हैं कि सुनो भाई नमस्कार, और सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं भी जुड़ गया हूँ और पहला गाना और दूसरा गाना भी अति सुंदर शमीर भाई आपने गाने में शामिल किए, दिल से शुक्रिया। आपका मैसेज हमारे पास जैसे पहुंचता है वैसे पूरा करने की शामिल करने की कोशिश रहती है। अब गाने भी सुनने हैं, मैसेज भी शामिल करने हैं, तो सब तो देखना है। केवल मैसेज ही शामिल करेंगे तो गाने कब बजेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। और अगले गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है अजय मिश्रा जी के तरफ से, और गाने की फरमाइश करते हैं, लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंके से, तुझको पिया ने देख लिया हाय रे झोंके से। तो चलिए आपके गाने हम प्ले करेंगे और आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो 4 FM पे।

94 FM सुन रहे हैं आप सब और काफ़ी प्यारे सॉन्ग सुन रहे थे अभी हम सभी। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि सुनो भाई, जब दिल दे ही दिया, जान देने की क्या ज़रूरत है। सीधा टावर पर चढ़िए, टावर किस लिए इस्तेमाल कीजिए, जनहित में जा रही है। और इस मैसेज को करते हैं दिलीप जी, तो ये भी ट्रेंड में ही चल रहा है, टावर पर चढ़ने की और अपने प्यार को पाने की। तो ऐसी घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए, अगर प्यार है तो प्रेम से ही उसको स्वीकार कीजिए, जान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी गाना सुनाने के लिए। चलिए, आपको धन्यवाद है अजय जी। आपसे हम कहे थे कि आप स्थिरता बनाए रखिए, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। हमें जो समय मिला है उसमें तो हम गाने ही गाने सुनाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम आपके गाने या किसी के भी गाने ना सुनाएं और चुपचाप बैठे रहे या अलग से गाना सुनाएं। आप सभी के गाने सुनाने के लिए हम आप सभी के बीच उपस्थित होते हैं, तो थोड़ा सा समझना है और कार्यक्रम में समझदारी के साथ बने रहना है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करेंगे, अंतिम गाने, और इसी गाने के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति भी करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और

आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और इस मैसेज को करती हैं मनीषा फ्रॉम अमो मौजम से और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है। लिखा गया है कि हमको तुमसे प्यार है, डेडिकेट सभी को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं और एंजॉय करते हैं, साथ ही साथ इस कार्यक्रम को भी समाप्त करते हैं क्योंकि समाप्ति का भी समय हो गया है। तो जो भी श्रोतागण छूट जा रहे हैं नाराज नहीं होना है, हमारा समय जो है पूरा हो चुका है जिसके कारण इस कार्यक्रम को समाप्ति करना ही है। तो फिर कल मुलाकात होगी और आप सबसे भी निवेदन है कि कल इस कार्यक्रम में बिल्कुल जुड़े, कोशिश होगी कि सबकी फरमाइश कल जितना हो सके उतना पूरा कर दें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहें रेडियो 4 FM जो हमें सच कहते हैं सुनो दिल से। नमस्कार।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: रात के 11 बज चुके हैं और रेडियो रंजन पर समय हो चुका है रात्रि समाचार का। आइए सुनते हैं पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में ये न्यूज।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रंजन 90
2: के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि यह गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के

0: दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव और पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में, हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector. Mr. Modi said this while addressing the 7th edition of the Global Fintech Fest in Mumbai this evening.
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: The Prime Minister hailed UPI as a champion of fintech, noting that more than 2,400 crore UPI transactions were recorded in the last month. He said Indian UPI is now operational in 11 countries. Mr. Modi stressed that global collaboration in fintech systems should be a new goal to reduce transaction costs in remittances. The Prime Minister urged stakeholders at the GFF 2026 to use fintech as a tool for financial inclusion. Lauding the country's remarkable GDP growth in the last quarter, Mr. Modi said world has gained reassurance from India's 7.8% growth despite challenging global conflicts, uncertainties and stress on global supply chains of energy and commodities. The 4-day Global Fintech Fest 2026 is being held in Mumbai from today till 11th September. Defence Minister Rajnath Singh arrived in Colombo today on a 3-day visit to Sri Lanka aimed at deepening bilateral defence and maritime cooperation. Mr. Singh was warmly welcomed at Bandaranaike International Airport by Sri Lankan Deputy Minister of Defence Aruna Jayasekara and Indian High Commissioner to Sri Lanka Santosh Jha. During his visit, the Defence Minister will hold talks with the Sri Lanka's leadership on various issues to further strengthen bilateral ties in mutually beneficial areas, including a strong maritime and defence partnership. Russia today said that it welcomes any peace efforts by India to end the Ukraine conflict, noting that Moscow's strategy aligns closely with New Delhi's position for a resolution through dialogue and diplomacy. Kremlin spokesman Dmitry Peskov made the remarks while addressing media at a virtual briefing in New Delhi this afternoon ahead of the BRICS summit. Mr. Peskov said they know the position of India on the Ukrainian conflict and to a great extent it corresponds with their own position because they do want the solution to the Ukraine conflict by peaceful means and Russia is open for this process. He said Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin will hold bilateral talks on the sidelines of BRICS summit later this week. The government has approved strategic investment plans with an aggregate project outlay of over 735 crore rupees for ITI clusters in Rajasthan, Uttar Pradesh and Telangana. It includes 241 crore rupees investment plan for Rajasthan, over 240 crore rupees for Uttar Pradesh and 254 crore rupees investment plan for Telangana. It was approved during the 5th National Steering Committee NSC meeting of the Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through upgraded ITIs PM Setu. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Tripura, Bihar, Gangetic, West Bengal, Jharkhand, Nagaland and Odisha tomorrow. IMD has said that thunderstorms accompanied with lightning and gusty Andaman and Nicobar Islands, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for tomorrow. And India bagged 5 medals, including 2 gold, 2 silver and 1 bronze on the penultimate day of the Stage 3 of World Archery Para Series in Ahmedabad today, with the men's teams winning the top honours. Reigning world champion Toman Kumar and Shyam Sundar Swamy clinched the gold medals in the men's compound team event with the dominant win. And that is the end of this news bulletin.
3: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हैं 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो। हाँ जी, योगेश जांगड़े बेगूसराय छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं
2: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी धन्यवाद।
2: नाम बता दीजिए।
1: योगेश जांगड़े बेगूसराय छत्तीसगढ़ से।
2: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हैं, अच्छे हैं।
2: तो क्या हो रहा था अभी?
1: अभी घर ही में है अभी।
2: अच्छा, मौसम कैसा उधर का?
1: मौसम बहुत धूप है अभी 2-3 दिनों।
2: अच्छा, तो वैसे क्या करते हैं योगेश जी आप?
1: हमारा काम खेती बाड़ी का ही है।
2: अच्छा, चलिए बढ़िया। तो नाश्ता वास्ता हो गया आपका?
1: हाँ जी, हो गया है।
2: चलिए ठीक है, तो फिर आज की फरमाइश बता दीजिए।
1: फिल्म मोहब्बत से सुनवा देंगे, हमको हमेशा चुरा लो।
2: क्या आप गा के बता सकते हैं?
1: गाने नहीं सुना देंगे, अगली बार सुनाएंगे जो भी फरमाइश रहेगा।
2: ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये गाना आप किसी को डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
1: सभी को, आप सभी के लिए भी।
2: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी धन्यवाद
2: जी। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी मैडम, मैं ज्योति साहू मधुसूदनगढ़ से बात कर रही हूँ।
1: जी जी, कैसी हैं ज्योति जी?
0: बस बढ़िया है मैडम। बेटे आप कैसे हो?
1: मैं भी बढ़िया हूँ।
0: आज बहुत दिनों में फोन लगा है मेरा।
1: अच्छा जी, क्या पहली बार कॉल किया?
0: नहीं, ऐसे नहीं, पहली बार नहीं, कई बार लगा है, लेकिन अभी कुछ दिनों से नहीं लगा रही थी।
1: अच्छा,
0: अभी कुछ नहीं, बस खाना खा रहे थे और सुन रहे थे।
1: जी जी, तो मैं बोल रही हूँ कि मुझे नहीं खिलाइएगा।
0: खिलाऊंगी ना, आओ ना आप। आज अपने प्रेरणा की तरी की सब्जी बनाई है।
1: अच्छा जी,
0: हमारी गुड़िया का जन्मदिन है आज का।
1: अच्छा जी, तो उनको मेरे तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो।
0: थैंक यू मैडम जी। जन्मदिन के ऊपर से ही आज कोई सा गाना सुना दीजिए।
1: ओके, तो आप ही बता दीजिए
0: कौन सा गाना है। तो नाम नहीं आ रहा है
1: तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं hello,
3: hello, hello, hello.
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी मैडम जी, अभी मेरा फोन कट गया था।
7: अच्छा
6: जी, मैं ज्योति साहू मधुसूदनगढ़ से।
7: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
6: बढ़िया हूँ मैडम जी, अभी खाना वाना खा के फ्री होके बैठे हैं। आओ आप भी खाओ खाना।
7: जी जी बिल्कुल आएंगे।
6: मैं मधुसूदनगढ़ से।
7: अच्छा
6: जी, अभी फोन लगाया था लेकिन वो कट गया, अभी इसमें आज भी बात हो रही थी ना इसलिए।
7: जी जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी।
6: हाँ, गाना सुनूंगी, मूवी का नाम है संजोग
7: जी,
6: और गाने का बोले जसोदा का नंदलाला ब्रज का उजाला।
7: क्या आप दो लाइन गा के बता सकती हैं?
6: जी, जसोदा का नंदलाला ब्रज का उजाला, मेरे लाल से ही तो सारा जग दिल मिलाया।
7: के डेडिकेट भी है
6: जी।
7: तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
6: थैंक यू मैडम जी, थैंक यू
7: जी। वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंजन 90.4 एफएम में।
1: मैम गाना सुनना है।
0: गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
1: सुनीता देवी हल्दियापुर से। 21 तारीख को फोन किए थे मैम, और 20 में नहीं किए थे, भूल गए थे, समय भूल गए थे काम करते करते।
0: चलिए कोई बात नहीं, वैसे क्या हो रहा था?
1: मैम खाना खा कर बैठे हैं तो आपको गाना देखिए सुनाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, और तो छोटा वाला मोबाइल से सुनते हैं। आज सोचे का पहले बार लगाए, मगर पहले बार नहीं लगा, 10:49 से लगाए मगर नहीं लगा।
0: चलिए कोई नाम लग रहा
1: है। तो मैम खाना हो गया है?
0: हाँ हाँ हो गया है। और आपका?
1: मेरा भी हो गया है मैम। गाना सुनना है मैम, घर वाली बाहर वाली में के भोजपुरी में के जो शंकर भगवान को तीज करती थी उसमें के नहीं है?
0: थोड़ा सा गाने के बारे बता दीजिए।
1: भूल गए हैं मगर घर वाली बाहर वाली में के रानी चटर्जी है जो
0: के रूप में।
1: हाँ जी वही। हाँ जी मैम वही सुनना है। अब तीज में आ रहा है, आज का अठवार तो उपवास रहेंगे लोग।
0: मतलब मंडे को पड़ेगा तीज?
1: अगला मंडे को उपवास रहेंगे लोग। मंडे को मैंने खाए नहाए जाता है, मंडे को उपवास रहेंगे
0: लोग। ठीक है, तो फिर यही आपका गाना प्ले करेंगे। जी और सुनाना भी चाहते हैं किसी को?
1: जी मैम आपका बार रेडियो परिवार सुनते हैं, सभी लोग का सुनाना चाहते हैं।
0: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: थैंक यू मैम
0: जी। वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 एफएम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, नमस्ते।
5: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: बालबू सुंदरपुर।
5: जी, कैसन बानी?
6: ठीक बानी, अपने बताए।
5: हमने के भी ठीक बानी सर।
6: बारिश हुई?
5: बारिश तो अभी नहीं हो, मौसम बना होगा।
6: इधर तो हो रहा है बहुत ज्यादा। सुंदरपुर सुंदरी।
5: अच्छा,
6: छोटी ना खोल बरसा भीजे न जाने।
5: क्योंकि सुनवाई की चाहते
6: नहीं पंकज बिट्टू।
5: ओके, तो फिर प्ले पसंद होगा ना?
6: जी नमस्ते।
5: नमस्ते, सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: थैंक यू मैडम जी, मैं अरुण मिश्रा बोल रहा हूँ गोपालगंज से।
0: जी क्या हाल चाल है अरुण जी?
1: बस ठीक है जी, आप लोग कैसे हैं?
0: जी हम लोग भी बढ़िया हैं। लो
1: जी बस बढ़िया, कहीं जरूरत है आदमी अच्छा रहे। हमको गाना सुनना है मैडम जी,
0: बता दीजिए।
1: ये गाना है आपको, काली काली घटा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है। ये गाना है, काली काली घटा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, तो आज मौसम है बड़ा।
0: तो अरुण जी मुझे गा के बता सकते हैं दो लाइन?
1: मैं अपना भाई तो बराबर नहीं है ना, अपना भाई तो बराबर नहीं है।
0: कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे तो गाना तो बता रहे तो अच्छा लग रहा है, तो गाएंगे भी तो अच्छा
1: लगेगा। नहीं नहीं, ये गाना आप गवा दीजिए।
0: चलिए कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम आपसे गवाएंगे, ठीक है?
1: अच्छा अच्छा ठीक है जी।
0: और गाना किसी को डेडिकेट भी करना है?
1: अपना जितना भी रेडियो रिमझिम के सदागण है और जितने भी स्टाफ है सभी, मतलब रेडियो रिमझिम के प्रेमी आदमी को सबको डेडिकेट करना।
0: ओके जी ठीक है, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी जी
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.

0: Now pick your phone up.
1: Hello?
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello?
0: Now pick your phone up.
1: Hello?
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: दोस्तों। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
4: नमस्ते दी।
3: नमस्ते, कैसे हैं?
4: राधे राधे।
3: राधे राधे।
4: और चलिए, हमारा से भी भोजपुरी में बात करी रहा, और आवाज बड़ा नीक लगा था आजकल भोजपुरी में सुन के।
3: वैसे कहाँ से बोला था नहीं?
4: जी जी, हमारा नाम है रानी, हमार घर है रखुआ, और हम बड़ा दिन से रो तो सोचते रहनी बात करे के, आज फाइनली मौका मिला। और बताई रुआ कैसन वानी है? और ऐसे ही तो रेडियो पर आवाते हैं तो काफी रुआ के सुन के सुकून मिलता और बहुत अच्छा लगा था जी।
3: अच्छा जी,
4: सच ना? और आज हम देखी रहो कहते सब चीज छोड़ के कहानी, आज देखा था नहीं केकरा से बात होता, बाकी अंत वाला तो सब वाला रहो से बात हो गई। देखी रहो से लिस्नर सब बात करे खाती कैचे भर भर के, ढाका भर भर के, सभी कोई खाली बात
3: करके बहुत अच्छा लगा।
4: और खास करके सच में रहुआ सबकी आवाज के पता ना रोवा लो, आरजे सब कोई तो खाना हुए खाला, बाकी रोवा लोग आवाज ये का इतना नीच लगा था समझे में नहीं की आवाज। थोड़ा बताई लो एक राज का बा?
3: राज तो कुछ ना बा, लेकिन वैसे बता दी थे राउत भी आवाज बहुत ही प्यारा बा।
4: अच्छा जी, कसर ना छोड़नी पूरा कर देनी
3: ना जन भाव बता दी हेला।
4: जी जी, और ऐसे में रहो के जब से हम सुना था नहीं, बीच में कॉल कर लेवानी तो दो बार तीन बार चार बार दीदी से बात बोलवा भारती दी से, और एक दिन बात वो झटका आ गए की हम जो वहाँ से बात भाई, तो फिर बात कहे वहाँ से जी दी से देखा था नहीं, अब वहाँ से कब बात बोला, बाकी आज फाइनली बात हो गई।
3: हम भी रवा से बात करके बहुत ज्यादा एक्साइटेड बानी।
4: जी जी, और खास करके रवा जब रेडियो ऑन आई यार आवे नी रहो, आवाज बहुत मस्त बा जी। और रवा सभी के जितना अर्जे बानी लो, और रवा लोग के बारे में हमने कहा बोली सर, जितने बोली से उतने कम पड़ गई।
3: आप रउआ लोग के
4: दुआ
3: जी, वो लोग के दुआ प्यार से हम ये के बोले निशान।
4: जी जी, और होके के चाहे जी होके के चाहे, और कहला किसा एक एक सवाल हर कोई के मन में उठेला, स्टार्टिंग में अगर हमने के कोई भी काम करी सन, अगर हमने में हजार बुराइया हो, बाकी हर इंसान में एक अच्छाइया होला जी, तो सही बात। और रउआ लोग तो पूछे के नहीं के, और बताई रउआ नाश्ता वास्ता कैले बानी की ना?
3: हाँ हाँ भैया की ना,
4: और आज हम नहीं के भैया, आज थोड़ा हम लेट बानी, और सुबह से थोड़ा आज सोमवार तो आज थोड़ा काम ज्यादा होला।
3: और
4: जी, और खाए के केवल बात रही तो आदमी खाली, बाकी बिना अगरबत्ती जे रहले थोड़ा आदत नहीं छे, और यही के थोड़ा सा रुक के बाबा की अब बात हो जाए तब तुरंत वही काम बाकी बा।
3: जी जी, पूजा पाठ।
4: और बारिश होता रहो तरह?
3: बारिश तो नहीं छे वो अभी फिलहाल,
4: इन्हें होता थोड़ा बहुत।
3: अच्छा, वैसे कहाँ से बोलत बानी रहुआ?
4: जी, हमारा नाम है रानी और हमारे घर है रखुआ, और रहुआ जाने में थोड़ा दिक्कत होता, बाकी लोग जान जाये
3: ना। एक बार शो में पता चला हुए कि जे रानी नाम के जे लिसनर बानी बहुत अच्छा बात करेंगी, और बहुत देर तक बात
4: काफी दिन दिव्या दी से बात भई रहो, पर काफी रिएक्शन मिले रहे। और दी एक बिना देरी की अगर इजाजत हो तो एक लाइन हमरा बोले के बाद, अगर वो कहीं तो हम बोली, और सारी जो भी कुछ बात दो लाइन वो लिसनर के बारे में हमरा बोले के बाद, अगर तो खैर हमके वहाँ के नाम पता नहीं है, बाकी बड़ा शिद्दत से वो हमारी जौन दो लाइन भोजपुरी में वो गाना गाई, बड़ा जबरदस्त गाना गाई दी। और सच बताई तो हम वहाँ के रिकॉर्डिंग सुनते रही, खाना बनाई, बाकी हम अपन खाना छोड़ के वहाँ का ताली बजाई रही जरूर। और जी जी, और वहाँ के जितना भी बात दर्शैले रही बड़ा जबरदस्त दर्शैले रही दी। और खाफी सबसे बड़का चीज ये लग रही जो मैं अपन नाम भी दर्शैले रही, गाँव के भी नाम दर्शैले रही, जी माँ हमनी के जौन सबसे बड़का थावे के मशहूर माता जी वानी वो दर्शैले रही, तो वहाँ के काफी सुन के बहुत अच्छा लग रही दी। और कभी भी इंसान के कम चाहे ढेर तो हर कोई के अंदर एक गुण होता बोला ना, तो कभी वहाँ के अंदर बात कभी ओकरा के सामने ले आवे के चाहिए, वहाँ के बहुत अच्छा से गई हिंदी, बहुत अच्छा से गई। और हमने की हिंदी में कितना बात कर ली सब, बाकी जन भोजपुरी के जन मिठास होला ना, ओकर एक अलग भाषा वाला दी, पूरा दिल के झकझोर देला।
3: बात तो बिल्कुल सही कहा था।
4: और अगर सच अरे वही बात बोला ही ना, और माफी मांगते रही तो बेकार लग रही थोड़ा सा, ऐसा कोनो बात नहीं की इंसान अगर जो भी कुछ बोले लगे अपने दिल से बोलेला, तो अपने लगन और मेहनत अपनी आवाज के दम पर बोलेला, और वहाँ के बहुत

0: अच्छा से गई और इतना हमारा जानकारी बाबू महाराष्ट्र से कॉल कैले रही और वहाँ के बहुत अच्छा गीत गई दी, बहुत अच्छा गीत गई।
1: अच्छा
0: और अब टाइम ऐसे में तो सब चीज छूट जाओ, एक दिन खाना छूट जाओ बाकी रेडियो ना छूटे के चाहिए।
1: अच्छा इतना लगाओ?
0: इतना लगाओ, बचपन से सुने नहीं न अपना शो के बारे में, जाओ चीज पूछे हम बता दे पूरा 100 से स्टार्टिंग से लेके अभी तक पूछे हम सब बता दे। और एमए से कितना अर्जी गर्ल बानी लो लेडीज में आदमी की सब जानकारी बा और बहुत शो सुन ले बानी से दी। और स्टार्टिंग हम हेती चुकी से सुने नहीं शो रहुआ लोग के, बाकी जुड़े नहीं बहुत कम।
1: देखिए रहुआ शो में बराबर जुड़ल करी, कैसे की रहुआ से भी हम सब जुड़ल बानी से और बात करे के जन तरीका बना बहुत अच्छा लगे हम सबके।
0: अच्छा जी। और देखिए हम एक दो बात बाती, हम बड़ में बहन में बड़ बानी और हम सबसे जिम्मेवारी ज्यादा हमारा ऊपर रहला, छोटी सी हम बात रहुआ से बताओ तनी। और जोन हमारा माँ की थोड़ा तबियत खराब, हमने के काफी सरस्वती पूजा से पेट से लेके अभी तक ले माँ के तबियत बहुत जोर से खराब रहला और वहाँ के थोड़ा सा हार्ट की बीमारी रहला और हमने के पूरा घर घर के परिवार मानी एक पल खातिर टूट गए रहनी वैसा, बाकी अब भगवान की दुआ से आप सभी के आशीर्वाद से सब चीज ठीक बावे
1: जी जी भगवान और सब ठीक हो जाए।
0: और वहाँ के हार्ट के ऑपरेशन भइल बा तो थोड़ा वही में हमने की ज्यादा दिकदारी रहला, बाकी अब जुड़े और रवालों के बीच में जरूर आए सामने।
1: जी जी बिल्कुल। तो फिर आज के का फरमाइश वाला
0: जी, और आज मौसम बहुत प्यारा है, भोजपुरी से हम बजा दी वो गाना बाबा न बोल ना जाने का हो गई बा आज
1: क्या बोला गा के बता सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और रवा गाई अगर हाँ गाई रवा कहती तो पूरा निछावर बा, खाली रहो इजाजत चाहिए।
1: बाप रे इतना ज्यादा लगाओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, रवा सब बर्थडे बानी हो लाइक तो लगाओ तो रही थी ना।
1: अच्छा तो फिर सुना दी दुलहन गा के।
0: जी जी, और हम गा के सुना देते नहीं रवा के, और चलिए आवाज तो गाना के माध्यम से पता ना जैसे भी जाए बाकी रवा कहती जरूर।

0: सॉन्ग सुनने के बाद
1: तो साथ साथ गाना भी इतना अच्छा गा नहीं है।
0: अच्छा जी, और वो जब अपना आवाज सिखाए नहीं को लिस्नर से के थोड़ा दो लाइन गा दी तो सोचे निकास मौका पर हम रहती बाकी चली आज रहा तसली के पूरा कही नहीं।
1: हमके भी बहुत अच्छा लागल।
0: अरे गाना जितने हमने के तारीफ करी सब भोजपुरी में सबसे पहले लिस्ट में ये गाना हम रखे बहुत अच्छा लगे दी।
1: अरे गाना रहा क्योंकि सुनाए के भी चाहता नहीं।
0: जी जी, और हमारे कुछ रेडियो दोस्त बानी लोग सभी के तो सुनाए चाहता नहीं। और सबसे पहले रोगा के इतनी मीठी आवाज में बात करे खाती और आज खुद से बात कर लेनी वो खाती रानी की तरफ से, और भारती दीवानी, दिव्या दीवानी और सोनी दीवानी और सोनू सर वानी और हम की सबसे प्रिय एक आपका कहीं से डायरेक्टर सर के उगो के वानी वहाँ के संडे के दिन जब आवे नहीं तो बहुत अच्छा से बात करे नहीं हमने की लगे एक फैमिली के जैसा उगो के वानी तो उगो के गाना में रानी की तरफ से। और कुछ रेडियो दोस्त वानी लो जी, कमरान जीवानी, भास्कर जीवानी, उत्तम सोनी जीवानी, सगीर जीवानी, बर्जी जीवानी, इरफान जीवानी, अहमद अली जीवानी, दिलीप राम जीवानी, पंकज जीवानी और शाहजहां जीवानी, सन्यासी रंजन बाबा जीवानी, राकेश जीवानी, देवेंद्र जीवानी और उमा शंकर जीवानी और बाकी जितने लिसनर छूट गए लो रानी की तरफ से सब कोई के सवार है। और मुकेश जीवानी
1: जी जी बिल्कुल, ये सब हम के परिवार हैं लोग है ना।
0: समझी एक सब आदमी एक रेडियो के डोर से बनाइल बा और सभी के एक दूसरे के सुन के बहुत सुकून मिलेला दी।
1: जी जी बात तो सही बराबर,
0: बात तो सही बा
1: जी। तो रानी जी फिर गाना प्ले करता नहीं कैसे कि और भी कॉल आवता।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और एमएस पूछे वाला बात नहीं क्या। और
1: वैसे तो रोगा से बहुत सारा बात करे के मन करता है लेकिन अगला आदमी भी तो पड़ी ना।
0: और सच बताए दी जब कॉल की बारी आवेला ना सच में गवाता नहीं, अगर कभी मौका मिले तो कभी लिस्नर बनकर कॉल करे
1: जी।
0: समझन लिस्नर सब के आपके प्रति कितना प्यार रहेला जो कॉल करला के बाद जो हालत होला ना हमने के तो क्या कोनो बात ना रहेला हमने के तो अगर चाहे तो 5000 कॉल कर सकत नहीं से कोनो लेना देना नहीं के जैसे केवल बात करे के चाहत में आदमी 50000 कॉल हिला दी बाकी मेहनत सफल जाला। जी चलिए बिना देरी किए हम गाना प्ले कर दी और आगे भी कॉल ली।
1: जी जी एक और बात बता दी कि हम बहुत खुश बने लोगों से बात करके
0: सबसे ज्यादा तो राहुल रानी बारी और सच कही तो राहुल निक बड़ा आवाज बा। भोजपुरी में अक्सर लोग बोले राहुल रवाजिया बड़ा निक लगा था जी।
1: जी जी बिल्कुल
0: चलिए आगे भी कॉल ली दी।
1: जी जी तो प्ले करता नहीं सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: हाँ भारती जी, मैं गोपाल बोल रहा हूँ बेंगलोर से।
5: जी जी, कैसे हैं गोपाल जी?
6: बहुत अच्छे हैं। आपका प्रोग्राम सुनने के तो मन करता है हर दिन, इसलिए परमिश भी करती हूँ। उस दिन आपने मेरा गाना सुनाया, बहुत अच्छा लगा है।
5: अच्छा जी।
6: आज मेरा घर में मेरा भाई भी आया है सिलीगुड़ी से, वो भी गाना सुनेंगे आज
5: जी।
6: तो बोल तो आज मेरा तो रिक्वेस्ट है सागर मूवी का
5: जी,
6: किशोर कुमार की आवाज में कागज जैसी आंखों वाली एक गाना है ना
5: जी, क्या गा के बता सकते हैं?
6: हाँ, चेहरा है या चांद खिला है, वो भी गाते हैं ना, वो गाना किशोर कुमार की आवाज में। तो गान तो मैं डेडिकेट करती हूँ आपको और आपको परिवार, रिमझिम परिवार को, सबको लिसनर्स।
5: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
6: हाँ, कितने बजे आज सुनेंगे
5: ये गाना आपका? आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
6: अच्छा ठीक है, आप कैसे है?
5: ये मैं भी बढ़िया हूँ।
6: सोनी जी
5: सब कुछ बढ़िया है?
6: अच्छा।
5: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
6: हाँ ठीक है,
5: सबसे 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
0: सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: क्या कर रहे हो?
1: जी बढ़िया बा, अपन बताएं।
0: ठीक बा, उनके साथ दवाई से चला था। ठीक बा,
1: छका हुई बा।
0: अरे ये सिर दर्द बुखार
1: सब मौसम की वजह से होता है।
0: कई दिन पहले पड़ता है, रोज ठीक पड़ा, फिर ठीक पड़ता दवाई
1: चली। दवाई वाई टाइम से खाता नहीं हूँ।
0: हाँ जी, दवाई बता दिन ठीक है, गरम दफे से ठीक पड़ा।
1: अच्छा
0: ठीक बने दो।
1: हाँ हम ठीक
0: बानी।
1: हाँ नाश्ता हो रहा है और भैया
0: जी हमारे
1: चले बढ़िया भाई से रुआ कृष्णा बोलते हैं ना।
0: जी मैं कृष्णा बोलते हैं।
1: जी
0: तो बंद हो गया जल्दी।
1: कुछ प्रॉब्लम हो गई, वही की वजह से बंद करे के पड़ गए।
0: देखो नहीं चालू भाई को दुकाना बजे बंद कौन जो मोबाइल लेकर दुकान बंद हुआ रोज चालू कर ले रहे।
1: हाँ हाँ हम चालू कर रहे
0: हैं। रखा देगा सर भेज रहे।
1: हाँ चलिए कौन बात ना रही तो दूसरा दिन पड़ल गई।
0: हाँ
1: अच्छा
0: नहीं।
1: हाँ सुनिए, जैसे कि हम इन्हें रहे तो भाती जी बताओ तो रही की तरफ से तो आज की फरमाइश बता दी।
0: अच्छा बारिश होता है।
1: बारिश तो होता
0: आपको खूब आशा होता है।
1: हल्का हल्का होता
0: आज बजा दी बड़का बरस चाहे बम बरस हो सारा से मिले खाती
1: गाना तो बिजुअल बताइले बानी।
0: ये बारिश खूब मतलब ये होता है सब लेकर फोन लगे तो ये गाना कौन मैं से बजा।
1: बिल्कुल चलिए तो फिर प्ले करते हैं गाना।
0: ठीक है
1: जी, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello,
1: hello, hello, hello, hello.
4: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी मैडम नमस्कार।
5: नमस्कार
6: जी मैडम, मैं आप
5: जी अब बता दीजिए कहाँ से बोल रहे हैं।
6: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू, मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
5: ओके जी, कैसे हैं आप?
6: बढ़िया दीदी, आज तो हमारे यहाँ धूप खिल रही है, बरसात बंद हो चुकी है।
5: ये बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, आज तो बंद हुई।
6: जी
5: तो अभी क्या हो रहा था?
6: उसने मेरी दुकान पर बैठे हैं और रेडियो आज का सुन रहे हैं आपका रेडियो रिमझिम। और आज हमारी बेटी का जन्मदिन भी है, कनक साहू का।
5: जी तो उनको मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो।
6: मैडम धन्यवाद। और आज उनके लिए गाना डेडिकेट रहेगा मेरी तरफ से।
5: जी
6: का नाम है अनाड़ी और गाने के बोले छोटी सी प्यारी सी नन्नी सी आई कोई परी।
5: ओके जी, ये तो सॉन्ग बहुत ही प्यारा है
6: जी। और मैं हमारे बच्चों के नाम भी लेना चाहता हूँ।
5: जी।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार,
0: मैं ललन पासवान बोल रहा हूँ। अभी तो फिलहाल दिल्ली से बोल रहा हूँ मैडम।
1: कहाँ से?
0: दिल्ली से।
1: तो क्या हो रहा है?
0: काम हो रहा है मैडम।
1: क्या करते हैं? जी
0: पेपर का काम करता हूँ, पेपर का मशीन चलाता हूँ।
1: अच्छा जी, फिर आज की फरमाइश क्या है?
0: मुझे जंगल लव का गाना सुनने मिला। लैला ने कहा जो मजनू से, रंगा ने कहा जो हीर से, वही मुझी से चल दे से।
1: क्या आप गा के बता सकते हैं?
0: लैला ने कहा जो मजनू से, राजा ने कहा जो हीर से, वो ही मुझसे कह दे तू आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।
1: जी, और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: मैडम, सबसे पहले तो आपको सुनना चाहता हूँ, जितने भी मेरे श्रोतागण है रेडियो और सभी भागवत भी सुनाना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ और मेरे दोस्त लोग सुनना चाहते हैं गाना।
1: अच्छा जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ओके,
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 एफएम।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello,
5: hello, hello, hello.
6: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
8: नमस्कार मैम।
7: नमस्कार।
8: मधुसरिया से राजीव कुमार बोल रहे हैं, काम सुनना है।
7: जी जी, कैसे हैं आप?
8: ठीक हूँ, ठीक हूँ, अच्छा हूँ।
7: क्या हो रहा है?
8: कुछ भी नहीं हो रहा है।
7: अच्छा, नाश्ता वास्ता हो गया?
8: खाना हो गया।
7: चलिए बढ़िया, तो फिर आज की फरमाइश बता दीजिए।
8: फरमाइश है, मुझे पीने की शौक नहीं, पीता हूँ गम भुला।
7: डेडिकेट भी है
8: सुनने वाले सभी दोस्तों।
7: फिर प्ले करते हैं गाना आपका, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी, मेरा नाम जाकिर हुसैन।
1: कहाँ से?
0: यार गोपालगंज से मैम।
1: गोपालगंज में कहाँ?
0: जादवपुर।
1: अच्छा जी,
0: जी
1: तो कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ मैम, अपना बताइए।
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
0: मैं आपसे बात हुआ था ना बुध के दिन की। हाँ बुध के दिन जी मैम, गाना सुनना चाहते हैं।
1: बता दीजिए।
0: जी मैम, गाना सुनना चाहते हैं, मैं दुनिया तेरी छोड़ चला जरा सूरत दिखला जाना।
1: क्या गा के बता सकते हैं?
0: यार मैम तो वही गाना सुना दीजिएगा, सूरज का भी दूर गगन से, चंदा का भी दूर किरण से, ये गाना सुना दीजिएगा कोई।
1: ओके
0: ठीक है
1: जी जी।
0: और नाम याद बताएंगे दोस्तों को?
1: जी बिल्कुल
0: जी, मेरा दोस्त का सूफी आलम है, मोहम्मद कुक है, यूसुफ है, मेराज आलम है, और मुकेश शर्मा, संजीत, और एक मेरा दोस्त जितेश शर्मा, धर्मेंद्र, बस इतने, और आपको भी सारे परिवार को रेडियो पूरा।
1: जी तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: हाँ जी मैम, इसको जरूर सुना दीजिएगा, जो गाना बताया वही गाना सुनाइएगा मैम। ठीक है
1: जी जी बिल्कुल।
0: ओके मैम
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
4: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: नमस्कार मैम।
4: नमस्कार,
5: मैं सुधीर को बोल रहा हूँ, करीमगंज जिला देवघर झारखंड से मैम।
4: जी जी, क्या हाल चाल है सुधीर जी?
5: बिल्कुल ठीक हूँ मैम। आप भारती मैम बोल रहे हैं ना?
4: नहीं,
5: मनोरमा मैम बोल रही हैं।
4: जी जी
5: जी जी, बिल्कुल ठीक हूँ मैम।
4: तो क्या हो रहा था?
5: वही समय हो गया, आज बहुत मशक्कत करनी पड़ी, काफी मेहनत करनी पड़ी तब जाके कॉल लगी आज।
4: जी जी,
5: आज पुरानी फिल्म का गाना सुना दीजिए मैम। आन मिलो सजना फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में।
4: जी, और गाने के बोल?
5: गाने के बोल हैं तेरे कारण इस तरह के गीत बोले हैं मेरे साजन।
4: अच्छा,
5: तो उससे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ और जितने भी रेडियो रूम के प्रतागण हैं सबको सुनाना चाहता हूँ।
4: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
5: जी मैम।
4: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: थैंक यू मैम।
4: वेलकम।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 एफएम।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
1: कौन तो लगा रहा कौन तो अभी लगल बरा और सब सुनाई समाचार?
0: जी सब बढ़िया बा, अपन बताएंगे।
1: हम
0: पीछे कहाँ से बोलो तुम लोग?
1: पंजाब से।
0: कहाँ से?
1: पंजाब यार से।
0: पंजाब
1: जी।
0: और नाम क्या बा?
1: परमात्मा कुमार।
0: परमात्मा
1: जी।
0: तो क्या हो रहा था?
1: हाँ जी।
0: क्या कर रहे थे अभी आप?
1: अभी तो काम कर रहे थे, लगाए तो शोर बनी हुई थी, फिर अभी लगानी है, काम कर
0: कहा ना बहुत सारा कॉल आवत रहे तो एक वजह से।
1: जी जी जी जी बताओ तो लगते रहो नंबर।
0: चलिए अब लागल बाना।
1: हाँ लागल बाना। मौसम आज कैसे बा?
0: मौसम तो ठीक बा, सुहाना मौसम सही
1: बा। इतना गर्मी पड़ता है सूची में, बहुत गर्मी बा, बारिश बारिश
0: अभी तो मैंने धूप निकल रखी ना।
1: गाना सुना दे।
0: बता दे।
1: अरे लगते
0: कौन सा
1: नायक गाना आए लोग?
0: अच्छा क्या होगा नहीं की बता सका?
1: ना दे दोनों गाना कसर लगते।
0: अच्छा चलिए ठीक बा, क्योंकि सुनवाए के भी चाहता नहीं।
1: गुलंजी संतोष बिजली और जितना रेडी रेंजर सुनने वाला क्या है रंजा सर के।
0: ओके तो फिर प्ले करते हैं जरूर गाना।
1: आज की दो दिन के बाद गाना हमारे लगा था।
0: आज ही बाजी।
1: आज बाजी।
0: हाँ हाँ
1: ठीक है
0: जी। तो प्ले करता नहीं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
2: भागे भागे फिरते हैं।
4: तो श्रोताओ, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8029494 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
6: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान। रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: भाई

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों को।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

नमः श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।